मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

0: करण के अनुसार छह जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो रहे हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो रहे हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का।

तो श्रोताओं लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसके मन में राम बसे हैं उनके हर संकट का निवारण स्वयं प्रभु राम करते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है, जो जीवन की नैया को पार लगा देते हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

आज तो गोपियाँ कृष्ण की मुरली से प्रश्न करने लगती हैं कि बंसी, तुमने कौन सा ऐसा तप किया है जो कृष्ण तुमको कभी अपने से दूर नहीं रखते। हमें तो बहुत जतन करना पड़ता है कि कृष्ण हमारे पास हों। तुमने ऐसा क्या किया है, कौन सा जप व्रत तप किया है, हमें भी बताओ। श्रोताओं, लीजिए सुनिए श्रुति सुडोलकर के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: त्याग, प्रेम और मर्यादा का पाठ पढ़ा गए, सबरी के झूठी बेर प्रेम से खा गए। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम जो कड़कड़ में समाए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए शर्मा बंधु के स्वर में गए इस भक्ति रचना को।

अब आराधना कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं हम आपको सुनवाते हैं उमाकांत और रमाकांत के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: और रमाकांत के स्वर में गए इस भक्ति रचना का आनंद ले रहे थे और इसी के साथ आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार सुनेंगे।
1: हमें अपनी आजादी की बुनियाद मजबूती से और बिल्कुल ठीक ठीक रखनी चाहिए, क्योंकि इसी बुनियाद पर हमें एक विशाल भवन बनाना है। एक ऐसा भवन जो हमारे पूर्वजों से मिली हमारी महान संपत्ति के योग्य होगा, जो आजकल के युग का गर्व होगा और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल विरासत होगा। केवल आज़ादी की रक्षा करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें तो ये साबित करना है कि हम इसके योग्य हैं। इस देश में जो छोटे से छोटा भी है, हमें उसे भी महसूस कराना है कि वो आज़ाद है। खेत में काम करने वाले किसानों, झोंपड़ों में रहने वाले गरीबों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों, सभी को इस योग्य होना चाहिए कि वे गुलामी और आज़ादी के भेद को समझ सकें। तभी हम ये कह सकेंगे कि हमने आज़ादी ली है और उसके योग्य बन गए हैं। इसलिए हमें अपनी आज़ादी को संगठित करना है, अपनी एकता और शक्ति को बनाना है। पिछले ज़माने में जो हम पिछड़ गए थे, उस कमी को आज हमें पूरा करना है और इस मुल्क को पहले से बहुत अधिक अच्छा और स्वस्थ बनाना है। ये कर लेने पर ही हम अपने संकुचित उद्देश्यों और क्षुद्र आकांक्षाओं पर ध्यान दे सकते हैं। हिंद का इतिहास हमें बताता है कि हमने अपनी आज़ादी उन संकुचित उद्देश्यों और स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं के बदले में दे डाली थी जिन्होंने हमारे बड़े उद्देश्यों और राष्ट्रीय अभिलाषाओं को ढक लिया था। राष्ट्रीय संकट के उस युग में जब हर एक का ये कर्तव्य था कि वो देश की रक्षा में अपना कंधा लगाए, हमारे देश के कई भागों में फूट पड़ गई और वो अलग अलग दलों में बंट गया। व्यक्तिगत आकांक्षाओं ने हमें राष्ट्रीय हितों की ओर से अंधा कर दिया और आपसी नफरत ने एकता और अनुशासन की सारी भावनाओं को नष्ट कर दिया। आज हमें ये समझ लेना चाहिए कि किसी कौम के लिए अपने इतिहास के पाठ को भूल जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं आपसे और आपके ज़रिए मुल्क भर से ये अपील करता हूँ कि हमें अपनी शक्ति को किफ़ायत से बरतना चाहिए। हमें अपने सीमित बल का संचय करना चाहिए, जिससे कि हम उन संकटों का मुकाबला कर सकें जिनसे हमारे कौमी अस्तित्व को भी खतरा है। अपने राष्ट्र को सच्चे और स्वस्थ ढंग पर बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। जो राष्ट्रीय एकता हमने इतनी कठिनाई से प्राप्त की है, पहले उसे हम संगठित और एक रूप तो कर लें, उसके बाद हम और विभिन्नताओं की बात करें। हम उन्हीं बातों पर ध्यान दें जिनसे कि एकता पैदा होती है, ना कि उन पर जो हमें अलग अलग करती हैं। हालत ऐसी है और समस्याएं इतनी विशाल और पेचीदा हैं कि जो कुछ हमने कर लिया है उसी पर संतोष करके हम बैठ नहीं सकते। आज हमारे पास तुच्छ झगड़ों में नष्ट करने के लिए ज़रा भी समय नहीं है। ये समय दलबंदियों और निजी प्रतिद्वंद्विता का नहीं है। अगर आज़ादी की लड़ाई के लिए हमें भरपूर बलिदान देने और कष्ट सहन करने की आवश्यकता थी, तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम में भी पूरी कोशिश और पक्के इरादे से काम करने की ज़रूरत है, बल्कि देश के हित में निस्वार्थ भाव से जुट जाने की ज़रूरत आज आज़ादी की लड़ाई के ज़माने से भी ज़्यादा है। ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है और इसी प्रश्न को हल कर हम अपनी आज़ादी की रक्षा कर सकते हैं, जिस आज़ादी को कीमत देकर हमने प्राप्त किया है। हमें उन भारी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए जो आज़ादी के साथ हम पर आई हैं।
0: विचार बिंदु कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार सुन रहे थे। इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन विषय पर चर्चा, और इस चर्चा में बातचीत किया है डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप से अरविंद कुमार ने।
1: भैया वो देखा आज के समय में जो है स्वच्छ दूध उत्पादन बहुत जरूरी बाटे, तो भैया देखा आज यही विषय में बातचीत बाटे, तो भैया डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप वरिष्ठ वैज्ञानिक पशुपालन चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर से सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत बाटे।
2: भैया नमस्कार।
1: तो भैया ये बतावा कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का बाटे।
2: सभी किसान भाइयों को राम राम। आप सभी जानते हैं कि दूध एक सर्वोत्तम पेय तथा खाद्य पदार्थ है जिसे एक नवजात से लेकर बुजुर्ग सभी पसंद करते हैं।
1: अच्छा।
2: क्योंकि इसमें भोजन के सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व मौजूद रहते हैं, अतः इसको एक पूर्ण आहार भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल भैया, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है भैया देखा दूध जरूरी बांटे भैया।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और स्वच्छ दूध उत्पादन का मतलब एक स्वस्थ पशु से ऐसा दूध प्राप्त करना जो धूल मिट्टी कचड़ा मक्खी हानिकारक जीवाणुओं से मुक्त हो।
1: बिल्कुल भैया। तो भैया ये बतावें कि स्वच्छ दूध उत्पादन काहे जरूरी बाटे।
2: जैसा मैंने कहा आपको, दूध एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ही जल्दी खराब होता है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि दूध में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि के लिए यह एक सर्वोत्तम माध्यम होता है।
1: अच्छा।
2: जिस कारण दूध में जीवाणुओं की निरंतर वृद्धि होती है। यदि हम समय से इस दूध को गर्म या ठंडा ना करें।
1: अच्छा।
2: तो शीघ्र ही दूध खराब हो जाता है। साथ ही कुछ हानिकारक जीवाणु दूध के माध्यम से जो व्यक्ति दूध पीता है उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा कर देते हैं।
1: अच्छा।
2: इसलिए स्वच्छ दूध उत्पादन बहुत ही जरूरी है।
1: भैया ये बतावें कि स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करें पशुपालक भाई।
2: देखिए चूंकि अधिकांश हमारे पशुपालक भाई ग्रामीण क्षेत्र से हैं और उतनी सावधानी नहीं रख पाते हैं, तो दुधारू पशुओं से प्राप्त दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए गंदे एवं असुरक्षित दूध को पीने से होने वाली बीमारियों से बचाव और स्वच्छ गुणवत्ता वाले दूध से अधिक लाभ।
1: अच्छा।
2: आमदनी किसान की हमारी मुख्य उद्देश्य होता है, आमदनी कैसे उसको मिले, इसके लिए स्वच्छ दूध उत्पादन करना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा। भैया ये बतावें कि स्वच्छ दूध उत्पादन की प्रमुख विधियां कहाँ बाटे।
2: जैसा मैंने पहले कहा कि ग्रामीण भाई हमारे जो दुग्ध उत्पादन करते हैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनका ये रहता है कि दूध निकाल कर हमको बेचना है। लेकिन स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए कुछ चीजें जरूरी है, जैसे पशु का स्वास्थ्य और उसका प्रबंधन जरूरी है।
1: अच्छा।
2: दूध निकालने वाले ग्वाला की स्वच्छता जरूरी है, दूध दोहन की प्रक्रिया या विधि कौन सी अपना रहे हैं ये जरूरी है, और वातावरण पशुशाला की साफ सफाई व्यवस्था और जिसमें हम दूध निकाल रहे हैं उन बर्तनों की स्वच्छता। तो हम अगर पशु स्वास्थ्य की बात करें तो जो दूध देने वाला पशु का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, और अस्वस्थ पशु या थनैला रोग से ग्रसित या पीड़ित पशु का दूध हमें अलग रखना है।
1: अच्छा।
2: उसको बाकी दूध में मिलाना नहीं।
1: तो डॉक्टर साहब कैसे पहचान हुई गई
2: थनैला का, चूंकि देखिए दूध, इसके लिए बहुत अच्छा एक आपने प्रश्न किया है। दूध दुहने से पहले पशु के हर थन से अगर हम थोड़ा थोड़ा दूध निकाल कर देख लें, अगर उसके दूध के रंग में जरा भी परिवर्तन है तो हम समझ लेंगे कि थनैला का शुरुआत है या थनैला होने वाला है। और दूध दोहन से पहले पशु के पिछले हिस्से आयन और थनों को गुनगुने पानी से साफ कर दें।
1: अच्छा।
2: इसके बाद जो हमारा ग्वाला है या दूध दुहने वाला है, चूंकि अधिकांश संक्रमण दूध दुहने वाले व्यक्ति से भी होते हैं, तो दूध दोहन करने वाले व्यक्ति का एक किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग से मुक्त होना चाहिए। अगर उसमें मान लीजिए टीबी है, तपेदिक है, तो दूध के द्वारा
1: अच्छा।
2: हमारे पीने वाले लोगों में भी जा सकता है। इसके बाद दूध दोहन से पूर्व हाथों को साबुन और साफ पानी से ठीक से धोएं।
1: अच्छा।
2: नाखून कटे होने चाहिए, अगर नाखून होंगे तो दूध लगाने में थन हमारा चोटीला हो सकता है और उससे संक्रमण भी बढ़ता है।
1: अच्छा।
2: तथा दूध दोहने वाले व्यक्ति या ग्वाले को भी थोड़ा साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, अगर धूल पड़ा होगा तो दूध में जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब ये बतावें कि मतलब पशुओं का ऐसा का खिलावा जाए कि दूध अच्छा पौष्टिक हो।
2: देखिए जो हमारे पशु किसान भाई हैं जो गांव में हरा चारा खिला रहे हैं उसके साथ अगर हम उनको दाना देते रहें तो उनको पौष्टिकता मिलेगी।
1: अच्छा।
2: और चूंकि जो हम खिलाएंगे वही उसको उत्पादन में परिवर्तित होता है।
1: अच्छा।
2: इसके साथ ही हमको ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो दूध निकालने वाला व्यक्ति वो किस प्रकार से दूध निकाल रहा है।
1: अच्छा,
2: जैसे
1: अच्छा।
2: दूध दोहन की प्रक्रिया आमतौर पे हम लोग ये देखते हैं तो कि गीला दोहन यानी कि थन में दूध निकालते समय बार बार दूध लगाना या झाग लगाना या तेल लगाना यह एक गलत प्रक्रिया है। इसके द्वारा दूध में जीवाणु की संख्या बढ़ती जाती है।
1: मतलब एक बार अच्छे से धो लो।
2: हाँ, फिर बार बार जो आप देखे होंगे बहुत से लोग थन को मुलायम रखने के लिए
1: जी
2: पानी या झाग

0: लगाते हैं दूध में, वो एक गलत प्रक्रिया है, इससे संक्रमण बढ़ता है और जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ हमने देखा है बहुत से लोग अगर दूध देने में विलंब हो रहा है तो बैठे रहते हैं, जबकि 6 से 8 मिनट के अंदर दूध निकालने की प्रक्रिया पूर्ण कर लेना चाहिए। इसके बाद दूध दोहन के तुरंत बाद, क्योंकि दूध हमने बताया बहुत जल्दी खराब होता है, तो जितना जल्दी हो सके उसको छान कर ठंडा कर लें या गर्म कर लें, जो भी उसका प्रसंस्करण करना उसको कर लें। इसके बाद स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में वातावरण और पशुशाला की साफ सफाई व्यवस्था, यदि आप कहीं धूल धाल वाली जगह पे दूध लगा रहे हैं तो दूध आपका संक्रमित रहेगा, तो पशुशाला हवादार होना चाहिए, कम से कम जहां आप दूध निकाल रहे हो पशु का वो स्वच्छ हो, वहां पर धूप का आना जाना हो, मतलब और एक शांत स्थान पे आप दूध लगाएं। एक चीज और बहुत जरूरी बात है, दूध दोहन के पूर्व कम से कम आधा घंटे पहले तक उस पशुशाला में झाड़ू या सफाई की व्यवस्था ना करें, क्योंकि अगर धूल आधे घंटे तक हवा में तैरता रहेगा, जब हम दूध निकालेंगे दूध में जाके धूल बैठ जाएगा।
1: डॉक्टर साहब ये बताओ, जो दूध देर तक कच्चा रखा रहा है उसे क्या दिक्कत होती है?
0: देखिए, चूंकि दूध में प्रमुख रूप से जो जीवाणु होते हैं कुछ ठंडा प्रिय होते हैं कुछ गर्म प्रिय होते हैं, अगर हम उसको ज्यादा देर तक रखे रहेंगे तो उसमें जो हमारी जीवाणु की संख्या है वो लगातार वृद्धि करती रहेगी, और उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो अगर ज्यादा बढ़ गई तो हमारा दूध खट्टा हो जाएगा, और थोड़े देर और रखे रहे सामान्य तापमान पे दूध हमारा खराब हो जाएगा, इसीलिए उसको ठंडा करना जरूरी है।
1: जैसे डेयरी में रख देते हैं फ्रीजर में,
0: वो सबसे उत्तम व्यवस्था है कि हम उसको तुरंत ठंडा कर दें, या हम उसको ठंडा करके या प्रोसेसिंग कर लें, वो सही व्यवस्था है।
1: तो डॉक्टर साहब ये बताओ, ग्रामीण स्तर पर जो है स्वच्छ दूध उत्पादन में कमी के प्रमुख कारण क्या बढ़े?
0: देखिए, आमतौर पर ये देखा गया कि गांव में या हमारे जो ग्वाला भाई हैं पशुओं को बच्चा खोल देते हैं दूध पीने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारा संक्रमित दूध या अस्वस्थ दूध पैदा होने का। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, बच्चे को अगर पिलाते हैं दूध फैलाने के लिए जिसको कहते हैं, तो उसका आयन या थन को धुल दें, उसके बाद गंदे स्थान पर दूध निकालना भी एक कारण है, गंदे बर्तन इस्तेमाल कर लेते हैं, मालूम पड़ा कि हम कोई भी काम में बर्तन ले तो उसी में दूध निकाल लिए, इससे हमें बचना चाहिए। पशुओं को दुहने से पूर्व ठीक से साफ सफाई करना चाहिए, दूध दोहन वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य कपड़ा और हाथ साफ रहना चाहिए, नहीं होता इससे भी गंदगी होती है। और आमतौर पर देखा गया जैसे दूध बेचने हेतु जब ले जाते हैं किसान भाई, तो ढक्कन अगर ढीला है कैन का, तो उसमें पत्ती या कपड़ा वगैरह लगा लेते हैं, इससे भी संक्रमण होता है।
1: ये बताएं भैया, जैसे स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु प्रमुख सावधानियां क्या बांटें?
0: क्योंकि बरसात का समय है पशुपालक भाइयों, और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए जो सावधानियां हमको अपनाना चाहिए उसमें हम आपको मुख्य रूप से बता देते हैं। जो हमारा पशु है जिसका हम दूध निकाल रहे हैं वो स्वस्थ होना चाहिए, और उसको दोहने वाला दूध दोहन करने वाला व्यक्ति भी स्वस्थ होना चाहिए। दूध दोहन से पूर्व पशु की साफ सफाई कर लें, जैसे खरारा लगा देते हैं या पुराना ब्रश से साफ कर दें, विशेषकर पशु का पिछला हिस्सा जो है वहां पर साफ सफाई कर दें ताकि कोई भी कचरा उसमें ना गिरने पाए। दूध निकालने से पूर्व चारों थन का 2-4 बूंद अगर हम निकाल के देख लेंगे तो थन आला है तो ये समझ में आ जाएगा, और जो शुरू में जीवाणु ज्यादा होते हैं वो निकल जाएंगे। दूध दोहन का स्थान साफ हवादार और रोशनी युक्त होना चाहिए। दूध निकालते समय ग्वाला को सिर खुजाना, तम्बाकू खाना, खांसना, छींकना, इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि इसी से संक्रमण बढ़ता है। दूध निकालने वाला बर्तन भी हमारा साफ और धुला होना चाहिए। प्रयास ये करें कि हम गुम्बदनुमा बाल्टी जो आती है, चौड़े मुख बाल्टी होगी तो उसमें संक्रमण की संभावना ज्यादा रहती है, और दूध में बाहरी सामग्री जैसे मच्छर मक्खी इत्यादि ना हो। और अगर किसी कारणवश हमारे पास ज्यादा पशु हैं और कोई बीमार है तो हम अस्वस्थ पशु का दूध सबसे बाद में निकालेंगे और उसको अलग रखेंगे। स्वस्थ पशुओं का दूध हम पहले निकाल लेंगे, उसका हम अलग उपयोग कर सकते हैं, अस्वस्थ पशु का दूध हम बाद में निकालें। और दूध को कभी भी बिना गर्म किए नहीं पीना चाहिए किसान भाइयों को। अंत में मैं ये कहूंगा कि सही विधि से दूध निकालें, सही विधि का मतलब पूर्ण हस्त विधि है, अंगूठा अंदर करके दूध निकालना एक गलत विधि है, अंगूठा ऊपर या अंगूठा बाहर, पूर्ण हस्त विधि से दूध निकाल लें, और आपका जो दूध है उसको यथाशीघ्र जी ठंडा या गर्म करके उसको प्रोसेसिंग कर लें।
1: भैया डॉक्टर दिवेंद्र स्वरूप जी, आप आयन और स्वच्छ दूध उत्पादन के विषय में इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: विषय पर डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप से अरविंद कुंवर की बातचीत। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर आशुतोष राय की वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय है ईयरफोन के ज़्यादा उपयोग से होने वाली हानियाँ।
1: ईयरफोन लगाने और उससे होने वाली हानियाँ, उसके बारे में आज बताना चाहूँगा। आजकल हम लोग देखते हैं कि हर इंसान, चाहे वो एडल्ट हो, बच्चा हो, ख़ासतौर से स्टूडेंट्स हैं, कोचिंग जाने वाले हैं, और इवन आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, तो ईयरफोन का जो यूज़ हो गया है, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। और गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके मेट्रोस तक, हर इंसान ईयरफोन कान में लगाए हुए आजकल चला जा रहा है। चाहे वो मेट्रो में बैठा है, बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, क्लास कर रहा है, म्यूज़िक भी लोग सुन रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो भी ईयरफोन लगे रहते हैं। तो आज मैं उसके फ़ायदे और नुकसान ईयरफोन से होने वाले बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि ईयरफोन इसलिए लगाया जाता है कि जो आपके बगल में बैठा हो या आपके साथ दूर हो, उसको आपकी म्यूज़िक या आपके क्लास या कुछ भी जो आप सुनना चाहते हो उसको सुनाई ना दे, वो डिस्टर्ब ना हो, तो आप दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, इसके लिए ईयरफोन लगाया जाता है। लेकिन उसके नुकसान ये हैं कि आपका जो कान का नेचुरल तरीका है आवाज़ सुनने का, वो नेचुरल नहीं रह जाता है। ईयरफोन में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे साउंड को कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने का, या मास्किंग होता है, बैकग्राउंड नॉइज़ मास्क। बहुत तरह के ईयरफोन्स आते हैं, बहुत कॉस्टली भी, बहुत सस्ते भी। तो जो सस्ते वाले होते हैं उनमें कोई भी फिल्टर नहीं होता है मास्किंग का, साउंड कंट्रोल का, अचानक से साउंड तेज़ हो गई, तो एक तो ये कारण है कि कान में बहुत सारे एकॉस्टिक इंजरी जिसको कहते हैं, साउंड से जो इंजरी, जैसे हम लोग देखते थे पहले कि दिवाली में पटाखे बजाते हैं लोग और पर्दा फट जाता है तेज़ पटाखे से, तो आजकल वो ईयरफोन से भी कभी कभी होने लगा है, जो लो क्वालिटी के ईयरफोन्स हैं। तो एक तो होता है कि पर्दा फट गया, दूसरा होता है कि कान की नसों में जो आवाज़ सुनती है नसें, उनमें एकॉस्टिक ट्रॉमा, उनमें साउंड से एक चोट लग जाती है कभी कभी तेज़ साउंड की वजह से, तो उसकी वजह से भी सुनाई देना कम हो जाता है या कान में आवाज़ आने लगती है, जिसको हम लोग टिनाइटस कहते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये आदमी में बहरापन हो जाता है, उसको सुनाई नहीं देता, और सिर दर्द भी होता है कभी कभी लोगों, कुछ लोगों को बहुत सिर दर्द होता है। तीसरा ये कि कान में दर्द, अगर इल फिटिंग ईयरफोन्स हैं, जैसे रबड़ के होते हैं, कड़े रबड़ हैं, सिलिकॉन नहीं है जो ये ईयर के अंदर डालते हैं, तो वो चारों तरफ चमड़ा लाल कर देगा और दर्द करेगा, तो ये भी एक कारण है। दूसरा ये कि जब आप दिन भर कान में लगाए रहते हैं तो अंदर हवा नहीं जा रही है, मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, तो बरसात में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या वैसे भी उसमें और दर्द भी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, चमड़ा लाल हो जाता है। तो दर्द है, बहरापन है, कान में आवाज़ है, इन्फेक्शन है, ये सब चीज़ें ईयरफोन के मिसयूज़, यूज़ तो नहीं रोक सकते लेकिन मिसयूज़ से होता है, जिसको हमें देखना पड़ेगा। इसके तरीके ये हैं कि हम ईयरफोन एक तो अच्छी क्वालिटी का लें, उसमें कंजूसी ना करें, अपना कान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि ये बहुत सस्ता वाला लें। जैसे हम चश्मा अच्छा लगाते हैं, अच्छा लेंस लगाते हैं, उसी तरह कान में भी हमें अच्छा ईयरफोन लगाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, ब्रांडेड हो। दूसरा ये है, सॉफ्ट हो उसका जो ईयर टिप हो, या फिर ईयरफोन की जगह हेडफोन लगाएं, जो ऊपर से लगता है, उसमें कान अंदर से दबता कम है, कान के चमड़े कम दबता है, उसमें दर्द कम होता है, तो कान में अंदर मॉइस्चर या गंदगी ये जमा नहीं होती। ईयरफोन से क्या होता है, जो अंदर वैक्स बन रहा है, जो उसको हम लोग घूट कहते हैं, वो कभी कभी अंदर पुश हो जाता है। तो अच्छा ईयरफोन यूज़ करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, हर समय इस्तेमाल ना करें, साफ़ सुथरा रखें और अपने को बचा के रखें हाई साउंड से, बहुत लो वॉल्यूम पे सुने, इससे आपका कान बचा रहेगा।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप डॉक्टर आशुतोष राय की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था ईयरफोन के ज़्यादा उपयोग से होने वाली हानियाँ, और इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

कार्यक्रमों का विवरण। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुनेगा सुबह 7 बजे और 7:10 पर फिल्मों से भजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। सुबह 7:30 बजे, दोपहर 12:15 बजे और रात 10:30 बजे विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन हम आपको सुनवाएंगे। सुबह 8:45 पर आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनवाया जाएगा। प्रस्तुति होगी सुंदरम तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुबह 9:50 पर आप अमित कुमार जायसवाल के स्वर में गाए गीत और भजन सुनेंगे। 10:05 पर आप सुनेंगे वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में नुपुर जोशी से नेहा गुप्ता और अभयकांत तिवारी की बातचीत। और सुबह 10:30 हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत कार्यक्रम। लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं राजा राम यादव, छेदीलाल और संगीता राय। इनके स्वर में गाए लोकगीत का आज आप आनंद देंगे। दिन में 11:00 सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश के साथ हम उपस्थित होंगे दोपहर 12:30। प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। दोपहर 1:15 पनघट कार्यक्रम में आज बहनें चर्चा करेंगी संघर्ष सफलता की कुंजी है और आकांक्षा भारती के स्वर में गाए लोकगीत आप सुनेंगे। साथ ही आप सुनेंगे रंजना पटेल की वार्ता गाँव में बहु बेटियों के बदलते सपने और रसोई घर में पकेंगे व्रत के पकवान। शाम 5:15 युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी चर्चा करेंगे समाज के विकास में नागरिक संवेदनशीलता की भूमिका पर। प्रेरणा पुंज में कैप्टन विक्रम बत्रा पर होगी बात। शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में आज बात होगी सिंचाई के वैकल्पिक विधियों से जल संरक्षण करें और विष्णु राजा के स्वर में गाए लोकगीत सुनिएगा। साथ ही विजय शंकर त्रिपाठी से रामायण पाठ आप सुनेंगे। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी की वार्ता नव्य न्याय भाषाय वैशिष्ट में आप सुनेंगे। और रात 8:00 सेहत की बात कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बदलते मौसम में त्वचा का होम्योपैथिक उपचार विषय पर डॉक्टर राकेश राज से सुंदरम तिवारी की बातचीत। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी कार्य को कल पर ना टालें, जो भी करना है आज और अभी करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता।

प्लास्टिक के बैगों का उपयोग कम करें, जूट के बैगों का उपयोग ज़्यादा करें। इससे हम अपनी प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो श्रोताओं, कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

आज प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का समापन प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की विनय और रामायण के पारायण की फलस्तुति की गई है। भक्त कवि का कहना है कि इस कलिकाल में श्री राम स्मरण के अतिरिक्त योग, जप, तप, व्रत, पूजा आदि कोई भी दूसरा साधन नहीं है। स्वयं को संबोधित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे मन, पतित पावन श्री राम का भजन कर किसने सदगति नहीं पाई। जो मनुष्य रघुकुल शिरोमणि का चरित गाते और सुनते हैं, उनके समस्त पाप और मन का मैल बिना परिश्रम के धुल जाते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो रामायण की 5-7 मनोहारी चौपाइयों का अर्थ समझकर हृदय में धारण कर लेते हैं, उनका 5-5 प्रकार की अविद्या का अंधकार अर्थात अज्ञान श्री राम कृपा से मिट जाता है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने परम शांति पाई, उन श्री राम के समान कृपालु अन्य कोई नहीं। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, न ही आपके समान कोई दीन बंधु। ऐसा जानकर हे रघुवंश भूषण, आवागमन के मेरे भयानक दुख का हरण कीजिए। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिदायक है।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और अब लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं शागिर्द फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है लता मंगेशकर ने। मजरूह सुल्तानपुरी जी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने धुन तैयार की है, और ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, अब जो भजन हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस भजन को अपने स्वर से सजाया है हेमलता जी ने। पर हेमलता जी और लता मंगेशकर जी की

आवाज़ इतनी मिलती जुलती थी कि अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलिए सुनते हैं अखियों के झरोखे फिल्म से ये भजन। अपनी स्वर से सजाया है लता मंगेशकर जी ने, समीर जी की रचना है, डेविड धवन ने धुन तैयार की है और ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। आज से की जा सकेगी यात्रा। रक्षा मंत्री ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी से मांगी जांच की स्टेटस। और बढ़ी और आज लखनऊ में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक करेगी एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन बनाने के कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
1: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे SCR को स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है।
0: इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
2: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
3: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा।
4: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल

0: इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाना भी है।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं है बल्कि एसेसिबल, एफोर्डेबल, एफोर्डेबल और क्वालिटी ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम बनाना भी रहा है। आज भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने SIT की संरचना का विवरण भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ा दी है। अब आरोपियों की पेशी 27 जुलाई को होगी। वहीं SIT ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। समाचार कक्ष से अरुण।
0: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवादों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के निर्देश दिए हैं। यह विशेष अदालत 21 से 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित होगी। कार्यवाही से पहले इन मामलों से जुड़े पक्षों को लोक अदालत से पहले होने वाली सुलह वार्ता में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर योगी की पाती साझा करते हुए लोगों से वृक्षारोपण को अपने जीवन के संस्कारों और उत्सवों से जोड़ने की अपील की।
3: अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम अभियान में प्रदेश ने 40 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा कर नया इतिहास रचा है। यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नव सामर्थ्य का जयघोष है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व और जीवन संरक्षण का संदेश समेटे अभियान सनातन चेतना का महोत्सव है। श्री योगी ने लोगों से अपील की है कि परिवार के शुभ अवसरों, मांगलिक आयोजनों और विशेष दिनों को वृक्षारोपण से जोड़कर हमें प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहिए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC आज लखनऊ में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर उनके विचार जानेगी। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि कल समिति ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बैंकर्स और वकीलों से विचार विमर्श किया। राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश का क्रम जारी है। गोरखपुर और इसके आसपास के कई जिलों में कल दिन में उमस भरी गर्मी महसूस की गई, हालांकि रात में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 19 जुलाई तक वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। आज से की जा सकेगी यात्रा। रक्षा मंत्री ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 22वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने SIT से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। और आज लखनऊ में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बैठक करेगी एक

0: राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन, राग है भैरवी में ठुमरी।

श्रोताओं, अभी आप मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत किया था कौशल कुमार भट्ट ने, हारमोनियम पर संगत किया था श्रीकांत ने, और अब हम आपको सुनवाते हैं विश्वास मोहन भट्ट का ये बांसुरी वादन।

श्रोताओं, भी आप देशगान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सपने वो नहीं जो हमें सुलाते हैं, सपने वो हैं जो हमें जगाते हैं और कुछ नया करने को प्रेरित करते हैं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में

0: रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणाली

तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू

0: ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमरीका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज़ जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि

0: हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। इंडिया ऑफिशियली लॉन्चेस इट्स कैंपेन फॉर इलेक्शन एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2028-29 टर्म। Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's tests.

0: जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल यूएनएससी के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाजाबता आगाज कर दिया है। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में भारत की उम्मीदवारी का आगाज करते हुए वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर ने कहा कि दुनिया बढ़ते हुए तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम का सामना कर रही है, जिसकी वजह से अक्वामे मुत्तहिदा का रोल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। उन्होंने भारत के शांति विजन का भी ऐलान किया, जिसका मतलब है उसूलों, एतमाद और दयानतदारी के जरिए जामे तरक्की को यकीनी बनाना। उन्होंने कहा कि यह विजन आलमी अमन, सलामती और मुनसिफाना तरक्की के लिए भारत की रहनुमाई करेगा। भारत की खिदमात को उजागर करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत अक्वामे मुत्तहिदा के क्याम से अब तक तकरीबन 3 लाख अहलकारों को अक्वामे मुत्तहिदा के तकरीबन 50 कयाम अमन मिशन में भेज चुका है, जबकि इस वक्त 4,300 से ज्यादा भारतीय अहलकार 10 मुख्तलिफ कयाम अमन मिशन में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मुजाकिरात और सिफारतकारी का हामी रहा है और उसने आलमी खित्ते जनूब के खदशात और मफादात को आलमी सतह पर मौसर आवाज फराहम करने की कोशिश की है। अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से हिमायत की अपील करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सलामती काउंसिल में भारत की मौजूदगी इस अहम इदारे में फैसला साजी को मजीद तकवीत फराहम करेगी। भारत अगर मुंतखब हो जाता है तो वह 2028 से 2 साल तक सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहेगा। इससे कबल भारत 8 मरतबा सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है, जिनमें सबसे हालिया मुद्दत 2021-22 थी। वियतनाम के फूकोक जजीरे के नजदीक कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी कल रात मुंबई पहुंच गया। मैलुकीन के जसद खाकी को होचिन मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाया गया। इस अमल को वियतनाम में मौजूद भारत के सिफारती मिशन ने वियतनाम के हुक्काम के साथ मिलकर मुकम्मल किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की रियासती हुकूमतों से कहा गया है कि वो महलुकीन के अहले खाना के साथ राब्ते में रहें और जसद खाकी को उनके आबाई शहरों तक पहुंचाने के इंतजामात में तावुन फराहम करें। वियतनाम में भारतीय सिफारत खाने ने इमदादी कार्रवाई, लाशों की शिनाख्त और उन्हें वतन वापस भेजने के अमल में तावुन के लिए वियतनाम के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 32 भारतीय सयाहों और 4 मकामी अमले के अरकान को ले जाने वाली एक तेज रफ्तार कश्ती जुमे के रोज फूकोक जजीरे के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में 15 भारतीय सयाह हलाक हो गए। इस हादसे में बच जाने वाले 16 अफराद भारत वापस आ चुके हैं, जबकि एक जख्मी सयाह अब भी वियतनाम के एक अस्पताल में जेर इलाज है। मगरबी बंगाल के साहिल से दूर रवा माह के अवाइल में लापता होने वाली मछली पकड़ने वाली एक कश्ती के बारे में मालूम हुआ है कि वो खलीज बंगाल में उलट गई थी, जिसमें 9 माहीगीरों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 6 दीगर अब भी लापता हैं। ये कश्ती 2 जुलाई को 15 माहीगीरों के साथ शंकरपुर बंदरगाह से रवाना हुई थी। इस कश्ती से आखिरी बार रबता 5 जुलाई को हुआ था, जिसके बाद इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इतवार के रोज कोस्ट गार्ड, भारतीय बहरिया और रियासती एजेंसियों की मुश्तरक तलाशी मुहिम के दौरान खलीज बंगाल में इस उल्टी हुई कश्ती का पता चला। कश्ती के कैबिन से 9 बोसीदा लाशें बरामद की गईं, जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। इन लाशों को जनूबी 24 परगना जिले के सीतारामपुर लाया गया है और शिनाख्त के लिए कटापुकुर मुर्दा खाने में रखा गया है। लाशों की शिनाख्त के मकसद से DNA मिलाप के लिए अहल खाना के खून के नमूने भी लिए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की है। वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से हलाक होने वाले हर शख्स के लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपये और जख्मियों के लिए 50,000 रुपये की इमदाद देने का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मछली पकड़ने वाली एक कश्ती FB माँ काली मशरकी मिदनीपुर के दीघा शंकरपुर माहीगीरी बंदरगाह से 2 जुलाई को 15 माहीगीरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई को इस कश्ती से राबता मुनकता हो गया था। भारतीय कोस्ट गार्ड, बहरिया और रियासती एजेंसियों की जानिब से

0: कई दिनों तक मुश्तरका तलाशी मुहिम चलाई गई। बिलाखिर शनिचर की दोपहर को जनूबी 24 परगना के काप द्वीप साहिल के करीब इसका पता लगा लिया गया। इमदादी टीमों ने कश्ती के कैबिन से 9 फरसुदा लाशें बरामद कर ली हैं, जबकि 6 माहीगीर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आसपास के पानी में तलाशी की कार्रवाई तहाल जारी है। मगरबी बंगाल के माहीगीरी के वजीर राजेश महतो ने सोगवार खानदानों को यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। DNA की तस्दीक और कानूनी जाब्ते मुकम्मल होने के बाद लाशें उनके मुतल्लिका लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: भारत की सबसे बड़ी आलमी टेक्सटाइल नुमाइश भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। इस तकरीब का इफ्तिताह टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5F विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरन से मुतासर भारत टैक्स 2026 का मकसद इस कारोबार, सरमायाकारी, खाम माल की फराहमी, इख्तिरात, पॉलिसी साजी की बातचीत और टेक्सटाइल वैल्यू चेन में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए एक आलमी मेयार का प्लेटफॉर्म बनाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये 4 रोजा प्रोग्राम टेक्सटाइल, फैशन, पायदारी, टेक्नोलॉजी, इख्तिरात, सरमायाकारी और बैन अल-अक़वामी तिजारत में आलमी सतह पर भारत की बढ़ती हुई क़यादत को उजागर करेगा। इस नुमाइश में सनतकार, बरामद कुनंदगान, आलमी खरीदार, सरमायाकार, पॉलिसी साज, बैन अल-अक़वामी वफूद, दस्तकार, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी फराहम करने वाले इदारे एक जगह इकट्ठा होंगे। इस तकरीब में हजारों नुमाइश कुनिंदगान, 7,000 से ज्यादा खरीदार और मंदोबीन और 20 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे, जिनमें अमरीका, बरतानिया, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक शामिल हैं। हुकूमत के तआवुन को नुमाया करते हुए इस साल 8 रियासतें इस तकरीब की शराकत दार हैं, जबकि 9 रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके नुमाइश कुनिंदगान के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। नई दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक ये हमले जारी रहेंगे ताकि ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके और आबनाए हुरमुज में बेगुनाह शहरियों और तिजारती जहाजों पर हमले करने की उनकी सलाहियत को खत्म किया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वो पिकैक्स पहाड़ियों में वाकई नतांज के करीब जेर जमीन न्यूक्लियाई ठिकाने को तबाह कर देंगे, जहां मगरबी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान गैर ऐलानिया तौर पर यूरेनियम अफजूदगी का मरकज कायम कर रहा है। तफसील हमारी नामानिगार से।
3: अमरीकी सदर ने यह भी ऐलान किया कि अमरीका आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करेगा और इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाजों पर 20% चार्ज आयद करेगा ताकि समंदरी सिक्योरिटी के खराजात पूरे किए जा सके। सर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि यह नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाजों और उन जहाजों पर लागू होगी जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए हुरमुज खुली है और खुली रहेगी, चाहे ईरान इससे मुत्तफिक हो या ना हो। उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक के तजारती जहाजों को आजादाना आमदोरफ्त की इजाजत बरकरार रहेगी। अमरीकी फौज ने यह भी ऐलान किया कि वह आज रात से ईरानी बंदरगाहों की दोबारा नाकाबंदी शुरू करेगी। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीका के इकदाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि आबनाए हुरमुज पर उसका मुकम्मल इख्तियार बरकरार है। ईरान ने वाज़ेह किया किसी भी सूरत में अमरीका को आबनाए हुरमुज के बंदोबस्त में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मुत्तहिदा अरब इमारात के 2 टैंकरों पर आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान ईरानी क्रूज मिसाइलों के हमले के बाद भारतीय हमले का एक रुकन हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। UAE की वजारत दिफा ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में यह इत्तला दी है। वजारत ने कहा कि इन टैंकरों मुंबासा और अल बाहिया को ओमान की आबी हदूद में आबनाए हुरमुज की जनूबी गुजरगाह में निशाना बनाया गया। हलाक होने वाला अमले का रुकन मुंबासा टैंकर में सवार था। जख्मी होने वाले 8 अफराद में से 4 शदीद तौर पर जख्मी हैं। जख्मियों में 6 भारतीय शहरी जबकि यूक्रेन के 2 शहरी हैं। यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने दावा किया है कि उन्होंने कल सऊदी अरब के अबा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मिजाइलों और ड्रोन से हमले किए। हूसियों के मुताबिक ये हमला यमन के सना बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर होने वाले फजाई हमलों के जवाब में किया गया, जिनके बारे

0: में उनका दावा है कि वो हमले सऊदी अरब ने किए थे। इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम ये कार्रवाई कशीदगी में एक नुमाया इजाफा समझी जा रही है, क्योंकि कई बरस कबल सऊदी अरब क्यादत वाले इत्तेहाद की जानिब से हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों पर हमलों के बाद इस नौयत की सूरत हाल दोबारा सामने आई है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। खवातीन क्रिकेट में कल लॉर्ड्स के मैदान में पहली मरतबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीखी कामयाबी हासिल की। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। मर्दों की भारतीय क्रिकेट टीम आज 3 एक रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगी। ये मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन मैदान में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सपहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारत की 21 साल तक की उम्र की जूनियर खवातीन हॉकी टीम ने अपने बरतानिया दौरे के आखिरी मैच में आज इंग्लैंड में लेलशाल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में बेल्जियम का मुकाबला करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ 0-2 की शानदार जीत के साथ वापसी के बाद भारतीय टीम इस दौरे का इख्तिताम जीत के साथ करने की कोशिश करेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाह होने वाले आज के उर्दू अखबारात की छह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की छह सुर्खी है, भारत और जापान ने आजाद, खुले और कवानीन पर मबनी भारत बहरुल काहिल खित्ते के लिए अपनी अहदबस्तगी का अदा किया। अखबार इनकलाब की छह सुर्खी है, गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 अहम तजुर्बात का मियाबी के साथ मुकम्मल। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरगर्मी तेज, पार्लिमानी कमेटी लखनऊ पहुंची। दौरे का मकसद सियासी जमातों, सरकारी अफसरान और दीगर फरीकों से तजावीज हासिल करना है। यह खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार प्रताप लिखता है कि वजीर आजम मोदी ने फिजिक्स ओलंपियाड जीतने वाले भारतीय तलबा को मुबारकबाद दी। अखबारात ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के इस बयान को नुमाया किया है कि खवातीन की खुदमुख्तारी विकसित भारत का संग बुनियाद बन चुकी है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाजाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मरतबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: वीटी वीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे इस मानसून में। 22 जुलाई का महीना चल रहा है और हमारे पेरेंट्स इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो रहे होंगे कि बच्चों का भविष्य बनाना है और इस वजह से बहुत भाग दौड़ भी हो रही होगी। और इस भाग दौड़ में ये सोचने में कि हमें अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर

0: इंजीनियर, प्लेयर वगैरह वगैरह बनाना है। कहीं ये सोच हम उन पर थोप तो नहीं रहे हैं? चलिए इसी बात पर आज हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, और इस चर्चा में मैं आपकी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव, कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बच्चों पर अपनी सोच ना थोपें, आज हमारा यही विषय है श्रोताओं। हम इसे कुछ पेरेंट्स, सभी को नहीं कह रही हूँ भाई, हमारे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं ना जो अपनी सोच अपने बच्चों पर थोपते रहते हैं। अपनी इच्छा, अपनी सोच इस कदर अपने मासूम से बच्चे पर थोप देते हैं जैसे वो इच्छा पूर्ति का सामान हो। उसकी सोच, उसकी इच्छा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, और हमारी इस सोच तले बच्चा किस मानसिक तनाव से गुजर रहा है, क्या कभी आपने सोचा है इस बारे में? नहीं सोचा होगा श्रोताओं। हर बच्चा अपने आप में अनोखा है। पता है, जब हम बार बार उन्हें ये कहते हैं ना कि तुम्हें यही बनना है, डॉक्टर बनना है या प्लेयर बनना है या कुछ भी बनना है, तो बच्चा मानसिक दबाव महसूस करने लगता है, उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है, वो खुद के फैसले लेने से डरने लगता है। और सबसे बड़ी बात श्रोताओं, ये बात बहुत बड़ी है, बच्चा अपने माता पिता के करीब आने की बजाय उनसे दूरी बनाने लगता है, बातचीत कम कर देता है, और बच्चे अपनी भावनाएं माता पिता से छुपाने लगते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वे खुद क्या बनना चाहते हैं। एक तरह से वो अपनी मासूमियत खोने लगते हैं। हर बच्चा एक स्वतंत्र व्यक्ति है। आपकी बातें उसके विकास के लिए मददगार होनी चाहिए, ना कि उसके विचारों को दबाने वाली। पता है, माता पिता की उम्मीदों का बोझ उन्हें मानसिक रूप से थका देता है। कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? ये गलती सोची जोशी, अगर कर रहे हैं श्रोताओं तो रुक जाइए, थम जाइए, और हम रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, अपनी वीडियो सेट को छोड़कर हम बस अभी हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि हमारी उम्मीदों के तले बच्चा मानसिक रूप से थक जाता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या माता पिता के सपनों को साकार कर पाएंगे कि नहीं। ये दबाव बहुत बड़ा है, आप ये गलती मत कीजिए। और एक ऐसी ही फिल्म बनी थी तारे जमी पर, वो हालांकि एक स्पेशल चाइल्ड को लेकर बनाई गई थी फिल्म, लेकिन श्रोताओं, स्पेशल हो या नॉर्मल, बच्चा तो बच्चा ही होता है।

वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस कदर दौड़ने लगता है कि वो अपनी मासूमियत खो देता है। तो क्यों ना एक गीत उसी फिल्म का हम आपको सुनवा दें। चलिए हम और आप दोनों मिलकर सुनते हैं।

श्रोताओं, सचमुच अपने बच्चे की मासूमियत को समझिए, उसके दर्द को समझिए। प्लीज आप अपनी गलती में सुधार कीजिए, अपने बच्चों के बातों को ध्यान से सुनिए, उनकी राय और पसंद को ध्यान से समझें और उन्हें खुद सही और गलत में अंतर करने दें। और ये मौका आप उनसे बात कर ही दे सकते हैं, है ना श्रोताओं। उनका मार्गदर्शन करें, ना कि उन पे हुक्म चलाएं। सही रास्ता दिखाएं, उन्हें छोटी छोटी गलतियां करने दीजिए, डांटिए नहीं। उसी बात को बड़े प्यार से समझाइए कि आपने जो गलती की क्या वो सही है। फिर देखिए आपका बच्चा ही स्वयं

कहेगा कि नहीं, ये सही नहीं था, मुझसे गलती हो गई। यानी अपनी गलतियों से उन्हें अनुभव लेने दें। और सबसे बड़ी बात श्रोताओं, जो कि अक्सर हर माँ बाप करते हैं, कि अपने बच्चे की तुलना, आप अपने बच्चे की तुलना करना बंद करें। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि उनके बच्चे को देखो कितना स्मार्ट है, पढ़ाई में कितना तेज है, और तुम कैसे हो या कैसी हो। ये तुलना उनको आक्रोशित करती है और कहीं ना कहीं वो इस बात से बहुत आहत होते हैं। तो आप ये तुलना बंद करिए। आपको ये समझना होगा कि हर बच्चे की क्षमता और काम करने की गति अलग अलग होती है। आप अपने बच्चे के दोस्त बनिए, उनसे पूछिए कि वो क्या बनना चाहते हैं, देखिए वो किस विषय में उनकी खास रुचि है, उनके अंदर छुपे हुए उस भविष्य के कलाकार को ढूंढिए जो जीवन के कैनवास पर अलग अलग रंग भरने को आतुर है। आप क्या बनना चाह रहे थे या आप क्या नहीं बन पाए, ये सोच थोपने की बजाय उन्हें इस जीवन रूपी आकाश में खुद उड़ने का हौसला दें। फिर वही बच्चा वो काम कर दिखाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा, वो हर मैदान फतह कर लेगा। बस आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, ना कि ये कहने की कि आपको यही बनना है, डॉक्टर बनना है, प्लेयर बनना है, कुछ भी बनना है। नहीं, आप उन्हें वो बनने दीजिए जो वो बनना चाहते हैं।

0: इस बात को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप पर छोड़ती हूँ कि आप अपने मासूम को क्या बनना देखना चाहते हैं, क्या बनते हुए देखना चाहते हैं। वो फूल खुद ब खुद मुस्कुरा कर खिलना चाहता है। और अब अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की थी। नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट

0: यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं परिणीता फिल्म से। सुनिधि चौहान की खूबसूरत सी आवाज़ है और इस गीत की रचना की है शांतनु मोइत्रा ने। शांतनु मोइत्रा का ही संगीत है, आनंद लीजिए इस गीत का।

हम में से आप सभी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी सचमुच क्या है, क्या है इसके अंदर। लेकिन ज़िंदगी क्या है ये बताया हमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज़ ने। शोर फिल्म का अब गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और इस गीत की रचना की है संतोष आनंद ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है। देखिए ज़िंदगी

के बारे में सवाल तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन जिंदगी क्या है ये सुनिए किशोरदा और लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज में।

सचमुच ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, आपकी और हमारी कहानी का नाम ही जीवन है। श्रोताओं, ये आवाज़ थी मुकेश जी की, क्षमा कीजिएगा, हमने किशोर दा का नाम लिया, और लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी। और अब हम आपको सुनवाते हैं बधाई हो बधाई फिल्म का गीत, के और अलका याग्निक जी की खूबसूरत सी आवाज़ में। अगर जिंदगी में मोहब्बत है तो सब कुछ है, देखिए। जावेद अख्तर जी की ये रचना है और अनु मलिक ने संगीत तैयार किया है इस गीत का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जौनपुर और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का।
1: मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत जौनपुर के करीब 27,000 शिक्षकों और शिक्षक विभाग से जुड़े कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना के दायरे में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया शामिल हैं। अब तक जिले में 8,000 स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान लाभार्थियों को प्रतीकात्मक कार्ड वितरित किए गए। साथ ही साथ दीनदयाल हस्तकला शुक्ल वाराणसी में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्टर सभागार में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की शिक्षा जगत से जुड़े प्रत्येक कर्मियों के हित के लगातार कार्य करें। मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना से शिक्षक और कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जिससे निश्चित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
2: शिक्षक राजेश पांडे ने कहा,
3: यह योजना शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा और इसी अपेक्षा के साथ सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का सभी शिक्षक स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
1: जौनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षिक सत्र 2026-27 के तहत स्कूल चलो अभियान एवं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एक विशाल जनपद स्तरीय जागरूकता रैली निकाली गई। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराना, शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करना। टाउन हॉल मैदान नगरपालिका परिसर से शुरू हुई इस रैली के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समीर, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिन बच्चों के नामांकन और

0: की शिक्षा को संवारने के गुरुजनों की भूमिका सर्वोपरि होती। उन्होंने बताया कि विद्यालय चलो अभियान के प्रथम और द्वितीय चरण में मिलाकर जनपद में अब तक कुल 60,000 नए विद्यार्थियों का नामांकन किया जा चुका है। 15 जुलाई तक इस संख्या को वृद्धि होने की संभावना, सरकार का संकल्प और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। जिले के मुगरा बादशाहपुर डिपो से जुड़े यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। करीब 38 वर्ष पुराने इस डिपो को अब तक पूरी तरह से कायाकल्प होगा। शासन ने डिपो को पुनर्निर्माण एवं आधुनिक के लिए 53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। बरसात समाप्त होते निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वर्ष 1988 में निर्मित मुगरा बादशाहपुर रोडवेज डिपो का भवन अब जर्जर एवं खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ से प्रतिदिन जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, लखनऊ के लिए 200 से अधिक बसों का संचालन होता है। इन बसों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 50,000 यात्री सफर करते। शशि शुक्ला डिपो इंचार्ज मुगरा बादशाहपुर ने बताया कि डिपो का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके तहत शासन की ओर से 53 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। बारिश खत्म होते निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। डिपो का आधुनिकरण सुविधा से लैस किया जाएगा। कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। जौनपुर जिले के निवड़िया थाना क्षेत्र के गोपालापुर में 33/11 kV क्षमता विद्युत उपकरण का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना के लिए कुल 7,92,00,000 रुपए की स्वीकृति शासन की ओर से प्रदान की गई। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि निगम के कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग 5 से 6 माह के काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। नए उपकेंद्र के निर्माण में 35 गांव से 8,000 से अधिक उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। वर्तमान में गोपालापुर और आसपास के क्षेत्रों में निवड़िया तथा रामपुर पावर हाउस से बिजली आपूर्ति की जाती है। इन उपकेंद्रों पर लोड अधिक होने के कारण से उपभोक्ताओं को बिजली ट्रिपिंग और फॉल्ट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए अपना दल से मड़ियाहूं विधायक डॉक्टर आरके पटेल ने उपकेंद्र का निर्माण का प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा था। इसमें अब स्वीकृति मिल गई। निवड़िया गोपालापुर उपकेंद्र निर्माण के लिए भूमि भी चिन्हित कर ली गई है। जौनपुर कलेक्टर सभागार में डीएम सैमुअल पाल की अध्यक्षता में पौधारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। इसमें वृद्ध स्तर पर पौधारोपण अभियान की रूपरेखा की तैयारी पर गहन चर्चा की गई। इस वर्ष जनपद में कुल 60,73,400 पौधे लगाने का विशाल लक्ष्य आवंटित किया गया है। इस महाअभियान की सफलता के लिए डीएम विभागवार निर्धारित लक्ष्यों का पौधारोपण स्थलों, पौधों की उपलब्धता, गड्ढों की खुदाई, पौधों के उठान, जियो टैगिंग तथा उनके संरक्षण संबंधित व्यवस्थाओं को विस्तृत समीक्षा की। जौनपुर के रोहित यादव ने 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियन में 87.5 मीटर का भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। 14 साल की उम्र में बांस के डंडे से अभ्यास करने वाले जिले के गांव के आधारी डबिया के रोहित यादव ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम के आयोजित 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियन के अंतिम दिन 87.5 मीटर भाला फेंककर हासिल की। रोहित ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पीछा छोड़ा। इस क्रम के साथ 20वें एशियाई खेल 2026 के लिए क्वालिफाई भी कर दिया।
1: जौनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
2: हरदोई में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। योजना के तहत राजकीय एडेड माध्यमिक विद्यालयों और परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब अपने पास से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। उन्हें सीधे पैनल में शामिल अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने डीबीटी योजना पर भी प्रकाश डाला। कहा कि इस योजना के माध्यम से बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबों और अन्य व्यवस्थाओं के लिए धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने हरदोई में स्वर्गीय ठाकुर धर्मराज सिंह सोमवंशी की प्रतिमा अनावरण एवं अपना घर वृद्धावस्था आश्रम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हरदोई में जनसामान्य को संचारी रोगों से बचाने और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हरदोई के 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती पी के वर्मा ने अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम करना है, मरीजों की पहचान करना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती पी के वर्मा ने स्वास्थ्य कर्मियों से इस अभियान को जन सहभागिता के साथ सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा संचारी रोगों की रोकथाम केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन जागरूकता, साफ सफाई और सामूहिक सहभागिता से ही संभव है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखें और स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भवनाथ पांडे, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद सचान, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल शुक्ला, नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर प्रदीप गौतम, डॉक्टर सीबी सिंह और डॉक्टर सुजीत सिंह सहित वरिष्ठ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। हरदोई की आवास विकास कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यकर्ता सम्मेलन

0: आयोजित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी मुख्य अतिथि रही। भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री मरेंद्र पांडेय ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सहभागिता की। जिला महामंत्री ओम वर्मा ने सम्मेलन का संचालन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया गया। राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और जनसेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करने का आह्वान किया। क्षेत्रीय मंत्री मणिन्द्र पांडे ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा समाज के सभी वर्गों से संवाद बढ़ाने का आह्वान किया। पांडे ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही। हरदोई में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चला रहा है। परिवहन विभाग शासन के निर्देशों पर यह प्रदेशव्यापी अभियान संचालित करेगा, जिसमें प्रशासन और प्रवर्तन शाखाएं संयुक्त रूप से व्यापक जांच करेंगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एआरटीओ अरविंद कुमार सिंह ने सभी स्कूली वाहनों के स्वामियों से अपील की है कि जिन वाहनों की फिटनेस परमिट, बीमा या प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है, उनका तत्काल नवीनीकरण करा लिया जाए। ऐसा न करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्र छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्हें अनफिट या दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुके वाहनों का संचालन स्कूल में न होने दें और इस बात का खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही वाहन स्वामियों को सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर नवीनीकृत कराने के निर्देश देने को भी कहा गया, ताकि किसी भी दुर्घटना या असुविधा से बचा जा सके। परिवहन विभाग 8 जुलाई से 15 जुलाई तक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त रूप से विशेष प्रवर्तन अभियान चला रहा है। इस अवधि में बिना फिटनेस, बिना परमिट, बिना बीमा, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ चालान सीज करने और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत पिछले 5 महीनों में 167 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन फोनों की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर चलाए गए इस रिकवरी अभियान में सर्विलांस सेल और CIR यानी कि सीर पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से इन गुमशुदा मोबाइलों का पता लगाया और उन्हें बरामद किया। इस अभियान को सफल बनाने में जनपद की सर्विलांस टीम की तकनीकी दक्षता और कड़ी मेहनत शामिल रही। टीम का नेतृत्व सर्विलांस प्रभारी अब्दुल जब्बार ने किया। इसमें मुख्य रूप से हेड कांस्टेबल आकाश कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर राजकुमार वर्मा, कांस्टेबल ओमवीर सिंह, कांस्टेबल नितिन कुमार गुप्ता और कांस्टेबल यादवेंद्र सिंह शामिल थे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं भी अब देश गान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

बाजार, हर तरफ लोग जा रहे थे। सड़कों पर भीड़ में लम्हा ब लम्हा इजाफा हो रहा था और गोल मार्केट के पास वाले खाली पड़े मैदान में जो मजमा लगा था उसमें भी लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। मजमे के बीच में कदरे खुरदुरी ज़मीन पर एक जनाजा रखा हुआ था जिस पर एक मैली कुचैली चादर पड़ी थी। पास ही दो नौम्र लड़के बिलक बिलक कर रो रहे थे। लोगों की बढ़ती भीड़ में से कई लोग उन लड़कों से इसरार कर रहे थे कि आखिर ये तो बताओ कि तुम कौन हो और ये मैयत किसकी है और तुम यहाँ क्यों आए। दोनों नौम्र लड़के रोते और बयान करते जाते कि ये उनकी माँ की लाश है जो तूफ़ानी रात में अचानक हार्ट अटैक से मर गई है। उनमें से एक लाश पर से मिनकती मक्खियाँ उड़ा रहा था और दूसरा लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हुए उनसे मदद की इल्तिजा कर रहा था। लोग मदारी के तमाशे की सूरत में एक बड़ा सा घेरा बनाए खड़े थे। भीड़ में से एक ने हिम्मत करके शुरुआत की तो लाश पर एक एक करके बहुत से सिक्के गिरने लगे। कुछ लोग 150 के नोट भी मिस्कीन और मजबूर नज़र आने वाले उन लड़कों के हाथ में थमाने लगे कि जल्द अज जल्द इस लाश के कफन दफन या क्रियाक्रम का इंतज़ाम करो। दान पुण्य और सदका खैरात करने वालों को इस लाश के मजहब से कोई सरोकार न था। अगरचे इंसान के मरने के बाद भी मजहबी रसूम के ज़रिए उसकी शिनाख्त बाकी रखी जाती है। मक्खियाँ उड़ाने वाला लड़का अपने आंसू पोंछ चुका था और रोने सूरत बनाए अब वो भी लाश पर और लाश के आसपास पड़े सिक्के उठाने और जेबों में भरने में मसरूफ़ हो चुका था। आखिर मामला माँ का था और माँ को वो जितना भी अच्छा कफन देते कम था। उनके बहते गर्म गर्म आंसुओं के साथ लोगों की हमदर्दी में भी इजाफा होता जा रहा था। अब वो लड़के लोगों में पूरी तरह घुल मिल गए थे और उनसे बराबर अपील कर रहे थे कि जैसे भी हो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें ताकि हम अपनी माँ का जनाजा अच्छी तरह और सारे रसूम के साथ उठा सकें। भीड़ में नए लोगों के आने के साथ साथ उन लोगों के जाने का अमल भी जारी था जो देर से यहाँ खड़े थे। माँ की ममता और उसके जनाजे के बारे में सोचकर अपनी हैसियत के मुताबिक उन लड़कों की मदद कर चुके थे। इस तरह उन लड़कों के पास अंदाजन कई हज़ार रुपये जमा हो गए। कुछ लोग आगे बढ़कर लाश का चेहरा देखने के भी ख्वाहिशमंद थे लेकिन ऐसी कोशिश करने पर वहाँ खड़े बहुत से लोगों की तनकीद का निशाना बन गए कि गैर औरत और वो भी मरी हुई औरत का चेहरा देखना किस तरह जायज़ है। और फिर वो तो माँ थी और वो माँ अब उन दो लड़कों की माँ न रहकर मजमे में शामिल कम से कम उन लोगों के दर्द कर्ब की अलामत ज़रूर बन गई थी जिनकी माएँ अभी दुनिया में नहीं रही थीं। उन लड़कों के पास अब माँ के आखिरी सफ़र के लिए अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी इसीलिए उन्होंने मजमे में शामिल कुछ लोगों से जो ज़रूरत से ज़्यादा हमदर्दी और मोहब्बत का मज़ाहरा कर रहे थे कहा कि हम लोग कफन के लिए कपड़ा, हार, गजरे, मैयत का दूसरा सामान लेकर अभी आते हैं। अगर आप थोड़ी देर यहाँ रुके रहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ अफराद ने खुश दिली और हमदर्दी से जल्द आने की ताकीद करते हुए वहाँ खड़े रहने की हामी भर ली। 15 मिनट, 30 मिनट, पूरा एक घंटा और अब उन लड़कों को गए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि गोल मार्केट में तो मैयत का सारा सामान आसानी से मिल जाता है, फिर इतनी देर लगने की आखिर क्या वजह हो सकती है। हाँ, रुके हुए लोग सवालिया नज़रों से एक दूसरे के चेहरे को पढ़ रहे थे लेकिन उनकी नज़रों के सवाल बेजवाब रह गए थे क्योंकि उन सवालों का जवाब उनमें से किसी के पास नहीं था। एक बेकस और लाचार औरत का जनाजा था जिसको आखिरी सफ़र के लिए बेगैरों की ज़रूरत थी। क्या औरत की ज़िंदगी का हर रूप माँ, बेटी, बहन और बीवी की शक्ल में इशारों कुर्बानी का मंजर होते हुए भी मर्दों के इस्तेहसाल का शिकार नहीं बनता। जब इन चंद लोगों को भी वहाँ खड़े खड़े 2 घंटे से ज़्यादा बीत गए तो उन्होंने भी खामोशी से वहाँ से सड़क जाने का इरादा कर लिया लेकिन उनमें से एक ने मशवरा दिया कि भाई चलो एक नज़र लाश पर तो डाल लो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा वक्त गुजरने के साथ लाश मसख होने लगी हो, क्योंकि लाश के पास से उठता तक

चिलचिलाती गर्मी, चिलचिलाती धूप, गर्मी सही, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये मौसम बनाए हैं, हर मौसम अपने अंदर कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई खसूसियत लिए हुए है। इस नेमत से हम सब फ़ायदे उठाते हैं और फ़वाइद हासिल करते हैं। आइए समात करते हैं मुन्नी बेगम की खूबसूरत आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल।

0: अभी आप मुन्नी बेगम की दिलकश आवाज में समात कर रहे थे ये खूबसूरत गजल। और सामीन, देखें वक्त रुकता नहीं, वक्त चलता रहता है, रफ्तार जिंदगी की मुसलसल है साथियों, रफ्तार जिंदगी की मुसलसल है साथियों, मिलते हैं लोग सिर्फ बिछड़ने के वास्ते। और अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।
1: अभी सामाईन समात फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और दोस्तों, इस वक्त आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप अमित कुमार जायसवाल के स्वर में गाए गीत और भजन का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं अमित कुमार जायसवाल के स्वर में गाया ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप अमित कुमार जायसवाल के स्वर में गाए भजनों का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ पलों में आप समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: Across 10 of the 11 active missions.
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, खेत से फाइबर, कारखाने से फैक्ट्री, फैशन से विदेश तक से प्रेरित भारत टेक्स 2026 का उद्देश्य वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश स्रोत, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित होना है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन

0: कानी तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। ओमान के पास होर्मुज़ जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज़ से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज़ जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज़ जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अब तक 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं और 6 लापता है। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खेलों में इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हो गए हैं और लीजिए सुनिए वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। और इस कार्यक्रम में नुपुर जोशी से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की आप बातचीत सुनेंगे, तो आनंद लीजिए कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज का।
2: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज में। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं फिल्म और टीवी जगत की एक अभिनेत्री नुपुर जोशी जी, जिनको आपने देखा होगा दो हंसों का जोड़ा, जासूस विजय, कुमकुम और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों में, और उनसे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं नेहा जी। नेहा जी नमस्कार।
3: नमस्कार अभय जी, नुपुर जी स्वागत है आपका।
4: बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी इतना प्यारा इंट्रोडक्शन के लिए। नेहा जी आपकी आवाज इतनी सुरीली है, आपसे साक्षात मिलके भी बहुत मजा आया।
3: सुधी श्रोताओं, सच कहूँ ये जो आप कह रही हैं कि यहाँ आके उनको अच्छा लगा, असल में ये प्रभाव और असर तो नुपुर जी का है। कहते ना कि कोई खुशबू आई और हम लोग उसके जादू में कैद हो रहे हैं।
4: अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे शब्द।
2: सबसे पहले नुपुर जी, ये हम जानना चाहते हैं कि आपने दौलत राम कॉलेज दिल्ली से क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, फिर उसके बाद अभिनय के क्षेत्र में आ गई, तो कैसे ये हुआ कि ये मनोविज्ञान का क्षेत्र फिर अभिनय?
4: तो जैसे कि अभी प्रयागराज में हूँ तो मेरे जीवन में मेरे ख्याल बचपन से ही संगम रहा है। हाँ। संगम चाहे हाँ। वो

0: पढ़ाई का हो, चाहे करियर चॉइस का हो, चाहे मेरी लोकेशन का हो कि कहाँ रह रही हूँ।
1: जी
0: जहाँ तक पढ़ाई और साइकोलॉजी की बात है, तो मैंने मास्टर्स किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में दौलत राम से। उसके बाद जो ये एक्टिंग का कीड़ा था, मुझे लगता है बहुत बचपन में ही काट गया था।
1: अच्छा, कोई फिल्म देख रही थी तब या किसी को देखा, घर में कोई था?
0: घर में माहौल था, नानी मेरी आकाशवाणी में अनाउंसर होती थी, उनका नाम हेमलता जोशी है,
1: जी
0: काफ़ी पुरानी बात बता रही हूँ।

0: कहानी मेरी आकाशवाणी में अनाउंसर होती थी, उनका नाम हेमलता जोशी है,
1: जी
0: काफ़ी पुरानी बात बता रही हूँ। और मेरी मौसियाँ हैं जो कि थिएटर जगत से जुड़ी हुई हैं, लखनऊ में दर्पण करके एक थिएटर ग्रुप है
1: जी
0: जिसमें मेरे मामा, मौसियाँ और सब लोग बहुत एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। और मेरी मौसी भातकंडे से म्यूज़िक टीचर हैं, मीता पंत हैं उनका नाम।
1: जी
0: तो ये माहौल घर में ही था, पिताजी की तरफ से भी मतलब बुआएं हैं, तो एक जो कहा जाता है ना कि एक माहौल पहले ही तैयार था, तो क्रिएटिव फील्ड की तरफ रुझान था। पढ़ाई ख़त्म करते ही एनएसडी में ट्राई किया एडमिशन हो जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा तो आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके जो करिकुलम के हिसाब से। तो रहते रहते ही कॉलेज में मुझे ऑफर आया, पहला मेरे पहले शो का ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो गया, वहाँ से शुरुआत हुई है करियर की।
1: फिर अपना कोर्स फिनिश किया था कि
0: जी
1: नहीं?
0: जी पूरी
1: पूरा
0: पढ़ाई
1: किया?
0: की, मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी जब मैंने अपना
1: हाँ,
0: पहला शो खुशियां DD1 के
1: खुशियाँ
0: साथ किया
1: जी।
0: था।
1: दूरदर्शन के
0: आपका
1: लिए हम
0: जो
1: जी
0: ताल्लुक है वो हमारे
1: काफी
0: प्रसार
1: पुराना।
0: भारती से
1: तो
0: जन्मों जन्मों का साथ है लग यही रहा है
1: आपकी नानी भी आकाशवाणी से जुड़ी हुई थी, आज आपको
0: बिल्कुल
1: आकाशवाणी आने का अवसर मिला है।
0: जी
1: आपके परिवार में सभी कला क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे,
0: जी जी
1: तो इसलिए आपको थोड़ी आसानी हुई। तो पहला जो ऑफर आया वो आपने अप्रोच किया था या किसी ने आपको बताया, कैसे वो ऑडिशन तक आप पहुंची?
0: काफ़ी मतलब मज़ेदार किस्सा है। एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे कॉलेज में मैं कह रही हूँ ना, माहौल कहीं ना कहीं वो था, वो इट्स इट वॉज इन माई ब्लड एज दे से। पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं, इस चक्कर में मैं साइकोलॉजी की पढ़ाई की तरफ झुकी, लेकिन ये अंदर का जो कीड़ा है कुल बुलाता रहता था। तो स्ट्रीट प्ले का हम तैयारी कर रहे थे, कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं जैसे आपको
1: जी
0: पता ही होगा, आई वॉज कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ माई कॉलेज, तो तैयारी चल रही थी। तो हमारे को तैयार करने के बाहर से प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है। उन्होंने सुझाया कि एक टीम आई है मुंबई से, दे आर मेकिंग सम शो और उनके ऑडिशन से आप ज़रूर जाइए, उन्होंने देखा होगा या जो भी, तो उनके मुताबिक कैरेक्टर में जा रही होंगी। तो वहाँ गई, माताजी मेरे साथ वहाँ गई उस समय ऑडिशन के लिए, दिल्ली में थोड़ा साथ रहे तो अच्छा रहता है। फिर आप अगर उस फील्ड से नहीं हैं तो थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, बुरा कुछ नहीं है लेकिन अपनी तरफ से तैयारी होनी चाहिए। तो वहाँ पहुँची, बहुत नाइव आई वॉज, लाइक अ किड, जो स्कूल कॉलेज जो पहन के गई थी वही पहने पहने हम चले गए, पोनी बना के और जीन्स टॉप पहन के, बट दे लाइक इट प्रॉबली, तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं, 1 महीना 2 महीना बीत गया, अचानक एक दिन कॉल आया, जैसे कहते हैं ना फिल्मों में मैंने सुना था ही ऐसा होता है लेकिन मेरे साथ वाकई ऐसा हुआ है। अचानक कॉल आया तो कह रहे हैं कि आप नूपुर बोल रही हैं, हम ऐसे ऐसे मुंबई से बोल रहे हैं, आपको मुंबई आना है,
1: जी
0: आपका ये किरदार तय हो गया है और शूट शुरू है। हम मुंबई कभी गए नहीं थे, पहली बार जाना था, तो बस मम्मी के साथ निकल लिए, फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। तो दैट वॉज माई फर्स्ट
1: जो खुशियाँ।
0: जी
1: मैंने आपको ये जवानी है दीवानी फिल्म देखी, मैंने क्या, आप सब लोगों ने देखी होगी लगभग। बड़ा लाइव रोल रहा था आपका उसमें, बिल्कुल आप दीपिका के बगल में बैठती हैं और वो जो गेम हो रहा होता है।
0: नेवर हैव आई एवर।
1: तो वो शूट कैसा था, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि उस समय आपके साथ रणवीर कपूर थे, आयान मुखर्जी थे, दीपिका, इतनी बड़ी
0: जी
1: कलाकार, माय
0: जी
1: गॉड।
0: इट वॉज अ लवली शूट। पूरा हमारा जो क्रू था, यंग सारे जो हमारे ADs थे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो थे, हमारे डायरेक्टर खुद आयान मुखर्जी, दीपिका, रणबीर, मैं, एवलिन, हमारे साथ अनीसा थी, तो काफ़ी सारे हम लोग, सब यंग क्राउड था, तो इट वॉज अ वेरी पेपी कहते हैं ना, काफ़ी जोश वाला माहौल था।
1: एक्चुअली वो फिल्म देख के भी ऐसा ही लगता
0: जी
1: है।
0: तो वही जो आपने ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन काफ़ी कुछ हमने मिलती
1: सेम।
0: जुलती मस्तियाँ की हैं,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: काफ़ी अच्छी जर्नी रही। और जहाँ तक उनके साथ एक कंफर्ट लेवल की बात थी, मैं अयान के साथ में एक एड शूट कर चुकी थी पहले, कैड है जिसमें
1: फाइन।
0: रणबीर कपूर हैं, मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं से वो वहाँ से थ्रेड शायद शुरू हुआ था। अयान मुखर्जी और हम लोग चंडीगढ़ शूट करने के लिए गए थे, ये वहाँ से लौटते समय एयरपोर्ट में जब हम आपस में सब बात के सब साथ ही में गए थे, तो मैंने कहा था भाई हमें आपके साथ एक बार फिल्म असिस्ट करनी है, लेकिन आपको असिस्ट क्यों करना है, बी पार्ट ऑफ माई फिल्म, देखते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे लगा नकार दिया मुझे, ऐसे ही काम भी नहीं मिला और कुछ नहीं। एक दिन अचानक फिर ऐसे ही एक ऑडिशन के लिए कॉल आया धर्मा में, धर्मा ऑफिस में हमको बुलाया गया था, तो वहाँ ऑडिशन हुआ, फिर वहाँ से फिर वो कहानी शुरू हुई। तो
1: गॉड।
0: कम्फर्ट वॉज ऑलवेज देयर सिंस वेरी बिगिनिंग बिकॉज आई हैड वर्क विद देम इन पास्ट।
1: मतलब खुशियां से लेकर

0: कि ये जवानी है दीवानी और अभी, मतलब ये लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखना, और वो भी कोई गॉडफादर नहीं था, और आप कह रहे हैं कि नहीं जब आप जाते हैं तो कुछ तैयारी करके जाते हैं, तो साथ में हमेशा मम्मी ट्रैवल करती रही?
1: जब तक कॉलेज में थी तब तक, तो मैं 2007 में मुंबई शिफ्ट हो गई थी,
0: अच्छा।
1: और 2003 से मैंने करीबन काम करना शुरू कर दिया था। तो साथ में जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तो वहाँ पे मैं एक पीजी में रहती थी। काफ़ी अच्छे लोग थे, बहुत ही प्यारे लोग, और ध्यान रखते थे कई कई चीज़ें, जैसे नया बच्चा, आई कंसिडर्ड माई सेल्फ एज यंग एंड वेरी पैम्पर्ड आई एम। तो उस समय वहाँ पे भी वैसे ही माहौल मिला, तो अक्सर खाने के लिए पूछना, अचानक मुंबई का डब्बा सिस्टम होता है वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो शूट में जाते थे, या पहले तो हम वहाँ ऑडिशंस देते थे, रोज़ ऑडिशन के लिए निकलना होता है, तैयार व्यार हो तो आपको खबर आती है। कुछ कुछ लोग होते हैं उस सर्कल में जो आपको ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि आज यहाँ इतने बजे, पहले मैं ऐसे ही होता था, इतने बजे एक ऑडिशन है, आपके लायक ये है, आपकी एज इस हिसाब से जाती है, आप जाएँ और ऑडिशन दें, आप
0: जी
1: सूट होंगे तो वो आपको कॉल करेंगे। तो हम लोग वहाँ जाते थे, तो ये एक तैयारी रोज़ की होती थी। तो आप रोज़ तैयार हुए, घर से निकलें, किरदार के हिसाब से तैयार होते हैं, वहाँ लाइन लगती है बहुत लंबी,
0: जी
1: क्योंकि ये एक इतना सुंदर सपना लेकर के लोग बाहर से, देश से, हर क्षेत्र से लोग आए होते हैं, क्योंकि जो पर्दे पे दिखता है बहुत चमकीला होता है, तो आकर्षण बहुत तेज़ है। पर्दे के पीछे की जो मेहनत है वो कई बार उतनी निकल के दिखती नहीं है, बट उसके पार अगर आप चले गए तो उसके बाद तो फिर अमृत प्याला है।
0: माय
1: वहाँ
0: गॉड।
1: पे भी फिर अगर आप ठहर पाए तो फिर आप स्टार बनते हैं,
0: मुझे
1: स्टार
0: लगता है ये
1: बन
0: फिल्मी आध्यात्म
1: है ना।
0: है। फिल्मी
1: जाहिर सी बात है, क्योंकि पर्दे के
0: दुनिया।
1: पीछे कहानी हम लोग नहीं जानते, तो
0: जी
1: नुपुर जी से ये बातचीत का सिलसिला जो
0: जी
1: है जारी रहेगा। लेकिन नुपुर जी, उससे पहले हम श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई पसंद हो
0: हाँ,
1: तो बताइए।
0: देखिए आज मैं अभी अचानक आप लोगों से मिली हूँ और एक गाना याद आ रहा है, तो
1: जी
0: ये आज मिल गया बहाना तेरी दीद का।
1: तो ठीक है, ये गाना हम सभी सुनते
0: मुझे
1: हैं।

0: जिंदगी में कैसे वो सारी चीजें हैपन हुई और इतने लोगों से मुलाकातें होती रही आपकी, तो फिर कैसे आप अचानक से ठहरी भी, इतना कुछ वहां पे सीखा, और अभी जब हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, हम लोग प्रयागराज में बात कर रहे हैं,
1: जी
0: तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने इतने बड़े बैनर प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, मतलब वो फिल्में हम लोग सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं, और अचानक से आप बिल्कुल ठहरने वाली जो शक्ति है वो कहाँ से आ गई?
1: नेहा जी, जैसे शुरुआत में मैंने कहा था, करियर या जीवन या लोकेशन या संगम रहा है, तो अभी भी वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर इज व्हाट आई बिलीव। तो छूटा तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन कई बार नई चीज़ों

0: को भी मौका देना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए और समझना चाहिए कि मे बी दिस इज़ अ फेज, समथिंग न्यू इज़ मे बी कमिंग. तो मैं साथ साथ ओडिसी नृत्य सीखती हूँ और आयुष से प्रोटोकॉल योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स मैंने किया हुआ है, तो मैं योग में भी काफ़ी रुचि रखती हूँ. ये भी एक पैरेलली मेरा चलता है. एक फौजी वाइफ हूँ तो अपने पति के साथ थोड़ा समय बिताने का वो भी एक.
1: वाह
2: नुपुर जी, आपको
1: हाँ
2: मैं
1: जी,
2: थोड़ा फिर से पीछे ले जाना चाह रहा
1: हाँ
2: हूँ
1: हाँ
2: कि जब आपने कुछ NHT के साथ थिएटर्स किए थे,
1: जी जी जी
2: उसके बाद आपको अचानक से मौका मिला धारावाहिक में ऑडिशन देने
1: जी
2: का,
1: जी
2: तो फिर कैमरा फेस करने का जो पहला अनुभव था वो कैसा रहा?
1: कुछ आइडिया नहीं था. पहली बात तो जब हमने कैमरा देखा तो वो काफ़ी बड़ा कैमरा होता है, इट्स बिगर देन द यूजुअल कैमरा. एंड फॉर अ फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट पहली बार मैं कैमरा देख रही थी. और मैं थिएटर जैसे करती थी शुरुआत से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हमारे जो टीचर्स आते थे हमारे साथ थिएटर प्रिपेयर कराते थे फॉर आर एनुअल इवेंट्स. तो थिएटर स्टेज का मुझे था आइडिया, कैमरे का बिल्कुल आइडिया नहीं था. थिएटर में हम थोड़ा लाउड एक्टिंग करते हैं ताकि सबसे पीछे रो में जो बैठा है उसको भी हमारे एक्सप्रेशंस अगर नहीं दिख रहे हैं तो कम से कम एक्शंस दिखाई दें. जो कैमरा होता है वो आपके थोड़े से भी मूवमेंट को बहुत अच्छा कैप्चर करता है. तो ये ज्ञान मुझे ऑन सेट मिला है. ऑडिशन में मैं जैसे थिएटर में एक्टिंग करते हैं वैसे ही एक्टिंग की है और मुझे नहीं पता, उसके बावजूद भी मुझे चुना गया था. तो कुछ उन्होंने

0: करेगा, काफ़ी अच्छा रहा। बट हाँ, अदरवाइज रीटेक्स होते हैं कई बार, आपके एक्सप्रेशंस इमोशंस नहीं आते हैं।
1: कभी डांट पड़ी
0: सेट पर, डांट पड़ी है
1: डायरेक्टर से कि नूपुर ऐसा क्यों कर दिया, बार बार समझा रहा हूँ, ऐसा कभी कुछ हुआ, कोई वाकया अगर बताएं?
0: हाँ, एक वाकया याद आ रहा है, डांट तो नहीं है, खैर प्यार है। राखी मेरा एक जो शो था जी टीवी पे आता था, तो राखी रिश्तों के टूट डोर पूरा नाम था फिल्म फार्म प्रोडक्शंस का, और अयूब खान मेरे भाई बने थे उसमें, मैं बहन थी, तो राखी इस तरीके से। तो मेरी शादी का एक सीक्वेंस था, तो शादी सीक्वेंस में ना बहुत कुछ एक सीक्रेट होता है जो बाहर आ जाता है, देन सडनली ऐसा होता है कि उसकी वजह से शादी कैंसिल हो जाती है, मंडप में शादी कैंसिल हो रही है। तो धोखा है कैरेक्टर को और उसको पता चलता है, बहुत प्रिय हैं उनके भाई उनके लिए, तो कैसे उनको धोखे में रख के कुछ गलत काम करवा के शादी कराई जा रही थी। तो वो जो एंगर है, एंड वो जिससे शादी हो रही थी उसने धोखा दिया था, तो दो तरफ प्यार और बीच में मैं, तो ये राजनंदिनी का कैरेक्टर नाम जो था, तो उसमें बहुत एनर्जी के साथ में वो सीन करना था कि मतलब यहाँ से धोखा मिला है और इनकी तरफ मिला है और तुमने मुझे भी धोखा दिया, तो लॉट ऑफ एनर्जी वॉज रिक्वायर्ड, और मैं थोड़ा शरीर फ्रजाइल है, तो उनको बिल्कुल पावरफुल सीन चाहिए था कि माला तोड़ रहे हैं और बिल्कुल हवन कुंड में जा रहे हैं। तो राइटर हैज रिटन सो ब्यूटिफुली, और वो चाह रहे थे स्क्रीन पे उससे भी बेहतर आए, यही चाह होती है हर लेवल के, अपना अपना बेस्ट दे। तो मुझे याद है रोजे चल रहे थे, अयूब खान राजा भैया, मैं उनको आज भी राजा भैया के नाम से ही एड्रेस करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा यस माय डार्लिंग यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो मुझे इलेक्ट्रॉल पिला रहे थे बीच बीच में मैं हर डायलॉग के बाद मैं इलेक्ट्रॉल पी के देन आई वाज गिविंग माय डायलॉग्स। तो एवरी वन टुगेदर इन द यूनिट वॉज वर्किंग की सीन बढ़िया निकले, तो डांट तो नहीं थी।
2: तो बस यही मैं जानना चाह रहा था, जब कोई किरदार आपको मिलता है तो कैसे तैयारी करते हैं, क्योंकि तैयारी तो आपको पहले से प्रारंभ कर देनी पड़ती है कि आप जब कैमरे के सामने जाएं, और एक प्रॉब्लम कैमरे के सामने और होती है कि जब आप थिएटर करते हैं सामने दर्शक हैं, दर्शक का रिएक्शन आपको दिख रहा है,
0: एक्शन हो जाता है,
2: आप कैमरे में आपको रिएक्शन नहीं दिख रहा है, आपको रिएक्शन नहीं दिख रहा है, तो आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं आपको नहीं समझ में आता है, वो डायरेक्टर ही आपको बताते हैं, और कभी कभी डायरेक्टर संकोच करते हैं या बताते हैं बहुत बाद में, बहुत लाउडली बताते हैं तो कैसे वो तैयारी हो पाती थी?
0: तो जैसे माध्यम अलग अलग है, सबका तरीका अलग होता है। हमें जैसे हम शो की अगर बात करें, टेलीविजन शोज जो बनते हैं उसमें एक किरदार निर्धारित होता है, बेस एक तैयार करते हैं, उसके बाद से कहानी फिर आगे कैसे कैसे फोल्ड ले रही है, क्या टीआरपी जा रही है, उस हिसाब से थोड़ा फ्लक्चुएट और
2: कहानी परिवर्तन होता रहता है,
0: बिल्कुल होता रहता है। तो उसमें आपको जो किरदार एक कंसीव किया होता है राइटर ने, वो आपको बताते हैं एक शुरुआती तरीके से, उसके बाद आपको वो किरदार जीना पड़ता है, क्योंकि इट्स अ डेली सोप, सो इट्स अ डेली सोप, तो देन यू आर लिविंग दैट कैरेक्टर एवरी डे, तो वो किरदार कहीं ना कहीं आपके अंदर बस जाता है।
2: जब आप घर पे आती थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि घर पे भी आप वही किरदार जी रही हैं जो नॉर्मल नूपुर जोशी है, उसके अलावा आप नंदिनी बन जा रही हैं?
0: तो कई लोगों के साथ में होता है ये दिक्कत, आपने भाई बहुत सही बात पकड़ी है, कई लोग एक्चुअली, यहाँ मेरी थिएटर की ट्रेनिंग काम आती है, तो स्विच ऑफ स्विच ऑन जो होता है वो आपको सिखाना पड़ता है, आप कैसे एकदम यू नो स्विच ऑन, कट हुआ स्विच ऑफ, टाइम लगता है होने में, जब आप स्पेशली इमोशनल सीन्स जब करते हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है कि आप वाकई अगर उस सिचुएशन में हैं। हमारे एक थिएटर के बहुत दिग्गज डायरेक्टर हैं, उनका नाम है सत्यव्रत राउत, उनके साथ मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की है, इज़ अ वेरी सीनियर NSD डायरेक्टर, तो वो कहते थे कि अगर आपने ज़िंदगी के हर पहलू को जिया है तभी आप एक अच्छे एक्टर बनोगे, आप का दिल अगर टूटा है तभी आपको रोना भी आएगा, अगर आपका दिल लगा ही नहीं है, प्यार हुआ ही नहीं है और दिल टूटा नहीं, तो आप प्यार की गहराई भी नहीं समझ पाओगे, दिल टूटने का जो दर्द होता है वो आपको पता ही नहीं है। जैसे अब माँ बनना, जो वो फीलिंग होती है कि आप पेट में बच्चे का लात मारना, वो मूव कर रहा है यहाँ से वहाँ जा रहा है, ये एक्सपीरियंसेस हैं। तो समटाइम्स वर्कशॉप्स होती हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन जो वाकई वो जीना होता है, अब इसके लिए ये नहीं कि आपको खून करना है तो आप किसी को खून ही करके वो एक्सपीरियंस लो, तो वो तो थोड़ा मतलब वो एक्सट्रीम ही हो जाएगा, बट देन एक दायरे में रहते हुए एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ के आप उतारते हैं पर्दे पे।
2: हाँ। नेहा जी, अभी तो बातचीत का सिलसिला काफी अच्छा चल रहा है,
1: लेकिन
2: काफी
1: एक गाना हम लोग सुनवा दें, आपकी पसंद का ही कोई?
0: बारिश हो रही है, उससे रिलेटेड एक गाना है, पल भर में ये क्या हो गया।
1: हाँ।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं नुपुर जोशी जी को। नुपुर जी से बातचीत का ये जो इंटरेस्टिंग सा सिलसिला है वो हम जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी बुधवार को, और समय याद रखिएगा 10:05 पर। तो हमें दीजिए इजाजत, हम कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। इस कार्यक्रम का आप सुन रहे थे पहला भाग। इस भाग में आपने सुना नुपुर जोशी से नेहा गुप्ता और अभयकांत तिवारी की बातचीत, और इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको अगली बार सुनवाएंगे। इसी के साथ वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए लोकगीत कार्यक्रम। लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं राजा राम यादव और साथी, आशा राम पटेल, छेदीलाल और संगीता राय। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं राजा राम यादव और साथियों के स्वर में गाया ये देवी गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम और अब लीजिए सुनिए आशाराम पटेल और साथियों के स्वर में गाया ये निर्गुण गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। और अब लीजिए सुनिए छेदीलाल और साथियों के स्वर में गाया है कि लचारी गीत।

इसी कजरी गीत के साथ लोकगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, शायरी जब जहन की गहराइयों से निकलकर आम इंसान के दिलों का रास्ता तय करती है तो उसे आवाज मिलती है जावेद अख्तर के रूप में, जज्बात को बेहद सादगी और मुकम्मल खूबसूरती के साथ पन्नों पर उकेरने वाले जादूगर अल्फाज जावेद अख्तर साहब के चुनिंदा नगमों के नाम हमारी आज की ये सुरीली महफिल है। कहते हैं कि जब जिंदगी में ठहराव आने लगे तो उनकी कलम हौसला देती है। आइए इस महफिल का आगाज करते हैं फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के इस बेहद हसीन और सदाबहार नगमे से, जिसे आर डी बर्मन साहब ने धुनों से सजाया है।

श्रोताओं, जावेद अख्तर भारत के एक महान गीतकार, पटकथा लेखक और कवि हैं। शोले और दीवार जैसी सुपरहिट फिल्मों की कहानी लिखने वाले जावेद अख्तर ने कई बेहतरीन गानों की रचना भी की है।

श्रोताओं, साल 1982 के बाद जावेद अख्तर साहब ने स्वतंत्र रूप से गीत लिखना शुरू किया। अपनी उत्कृष्ट शायरी और शब्दों के जादू से उन्होंने बॉर्डर, लगान और जोधा अकबर जैसी फिल्मों में कई शानदार गीत लिखे। उन्हें साज, बॉर्डर, गॉडमदर, रिफ्यूजी और लगान के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 1999 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है जावेद अख्तर साहब के नगमों से सजी महफिल आपके दिल को जरूर छू गई होगी।

आप सुन रहे हैं देव नेगी को फिल्म केदारनाथ में। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का और संगीत अमित त्रिवेदी का है।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में सुनिए इरशाद कौमिल की रचना। फिल्म का नाम है डंकी और गायक कलाकार अरिजीत सिंह।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य की रचना। फिल्म का नाम है छिछोरे और गायक कलाकार अरिजीत सिंह।

0: होंट घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया।
1: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 12 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका ने लगातार 3री रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमरीका की सेना के

खेल दर्पण कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:15 पर और रात में 10:30 पर सुनिएगा विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम हेलो फरमाइश होगा दिन में 12:30 पर।

दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहने आकांक्षा भारती और साथियों के गाय लोकगीत सुनेंगी और रंजना पटेल से की गई बातचीत सुनेंगी महिलाओं के सुनहरे सपने। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। शाम 5 धरती के गीत कार्यक्रम में रामबाबू यादव और साथियों के गाय लोकगीतों का आनंद लीजिएगा।

पंचायत घर कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। आज ग्रामीण भाई विष्णु राजा के गाय लोकगीत सुनेंगे और विजय शंकर त्रिपाठी से सुनेंगे रामायण पाठ। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल प्रताप गिरी की वार्ता प्रसारित की जाएगी, नव्य न्याय भाषाया वैशिष्ट्यम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगी अमृता मालवीय।

सेहत की बात इस कार्यक्रम में रात 8 बजे डॉक्टर राकेश राज से सुंदरम तिवारी की बातचीत सुनिएगा। बदलते मौसम में त्वचा रोग का होम्योपैथी द्वारा उपचार। हमारा सबरस कार्यक्रम होगा रात में 8:30 पर और गजलों पर आधारित प्रोग्राम कहकशां आप सुनेंगे रात में 9:30 पर।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन। प्रस्तुत है राग पीलू में ठुमरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित पंकज कुमार श्रीवास्तव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप विदुषी मुनीर खातून बेगम का उपशास्त्रीय गायन सुन रहे थे। आप सुन रहे थे राग पीलू में ठुमरी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित पंकज कुमार श्रीवास्तव। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम हेलो फरमाइश। पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: परम आदरणीय मधु दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति इस राधा सिटी मथुरा से आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: दीदी, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है लगान
0: जी?
1: और गीत के बोल हैं, काले मेघा पानी तो बरसा। बस यही निवेदन करना चाहता हूँ इस देवता से कि पानी बरसते जाए।
0: जी जी भाई, जो तपिश है वो कुछ कम हो जाए और पानी बरसता जाए, ये बहुत ही अच्छी आपने कामना की है। और ऊपर
1: जी
0: वाले तक पहुँचे, झमाझम पानी बरसे, ये हमारी भी कामना है, हम सब की कामना है। तो चलिए, लगान फिल्म का ये गीत अब आपको सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।
1: अभिमन्यु ग्राम देवपुर प्रयागराज से बोल रहा हूँ
0: जी। अभिमन्यु जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है नदिया का पार
0: जी।
1: गाने का बोल है, सच कहे तो हमरे आवन से,
0: सांची कहे तोरे आवन से, हमरे अंगना में आई बहार भौजी।
1: बहार भौजी।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: मैं महेंद्र यादव मुन्ना बरौठंडिया प्रयागराज से।
0: जी महेंद्र जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: विवाह फिल्म का गाना है मैम
0: जी,
1: दो अनजाने अजनबी।
0: जी जी, तो आपकी पसंद के इस गाने को प्रसारित करने से पहले महेंद्र जी, आपने किसी के नाम तो नहीं लेने?
1: जी हमारी मिसेज है, हमारी पत्नी धर्म पत्नी रेखा यादव जी
0: जी,
1: और आयुष और अनन्या हमारे दो बच्चे।
0: तो आपको सुनवाते हैं विवाह फिल्म का ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम नितेश आर्या है
0: जी। नितेश जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है अनजाना और गाने बोले रंजन, गीत गाए सावन।
0: अच्छा, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना है
1: जी।
0: तो नितेश जी की पसंद का ये गाना आइए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: सोनू जायसवाल साहिब प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: जी सोनू जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हीरो हिंदुस्तानी
0: हीरो हिंदुस्तानी का। तो गाने के बोल याद हैं आपको?
1: गाने के बोल नहीं, कोई सा भी
0: अच्छा,
1: सुना दीजिए।
0: कोई भी गाना हीरो हिंदुस्तानी फिल्म से सुनना चाहते हैं सोनू जी प्रतापगढ़ से, तो आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

अभी आप हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुन रहे थे। पेश कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आया। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई स्पीडबोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशर, चाहबार,

0: की समाअत के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रतिभा नारायण ने 8 मुलजमान की अदालती तहवील में 14 दिन की तौसी कर दी है। मुलजिम अब 27 जुलाई तक को अदालत में पेश होंगे। इस दौरान एसआईटी ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए धर्मसेना के सदर संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की मुतनाजा शाही जामा मस्जिद से मुतालिक तनाजात को खुसूसी लोक अदालत के जरिए हल करने की हिदायत दी है। यह खुसूसी अदालत 21 से 23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बुलाई जाएगी। कार्रवाई से पहले इन मुकदमात मुलविस फरकीन को लोक अदालत से पहले के मसालती बातचीत में शिरकत के लिए नोटिस भेजेगी। मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC जो एक मुल्क एक इंतखाब पर तश्कील दी गई है कल लखनऊ में सियासी शख्सियात से मुलाकात की ताकि एक कौम एक इंतखाब के मसले पर उनके ख्यालात सुने। लोकसभा रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा कि कल कमेटी ने रियासत के सीनियर ओहदेदारों, चीफ इलेक्टोरल अफसर, बैंकर्स और वकला के साथ बातचीत की। रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर और आसपास के कई अजला में कल दिन के वक्त गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि वक्फे से बारिश रात भर जारी रही। दरअसल महकमा मौसमियात ने रियासत में 19 जुलाई तक बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: आकाशवाणी के हम प्रयागराज के इंद्र से बोल रहे हैं। अब बहने सुनेंगी कार्यक्रम पनघट।

0: चंपा, अरे ओ चंपा।
1: हाँ
0: अरे बहनी, हम कहे राम राम।
1: राम राम गुंजा बहनी, और पनघट कार्यक्रम सुने बैठी सब श्रोता बहनी हरन के
0: राम राम, राम। चंपा बहनी।
1: हाँ गुंजा बहनी,
0: बतावा तुम्हार का हाल बाटे?
1: बिल्कुल ठीक बहाल। देखा तुमसे मिले रहा तुम पनघटे पे, हम कहे बहुत दिन होएगा तुमसे हम मिले ना रहे, हम कहे जाते आज अपने गुंजा बहनी से हम मिलब और उनसे हम बातचीत करब, अपने बहनियों से बातचीत करब पनघटे पहुँच के।
0: देखा अब तो कुल मौसम इतना नीक बाटे और अपने पनघटे के आवे की इतनी उत्सुकता रहा थी बहनी कि अपने जो सखिये ने उनसे बोली और उनसे अपने मन की बात साझा करी, इतनी खुशी मिला थी। समझ लो पनघटे पे जब आए के तो तू तो हमारा सखी या,
1: बिल्कुल,
0: और सखी से मिल के तो अति आनंद होते।
1: बिल्कुल सही कहा थी गुंजा बहनी। और गुंजा बहनी देखा, कहा कि
0: जाना तो चप्पा बहनी हम आवत रहे तो हमारा हाँ। जो रे गदेला बटे वो कहत रहा कि हम जो है बहुत कठिन विषय है हम ना पढ़ब। तो हम कहे काहे काहे गदेला तू ना पढ़वा, तो कहे कि हमरे समझ में नहीं आवत।
1: अच्छा।
0: तो हम देखा एक बार पढ़वा, दूसरी बार
1: हाँ,
0: पढ़वा,
1: तीन बार पढ़ तो हाँ, काहे ना आई,
0: काहे ना आई। जब तू उमन अपन माथा पच्ची करवा संघर्ष करवा तो वो चीज वो विषय काहे ना तू,
1: बिल्कुल सही कहा थी गुंजा
0: बहनी। तो काहे का मतलब है कि जी ना
1: चुरावे, गदेल हो चाहे जे हो कोनो काम हो, अब हमें सब हमसे नाई हुई ये सोची था ना, ये काम तू कैला लेकिन ओका जब हम करब तो काहे नहीं हमसे हुई।
0: बिल्कुल देखा बहनी, जीवन जब तक है तो हमका हर चीज के सामना करे के पड़ी।
1: बिल्कुल,
0: और जीवन जिए की एक कला होत है जो हम सब के जीवन के जो अनुभव है ओका तो सीख मिलता है। साथ ही साथ हम हर चुनौती के अगर डटत भय अपने जीवन के कार्य करी थी तो समझ ला कि एक नई सीख मिला थी। और जो हमारा लड़का के देला है हमारा
1: सीखत है, हाँ सीखत है देख के। और देखा गुंजा बहनी सही कहा थी, तो चला कस न ई पे बात कही कही लिन जाए।
0: हाँ।
1: संघर्ष ही सफलता की कुंजी है।
0: हाँ।
1: तो देखा गुंजा बहनी ई खाली एक ठू वाक्य ही नहीं है, बल्कि जीवन के अटल सत्य भी है कि जीवन में कौनो भी बड़ी उपलब्धि बिना मेहनत के धैर्य के और संघर्ष के प्राप्त नहीं होती।
0: बिल्कुल सही।
1: संघर्ष हमें कठिन परिस्थिति के सामना कर सिखावत है, हमरे सोच के मजबूत बनावत है और हमें सफलता के योग्य भी बनावत है।
0: बिल्कुल बहनी, देखा काहे से कहा जाते है ना कि अगर हमका कौनो भी योग्यता ले के है बहनी,
1: हाँ,
0: तो हमका वो जो चुनौती

0: मिला थी उसे डरे के भागे कि नहीं है, काहे कि
1: बिल्कुल
0: अगर कोनो भी कार्य करे थे तो में तो भाई संघर्ष आई ना है। अगर हम सोच के डर जावे बहनी तो आवे वाले समय में जौन हम अपन उन्नति कर सकते है, बढ़त
1: हाँ
0: कर सकते है, ऊ ना कर पाओ बहनी। डर
1: बिल्कुल
0: के
1: सही कहा
0: डर
1: तुमने।
0: के आगे हम सभी दब जाब, तो बहनी ऐसे करे के नहीं है। जीवन जब जिया थे आदमी तो हर तरह की चुनौती आती मुला, उसे हम सबके बच बचाए अपने जीवन के एक खुशहाल जीवन की तरह जिए की चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा तुम्हें। नहीं देखा जब कोनो भी लक्ष्य के, जैसे
0: हाँ
1: कहूँ ना
0: हाँ
1: कि कोनो काम करित है, कोनो लक्ष्य की ओर हम सब आगे बढ़ित है,
0: हाँ
1: तो रास्ता में अनेक बाधा आवत है
0: हाँ
1: और कई बार का होते कि असफलता मिलत है,
0: बिल्कुल बहनी।
1: तो हम सबके उसे डरे के नहीं चाहिए। मुना ई जोन है सफलता असफलता मिलत है, एका हम बार बार प्रयास करी, जब बार बार प्रयास कर तो सफल जरूर हो।
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा।
1: हमें नई सीख देत है, जोन
0: हाँ
1: व्यक्ति हार माने के बजाय हर चुनौती के साहस पूर्वक
0: हाँ
1: सामना करत है, वह व्यक्ति अंततः सफलता प्राप्त करत
0: बिल्कुल
1: है,
0: बहनी।
1: यानी कि
0: देखा
1: ओका अंतिम समय में वो सफलता मिल जाता है।
0: बिल्कुल देखा बहनी इतना बढ़िया तू बताओ, जैसे कि अब दूर ना जा हमारे जो किसान भैया बहनी है रहना है,
1: बिल्कुल।
0: हाँ उनका देखा वो कितना तत्पर अपन
1: अब
0: निरंतर,
1: ऐसा देखा कड़कती धूप
0: हाँ
1: है, कुल
0: कौनो
1: होता है
0: मौसम में नहीं
1: देखा।
0: देखा कि हम सब तो लुकाए देते घरे में कि बहनी बहुत
1: हाँ
0: धूपे लागत है, लेकिन
1: हाँ
0: हमारे जो किसान भैया बहनी है रहना है, हाँ वो कितना निरंतर खेती में हर तरह के निराई है गुड़ाई है अनाज उत्पादन है,
1: बिल्कुल।
0: कितना
1: अब देखा
0: कटाई
1: ऐसे में
0: है,
1: धान के लगाए
0: हाँ
1: होते तो किसान भैया अरे अपन धूप
0: उनके
1: घाम ना देखा था, बस
0: कितना
1: अपन
0: परिश्रम रहा थे
1: अपन समय से उठा था, अपन जाते हैं खेते में करा था,
0: बिल्कुल
1: करिए नहीं तो खइए का।
0: खाइए का। और देखा वो तो खाते हैं पूरा हमारा देश खाता है,
1: बिल्कुल
0: तो ई मेहनत ई मेहनत कहीं ना कहीं देखा एक परिश्रम आए एक संघर्ष आए वो
1: बिल्कुल सही
0: चुनौती
1: कहा था।
0: भरा है। कभो देखा बहनी यू ठीक नहीं रहा कि कभो फसल अच्छी हो आती तो कभो खराब हो जाती, तो का उसे डर के सामना तो किन जा सकता था। तो
1: बिल्कुल
0: हमारे किसान भैया बहनी जैसे अपन संघर्ष करा थे वैसे हम सबके भी जीवन में अगर कोनो दुख मुसीबत आवता है तो हम सोचते है कि बहनी अगर ये उद्योग करत है अगर उमन मुनाफा ना ही भा हानि हो गई तो हम उसे पीछे हो जाई थी मुला, खाली बैठे से अच्छा भी नहीं हम एक बार फिर प्रयास करें, शायद है हम फिर दोबारा करें
1: कहा
0: तो
1: मुनाफा मिला हमें।
0: मुनाफा मिला था भाई नहीं
1: बिल्कुल
0: चाहे
1: सही कहा
0: कौनो
1: तू।
0: उद्योग करे थे।
1: और देखा गुंजा बहनी अपन जो इतिहास है
0: हाँ
1: ये ऐसा महान व्यक्ति से भरा है कि जवन कठिन संघर्ष के बाद सफलता हासिल की है और वो परिस्थिति के अपन कमजोरी नहीं बने दिए,
0: बिल्कुल
1: बल्कि उन्हें अपन ताकत बनाई के उनके जीवन के जीवन से हमें ये प्रेरणा लेवे के चाहिए कि
0: बिल्कुल
1: यदि हमार लक्ष्य स्पष्ट है और हमार संकल्प दृढ़ है तो हमें कोनो भी कठिनाई रोक
0: नहीं हो
1: नहीं
0: सकत
1: सका,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हर कठिनाई के हम सबके सामना कर
0: कर
1: लेवे के
0: सकत।
1: चाहिए।
0: देखा बहनी चंपा अगर हम कहा कि हम तो सोचे थे कि हम सभी के संघर्ष है जीवन में मुला, अगर अपन मजबूत इरादा होता है, हाँ अच्छी सोच होता है जेका सकारात्मक सोच कहते हैं, अगर बहनी हम अच्छा सोचते हैं हाँ तो वो मेहनत हमार एकदम जो है कहीं ना कहीं एकदम सफल बन जाते हैं। अगर
1: बिल्कुल
0: हम गलत सोच के करते ही तो कहीं ना कहीं एक जो है तो हम सभी के कठिनाई दे थी,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा तू।
0: अच्छे विचारों के साथ अगर हम कोनो काम करते ही तो जरूर सफल हो जाते हैं।
1: हाँ गुंजा मैंने एकदम बिल्कुल सही कहूँ। और देखा संघर्ष हमारे व्यक्तित्व के निर्माण भी करत है, ये हमें धैर्य आत्मविश्वास अनुशासन और सकारात्मक सोच के महत्व भी सिखावत है।
0: बिल्कुल
1: और बिना संघर्ष के जो सफलता मिलत है ना ओकर कौनो का कहते हैं मूल्य नहीं होते है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बल्कि जब हम सब संघर्ष कई के कोनो चाहे छोटे मोटे काम हम सब करी थे संघर्ष से मेहनत से करी थे
0: हाँ
1: तो
0: बहनी
1: का होता है कि जब सफलता मिल जाते है
0: हाँ
1: तो जीवन भर वहाँ पे हम सबके गर्व होते है, देखा हम मेहनत किए रहे तो आज हम देखो छोटी सफलता भले हासिल करी या
0: हाँ
1: बड़ी सफलता जो हासिल करी वो पे
0: हाँ
1: हम सबके गर्व होते है कि हम सब देखो सफलता हासिल कर लिए, हम मेहनत किए रहे तो वो सफल किए,
0: बिल्कुल
1: ये ना कि बीच में हम छोड़ दिए।
0: छोड़ दिए। तो सही कहो बहनी मुला हम तो कहे थे कि देखा हमार बहनी हरेन अगर वो घरे में है अगर वो शिक्षित है तो अपने शिक्षा के पूर्ण लाभ लें, रुकाए नहीं अपने
1: बिल्कुल
0: शिक्षा के
1: बिल्कुल
0: निरंतर बढ़ावा रहे, ऊ ही ना सोचें कि हम घर गृहस्थी में आए गए लड़का के देला में
1: हाँ तो
0: तो
1: यही में अब
0: हमार
1: यही में उलझी रही,
0: हाँ उलझी रही या
1: बल्कि वो
0: हमार
1: दुनिया से निकल के
0: प्रगति
1: एक
0: रुक
1: और
0: गए
1: दुनिया
0: बटे।
1: है,
0: हाँ
1: वो
0: बहनी
1: दुनिया से निकले एक और दुनिया है,
0: बिल्कुल
1: उसके तरफ भी देखें।
0: हाँ, तो वो सोचें कि वो जो अपन पढ़ाई है वो पे अपन कहीं रोजगार कर लें बहनी, या उस शिक्षा से कोनो परीक्षा पास
1: देखा कौन उनके हाथ में कौन गुण ढंग है।

0: रहा है
1: सिलाई है कढ़ाई है कुछ है तो कभी अपन छोटा मोटा अपन रोजगार कैसा करते हैं।
0: बिल्कुल, काहे कि देखा आज के जो ने आज के जो समय बाटे
1: बिल्कुल
0: उनमें ना अगर बहनी हरेन अपने पैरों पे खड़ी हैं तो समझ ला कि उनका कोनो भी रुकावट ना ही हो सकत जिंदगी में और कोनो तरह के जो है तो संघर्ष ना ही हो अगर हाँ छोटी मोटी संघर्ष तो सभी के जीवन में आते बहनी जीवन जिए के एक कला होती और जीवन जिए में भी एक हम सभी के सीख मिलत है।
1: सही कहा तू गुंजा में देखा यही बरे हमें कबहू कोनो कठिनाई से घबराए के नहीं चाहिए बल्कि हर चुनौती का एक अवसर मान के हाँ, आगे बढ़े के चाहिए। और देखा गुंजा बहनी हाँ, संघर्ष जितना कठिन हुई
0: हाँ,
1: सफलता उतना ही शानदार हुई
0: होती।
1: तो चला इतनी अच्छी अच्छी हम सब बात कही की है तो चला हमें फिर तुम्हें नीक के झूमर सुनवाई दी संदीप वर्मा बहनी से
0: तो चला तुम्हें सुना
1: और बहनी हरे भी सुने।

0: गुंजा बहनी
1: गुंजा बहनी तुम्हें गौने कैसा लगा?
0: मतलब एकदम बढ़िया
1: तो सासू जी हमें ताना ना मार।
0: हमारे सासू अगर ताना मारत भी है तो ओमेन भी हम सब के
1: भलाई है बिल्कुल,
0: क्योंकि एक माँ छोड़ के आई थी तो दूसरा माँ मिल जाते हैं और हम सब के जो गलती होती है उनका सुधाराते हैं।
1: बिल्कुल
0: मुला ई प्रेम के गीत है
1: बिल्कुल। और देखा गुंजा बहनी अपने पनघटे पे एक बातचीत है
0: हाँ।
1: महिलाओं के सुनहरे सपने। और देखा बात किए मैं रंजना पटेल से रजनी चंद्रा बहनी, तो चला सुन लिया जाए। तू सुना हम सुने बहनी हरे भी सुने।
0: देखा बहनी हरे आज के समय में जैसे शहर के महिलाएं तरक्की करत हैं उनका देखकर गांव के भी महिलाओं में तरक्की करे का मन होत है, वो लोग भी आगे बढ़े उनके भी सपने पूरे हो। आज यही विषय पर बातचीत बाटे कि गांव की बहू और बेटियों के बदलते सपने पर बातचीत करे बदे आए बटे अपने पनघटे पर बहनी रंजना पटेल। तो रंजना पटेल बहनी आपके बहुत बहुत स्वागत बाटे पनघटे पे।
2: आज हम बात करब बहनी गांव की बहू और बिटियन के बदलत सपना के बारे में। पहले के जमाना में गांव की बहू और बिटियन के जीवन घर गृहस्थी और परिवार तक सीमित रहत रहा। उनकर सपना बस इतने रहत रहा कि परिवार खुश रहे और घर के काम अच्छे से हो। लेकिन आज समय बदल गवा है।
0: तो ये बताओ रंजना पटेल बहनी कि हमार बहनी के जो महिलाओं के कौनो शिक्षा प्रसार में भी आगे बढ़ाते हैं?
2: जी जी, शिक्षा तकनीक और समाज में जागरूकता बढ़े से गांव की बहू और बिटियन के सोच और सपना भी बदल गए हैं। आज गांव की बिटिया डॉक्टर इंजीनियर अध्यापिका पुलिस अधिकारी खिलाड़ी और वैज्ञानिक बने के सपना देखत हैं। वो अपने हुनर और मेहनत के दम पर नया मुकाम हासिल करे चाहत हैं।
0: अच्छा रंजना पटेल बहनी ये बतावा कि जो ने हमार बहनी हरेना है उनकर कौनो रुकावट तो नहीं होत बढ़े में आगे कौनो तरह के समस्या?
2: अभी भी कई चुनौती मौजूद है जैसे बाल विवाह अशिक्षा और कुछ सामाजिक बंधन, लेकिन आज की बहू और बिटियन इन कठिनाइयों का पार करके आगे बढ़े का हौसला रखत हैं। परिवार और समाज का भी चाहिए कि वो उनकर समर्थन दें और उनकर सपनन का उड़ान दें। हम कह सकी था कि बहनी गांव की बहू और बिटियन के सपना अब छोट नहीं रह गवा, वो बड़े लक्ष्य बनावत हैं और अपने मेहनत से उन्हें पूरा करत हैं। यही बदलत सोच और आत्मविश्वास हमारे गांव समाज और देश का उज्जवल भविष्य है। गांव की बहू और बिटियन जब लिखित पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर और जागरूक होत हैं तब उनकर सबसे बड़ा प्रभाव बच्चन पर पड़त हैं।
0: बिल्कुल,
2: माँ बच्चन के पहली गुरु होत हैं। जौन माँ शिक्षित हुई है वो अपने बच्चन का भी पढ़ाई लिखाई के महत्व बताई।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहूँ रंजना बहनी, कहे कि देखा हमार सबे के जो प्रथम गुरु होते वो हमार माँ होते हैं और जो ज्ञान और जो संस्कार हमका

0: अपने मास मिलत है, उही आगे जाए के हम सबे के जो कहा थे नहीं कि हम सबे के संस्कार, हम सबे के जो ने लक्ष्य का निर्धारित करे थे। तो बहनी कि ई बतावा कि जो ने ई हमार महिलाएं हैं उनकर जो प्रसार है रोजगार के बदे, उनमें कोनो अवसर कोनो योजना बाटे जो हमार बहनी हरन के आगे बढ़ाए सके?
1: हाँ, सरकार की कई योजना और परिवारन के सहयोग से अब बिटिया का पढ़ाई के अधिक अवसर मिलत हैं। गांव की बहू भी अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रह गई हैं, वो स्वयं सहायता समूह, छोट छोट व्यवसाय, खेती किसानी और ऑनलाइन काम के माध्यम से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करत हैं। कई गांवन में बहु लोग सिलाई कढ़ाई, डेयरी और हस्तशिल्प के काम करके आत्मनिर्भर बनत हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट के पहुंच बड़े से गांव की महिलन का नई जानकारी और अवसर मिलत हैं। अब वो ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी योजनन की जानकारी और रोजगार के साधनन से जुड़त हैं। ये बदलाव न केवल उनकर जीवन बदल रहा है बल्कि पूरे समाज के विकास में भी योगदान दे रहा है।
0: बिल्कुल सही कहो रंजना पटेल बहनी, काहे कि देखा आज के जो नारी हैं वो कौनो तरह से जो है बाधित नहीं है, वो स्व इच्छा है, वो चाहे तो अपने जो हुनर है ओका अच्छे से निखार सकते हैं। जो ने उनके योग्यता है बहनी ओका वो अपने रोजगार में शामिल कर सकते हैं, चाहे अपने उन्नति के एक श्रेणी बनाए सकते हैं। तो रंजना पटेल बहनी ये बतावा कि आज के जौने समय में ओमा कौनो तरह के जौने लड़का गदेला में भेदभाव होते है कि ये बिटिया है ये जो है लड़का है तो उमेन कौनो रुकावट है, ऐसा कोनो तो भेदभाव नहीं होता आज के समय में?
1: आज के समय में बहनी बहुत बहु अपने लड़का लड़की दोनों का बराबर अवसर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वो समझत हैं कि मेहनत और शिक्षा से हर लक्ष्य हासिल कर ले जा सकते हैं।
0: हाँ,
1: आज की बदलत समय में गांव की बहू और बिटिया बच्चन का तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में माँ भी जागरूक करत हैं। इन्हीं से नई पीढ़ी अधिक समझदार और जिम्मेदार बनत हैं। ऐसा कहे में कोनो संकोच नहीं कि गांव की बहू और बिटियन के बदलत सपना बच्चन के बेहतर भविष्य के नींव तैयार करत हैं।
0: बिल्कुल सही कहो, देखा अगर हमार बहनी हरेन शिक्षित हैं और वो जानकार है कि हमार सबे के जो घर गृहस्थी है कैसे चलाता है, हमार गदेलन कैसे शिक्षित है, कौने श्रेणी में वो आगे हैं, उनके कौन उपयोगिता है उनके बारे में जानती हैं, और वही अवसर पे उनका सबके शिक्षित करके उनका सही कहती नहीं उपाधि दे देती अपन गदेला के, तो वो समझ ला कि जो ने उनके जीवन है एक ऐसी कौनो कठिनाई ना जो कि गदेला पार नहीं कर सकते। तो इनमें हम सबके बहनी हरन के बहुत बड़ा योगदान आया है। आज के जो ने समय बाटे ओका देखत बे बहनी, हम सबे जो आजकल के महिलाएं हैं वो शहर और गांव में अब कोनो फर्क नहीं रहेगा है, बस बहनी शिक्षा के कमी होत है, कहीं कहीं महिलाएं शिक्षित नहीं हो पाती ओके वजह से कुछ महिलाएं पीछे रह जाती। हम तो कहा बहनी सब बहनी हरन के शिक्षा पहली सीढ़ी है, अगर बहनी शिक्षित है तो कौनो श्रेणी में पीछे नहीं हट सकते। ये आगे घर की महिलाएं आगे बढ़त हैं तो उनका कौन कौन सा अवसर मिल सकता है?
1: जब तक एक महिला आगे बढ़त हैं तब पूरा परिवार और अगली पीढ़ी की प्रगति के राह पर चल पड़त हैं।
0: अच्छा बहनी,
1: जब बच्चा अपने घर में
0: हाँ
1: माँ या बहन का काम करत, पढ़त लिखत और हाँ, समाज में सम्मान पावत देखत हैं तब उनकर सोच भी सकारात्मक बनत हैं।
0: अच्छा,
1: वो समझत हैं कि मेहनत और शिक्षा से हर लक्ष्य हासिल कर ले जा सकत हैं। यही कारण है कि गांव की बहू और बिटिया के सपनन का सम्मान और समर्थन करत बहुत जरूरी है, काहे कि उनकर सफलता में समाज और देश के उज्जवल भविष्य छिपावा।
0: एकदम नीक रंजना पटेल बनी, काहे कि देखा एक परिवार और समाज बनावे के पीछे एक महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है, काहे कि अगर हमार घर के महिला सजाए सकत हैं तो समाज में भी अपन नाम रोशन कर सकते हैं। तो हर महिला अपने आप में एक शक्ति के रूप है, तो हम चाहब कि हमार बहनी सब बहनी हरेन अपने जो शक्ति का है उका जरूर प्रयोग करें और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण अवश्य करें। देखा रंजना पटेल बहनी, आप हमारे पनगटे पे आए, आप इतनी नेक नेक जानकारी दें, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गुंजा बहनी,
0: हाँ बहनी,
2: देखा रंजना पटेल बहनी और रजनी चंदा बहनी कितनी अच्छी बातचीत की महिलाओं के बारे में, और देखा सही बात है, हमरे जो हमरे समाज के महिला हैं वो

0: खाली परिवार का आधारशिला ना यही बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रगति के सशक्त शक्ति भी होती और हर महिला के मन में कुछ सुनहरा सपना होता है, कभो शिक्षित बने के सपना होता है, आत्मनिर्भर बने के, अपने परिवार के खुशहाल रखे के सपना और समाज में सम्मान के साथे अपन पहचान बनावे के सपना होता है। और देखा गुंजा बहनी, महिला के सुनहरा सपना तबे साकार होते जब ओकर परिवार ओकर सहयोग करत है, समाज के सम्मान और समाज अवसर समान अवसर मिलत है और शिक्षा कौशल विकास और आत्मविश्वास वो शक्ति है जो हर महिला के अपने सपना तक पहुँचे के मार्ग दिखावत है।
1: देखा सरता बहनी, चंपा बहनी, देखा हमार सखी की याद आ गई।
0: अच्छा, मुला चंपा आज अभी नारे मिली रही तू से ना।
1: बिल्कुल, देखा चंपा बहनी कहती नहीं कि अगर औरत एक महिला कुछ अगर ठान लेती वो चाहे घर के हुए
0: चाहे बाहर के हुए,
1: हाँ चाहे अपने रोजगार से संबंधित हुए, आज के समय देखा दोनों चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो दोनों मिलके कमाते हैं बहनी, तो अपने आप के जो है तो महिला जो हमारे बहनी हरेन है अगर वो अपने आप के जो है स्वावलंबी बनाए चाहते हैं तो रोजगार अवश्य कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा गुंजा बहनी। तो चला हम तुम्हें एक ठुन्नी के कजरी सुनवाई दी संदीपमा वर्मा बहनी से, चला सुन लिया जाए।
1: चला सुना जाए।

0: सजन बिन गुइया बदरा न भावे।
1: बिल्कुल सही कहो
0: देखा बहनी कितना नीक के गौ नहीं रही देखा, कि देखा बदरा
1: बादर वादर होत है और फिर बरसात और साथ तो बस अगर बाहर निकली हूँ तो सोचा कि काश मन से दू साथे होते तो ठीक
0: देखा यही तो आनंद है ना। तो एक मौसम के आनंद है, एक साथी के आनंद है।
1: बिल्कुल
0: देखा ये मौसम भी कितना नीक नीक का है। मुला हम सोचा थे बहनी कि इतनी खुशी का मौका है हम सभी देखा प्राकृतिक तो झूम दे। मुला हम सोचत है कि अब तुरो सोहिया से काल आए बाटू।
1: आज हम ला है व्रत के व्यंजन। तो देखा गुंजा बहनी
0: हाँ
1: अगर झटपट बनावे से कहूँ कहूँ कि जायक है
0: हाँ
1: और झटपट में हम सब का बनावे है
0: हाँ।
1: और जल्दी बने वाला चीज
0: हाँ
1: है। सबसे अच्छा कि व्रत के लिए मूंगफली भून दो, थोड़ा सा घी डाल के सीधा
0: हाँ।
1: नमक डाल के अगर नमक खाए के तो मूंगफली भून दो और मखाना जल्दी भुना हो जाए और जल्दी से हो जाए। और उससे तो व्रत में बहुत कुछ होते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो देखा हम तुम्हें बता दी साबुदाना के खिचड़ी।
0: अच्छा बहनी
1: आलू डाल के और टमाटर डाल के तो देखा साबुदाना ले लें
0: हाँ
1: ओका रात में पहले भिगोई दें,
0: अच्छा
1: धुल के अच्छे से रगड़ के वो
0: हाँ
1: निकलता ना वो ओका धुल दें ओका से भिगा दें रात भर भिगा रहा है। अगर सब दिन में बनावे खा दिन में भिगावे
0: अच्छा
1: तो
0: बहनी
1: 3-4 घंटा कम से कम ओका भिगा दें बढ़िया से हो जाए। ओकरे बाद से रात में जब भिगा रहा है वो
0: हाँ
1: सुबह उठिए
0: साबुदाना
1: देखिए हाँ एकदम वो का हल उठाइए हाथ से ना एक एक दाना अलग अलग हो जाए
0: हाँ
1: एकदम
0: टूटे
1: बढ़िया।
0: लगा तो बहनी
1: ओके बाद से देखा सबसे बड़े कढ़ैया रखा है
0: हाँ
1: उसमें घी डाल दें चाहे मूंगफली तेल या फिर जौन तेल व्रत में खात हो जौन ओका डाल दें ओका जीरा डाल दें।
0: अच्छा
1: जब जीरा चटक जाए तो हरी मिर्च डाल दें फिर ओका से उसमें आलू डाल दें
0: अच्छा बहनी
1: थोड़ा सा आलू भुनाई जाए। ओके बाद से हमें टमाटर डाल दें क्योंकि टमाटर भी गले के चाहिए।
0: हाँ
1: तो कैसे जब फिर ओका ढक दें चलाई के तो टमाटर आलू बढ़िया से हो जाए क्योंकि साबुदाना जब पहले भले भीगा रहा था लेकिन चिपका लागत है।
0: हाँ मैंने
1: ओके बाद से जब आलू हो जाए टमाटर गल जाए तो
0: हाँ
1: हमें साबुदाना डाल दें और नमक डाल दें ओके ढक दें।
0: अच्छा
1: ओके
0: मैंने
1: बाद

0: से तो कब चलावत रहें, 2-3 मिनट के ढक दें और चलाई दें, फिर ढक दें 2 मिनट के लिए, ओका देखिए कि साबूदाना खिचड़ी तैयार है। ओपे धनिया पत्ती डाल के ओके बढ़िया से ओका आनंद लें खाएं। और देखा बहुत कुछ बना था, देखा साबूदाना बड़ा बना था,
1: हाँ मैंने,
0: साबूदाना आलू का, तो साबूदाना ले लें, भिगा साबूदाना बताया ना, इसे
1: हाँ
0: भिगा
1: हाँ
0: लें, और
1: अच्छा,
0: मैं आलू उबला आलू डाल के,
1: हाँ
0: और मैं हरी मिर्च डाल दें,
1: धनिया
0: हरी धनिया
1: पत्ती
0: पत्ती
1: डाल
0: डाल दें,
1: दें, जीरा
0: जीरा
1: थोड़ा सा
0: डाल,
1: डाल दें,
0: हाँ जीरा
1: स्वाद
0: डाल
1: अनुसार
0: दें,
1: नमक डाल दें
0: नमक डाल
1: हमें।
0: दें, मसाला का कुछ जो डाल लिखा तो का डाल दें, और बाकी सबका मिलाई दें बढ़िया
1: अच्छा,
0: से। ओके बाद से ओका टिक्की बना लें,
1: गोली गोली टिक्की, हाँ हल्के हाथ
0: ओका
1: में से
0: हल
1: दबावे।
0: ओका तेल में छान दें, एकदम बढ़िया कुरकुरा भी बना था और खाए में
1: हाँ
0: भी एकदम मस्त मजा
1: बहुत बहुत स्वाद
0: लागत।
1: अनुसार रहा था बहनी।
0: हाँ
1: और
0: और
1: देख,
0: देखा कुट्टू के आटा के पूरी बना था,
1: हाँ
0: पराठा बना
1: बहनी,
0: था, ये कभी व्रत में हम सब खाए सकी
1: खाए
0: थे,
1: सके थे।
0: जे का मन का पराठा खाए, जे का मन का पूरी खाए, और सिंघाड़े खाटे खलवा देखो। और मेरे का ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगा, देखो घी और चीनी और थोड़ा सा सूखा मेवा ले लें,
1: अच्छा
0: एमें
1: बहनी,
0: बन जाते हैं थोड़े से सामान में, और व्रत वाला आलू जन होता है एमें भी बहुत ज़्यादा सामान नहीं लागत। देखा सेंधा नमक ले लें और घी ले लें और जीरा ले लें, मिर्चा ले लें और धनिया पत्ती,
1: अब
0: इतने में बन
1: बहनी
0: जाता है
1: हम तो सोचे थे एक और बताए दी,
0: उका।
1: वो है मेवे की खीर। देखा
0: बिल्कुल
1: बहनी का करे के है, थोड़ा सा हरी इलायची लेके है और देसी घी में उका तड़का दे दें, उसके बाद जो है हम सबे मेवा के जो है थोड़ा सा पानी में भिगो ली 5-10 मिनट तक, ओके बाद उका जो है पीस ली। अब पीसे के बाद बहनी ओके जो देसी घी के तड़का लगाए रहे
0: हाँ
1: बहनी
0: हाँ
1: उनमें छोंक दी, और छोंके के बाद धीमी आंच में पकाई, और थोड़ा सा 1 गिलास तक दूध डाल दी बहनी, और जितना मिठास तोहका चाहिए कम या ज्यादा
0: और सब
1: स्वाद
0: चीनी डाल
1: अनुसार,
0: दें।
1: चीनी डाल दी बहनी, आपको खूब बढ़िया से चलावा जाए, जब थोड़ा सा गढ़ाई जाए बहनी तब ओका चूल्हा बंद कर दें, और देखा हमार मेवा खीर बन के तैयार, और
0: बिल्कुल
1: पौष्टिकता कितनी रहती है हमने।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और देखा मखाने मेवा खीर होता, मखाना खीर देखा वो कम
1: हाँ
0: समय
1: बहनी,
0: में
1: हाँ
0: वो अच्छा एकदम स्वादिष्ट बन जाता है,
1: अच्छा,
0: और ज़्यादा सामान यूँ में नहीं लागत। देखा वो ले लें, दूध ले लें और
1: हाँ
0: मखाना ले लें और इलायची ले लें, उसका पाउडर बना लें इलायची के,
1: अच्छा
0: और
1: बहनी,
0: मेवा ले लें थोड़ा सा, देखो वो रख दें पहले दूध रख दें, दूध जब बढ़िया से खौले लगे तो मखाना भून के हल्का सा दरदरा पीस लें,
1: अच्छा बहनी,
0: हाँ ओका तो मैं डाल दें और मेवा डाल दें, ओका बढ़िया से चलावत रहें, ओका तो मैं थोड़ा सा चीनी डाल दें अपने हिसाब से, जिससे
1: अच्छा
0: उन्हें खाए को ज़्यादा मीठा खाए को कम मीठा खाए को,
1: हाँ बहनी,
0: ओका बढ़िया से चलावत रहें, ओका इलायची जब गाढ़ा हो जाए, बस इलायची पाउडर कुटा हुआ है ओका डाल दें,
1: अच्छा
0: ओका दो
1: स्वाद।
0: मिनट बाद बंद कर दें गैस।
1: अब बहनी जान लू कि ये जब हम सभी व्रत में खाते हैं तो समझ लो कि हम सभी के जो ने व्रत में कमी हो जाते हैं पौष्टिकता के, वो हमका ये फलहार से भी मिल जाते हैं। अगर हम चाहे तो बहनी जैसे कट्टू के हलवा बनाते हैं कितना नीक लगे लागत है, ओका बहनी खूब सिंगाड़ा के जो है देसी घी में भून लें, हाँ ओके बाद थोड़ा सा पानी उनका मिला के हल्के हाथ से इसे से चला ले जब तक कि भूरे रंग के ना हो जाए, फिर और उसके बाद उनमें चीनी डाल दे बहनी, चीनी डालने के बाद जैसे नू थोड़ा गढ़ाई लगे तुरंत अपने गैस को बंद कर दें, और एक थाली में खूब
0: हाँ घी
1: बढ़िया से
0: लगाई
1: घी
0: के,
1: लगाए दें, और उसके बाद जो जो ने हलवा बनाया है ओका ऐसे बिछाए दें, अब बिछाए बनी ओका चाकू
0: अपने
1: से,
0: हाँ अपने हिसाब से जैसे
1: हाँ
0: गोल और ने बनाओगे तो गोल,
1: डिजाइन से काट ले
0: हाँ
1: बहनी, हो सके तो मैं जो ने हम पांचों मेवा काटे है ओका ऊपर से सजाए सके थे, अब
0: बिल्कुल
1: समझ
0: सर।
1: लग कि
0: और
1: खाए
0: देखा
1: में भी निक रहा था, और हम सभी के जो ने व्रत में भूख लगा था बहनी तो भूख के भी कम कर दे थे।
0: बिल्कुल, और देखा फल के चाट भी बनत है,
1: अच्छा
0: तो
1: बहनी,
0: हाँ जो उनके फल खाए को केला हो गए,
1: हाँ
0: सेब पपीता हो गए, अनार हो गए, जो उन भी फल खाए को
1: हाँ
0: ओका काट के अपने हिसाब से
1: अच्छा,
0: ओके उनमें थोड़ा सा शहद डाल दें
1: हाँ
0: और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर
1: अच्छा बहनी,
0: डाल के और मिला दें बढ़िया से खा, और फिर आओ था नमक काला नमक, लेकिन व्रत में खा नहीं सके सीधा
1: नहीं
0: नमक
1: बहनी
0: डाल दें,
1: सेंधा नमक
0: और फिर
1: डाल
0: कोनो
1: दें,
0: मसाला जो व्रत में खाए जात हो ओका
1: हाँ
0: भी डाल के व्रत में हम सब खा सकित
1: खा
0: है।
1: सके थे,
0: तो देखा इतना अच्छे अच्छे व्रत के हम सब बताए व्रत के व्यंजन, तो चला अब तुम्हें एक ठू हम नीक के गौनी सुनवाई दे
1: बिल्कुल
0: फिल्मी
1: बहनी,
0: गीत
1: काहे कि देखा जब तक अपने पनघटे पे
0: ढोल
1: ढोल
0: मजीरा ना
1: मजीरा नहीं बजत कुल गीत
0: तब तक,
1: संगीत हो दे तो
0: तब तक
1: कितना
0: मजा ना
1: नीक
0: आयावत,
1: लगत है। बिल्कुल
0: तो चला हम तुम्हें गंगा जमुना फिल्म से सुनवाई दी, ढूंढो
1: दोनों
0: ढूंढो रे
1: फिल्म के,
0: साजना, चला तू सुना बहनी हरे भी सुने।

0: चंपा बहनी
1: हाँ
0: देखा
1: गुंजा
0: आप,
1: बहनी
0: घड़ी इशारा करा दिया है और देखा हम सोचा था कि
1: चल
0: बहनी एरन से एक संदेश सुनवाएं दिन जाए।
2: जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमार ईमेल एड्रेस है
5: pangatprogram@therateofgmail.com, स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com, pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो सखियन देर कोनी बात के तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
6: बेसब्री से इंतजार रही।
1: बिल्कुल गुंजा बहनी, हम सबके बहनी हरन के
0: इंतजार
1: इंतजार रही संदेश उनके संदेश का। उनके उनके का अच्छा लागत है, उनने सबके और का सुने का है।
0: दे चाह दिन
1: हाँ अपन राय से अगर ईमेल पे

0: पावत तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप तो देखा हर बहनियाँ चलावत थी, तो व्हाट्सएप पे भी वो सब दे सकत थी।
1: बिल्कुल बहने
0: और गुंजा
1: देखा
0: बहनी
1: घड़ी
0: हम सब
1: सारा चल
0: देखा अपने पनघटे पे आए थे, कितनी अच्छी अच्छी बात करी थे, कितनी अच्छी अच्छी जानकारी देती बहनियन के, उनके सबके का अच्छा लागत है का और सुने का है जैसे हम बताए ना,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: सब पे ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे दे सकल अपनो। और देखा घड़ी इशारा करत है
1: हाँ
0: और घरे
1: बहनी
0: जरे के बेला होत है, चला बहनियन से राम राम किया जाए। राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: बहनी
1: बहनी
0: हरे।
1: अरे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरु मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरु मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरु मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार

0: समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
1: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
3: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
1: भारतीय

0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
1: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं
2: जी।
3: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं।

0: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
1: श्रोता, आपको बता दें कि किलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने किलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये किलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
6: मैम।
4: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
5: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग

0: 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
1: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात,
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: जी मैम,
5: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
3: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली

0: अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
0: जंगल के साथी।
3: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
4: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश,
0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था बताओ।

0: दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
1: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
0: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
0: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
3: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश

0: बादल देखे।
1: बादल देखे फिर दादी माँ,
0: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम दत्ता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे उमंग।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 17.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं धरती के गीत। कलाकार हैं राम बाबू यादव और साथी। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे रामबाबू यादव और साथियों के स्वर में झूमर। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप

सुन रहे हैं धरती के गीत कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं राम बाबू यादव और साथी। आइए अंत में सुनते हैं इनके स्वर में लाचारी।

अभी आप सुन रहे थे धरती के गीत, कलाकार थे रामबाबू यादव और साथी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में युवा साथी सुनेंगे युवा वाणी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: हाँ बिल्कुल, घर से निकलते हैं तो कभी पड़ोसी मिल जाते हैं, रास्ते में रिक्शा वाले भैया, कॉलेज या ऑफिस के फ्रेंड्स मिल जाते हैं, दुकानदार मिल जाते हैं, कलीग्स और ना जाने कितने चेहरे।
1: है ना, कुछ इंटरैक्शंस बस कुछ सेकंड्स के होते हैं, कुछ कुछ मिनट्स के, और कुछ रिलेशंस सालों तक हमारे साथ चलते हैं।
0: लेकिन दोस्तों, इन सभी इंटरैक्शंस में एक चीज ऐसी होती है जो अक्सर दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत मायने रखती है, और वो है दूसरों के टूवर्ड्स हमारा बिहेवियर।
1: हम किसी से कैसे बात करते हैं, किसी की परेशानी को कितना समझते हैं, और अपने आसपास के लोगों के टूवर्ड्स कितने सेंसिटिव हैं।
0: कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि किसी स्ट्रेंजर ने आपकी छोटी सी हेल्प कर दी हो, रास्ता बता दिया हो, लाइन में आपकी बारी का ध्यान रख लिया हो, या बस एक पोलाइट बिहेवियर से आपका दिन थोड़ा सा बेहतर बना दिया हो।
1: ये छोटी छोटी बातें हमें उस समय बहुत नॉर्मल लगती हैं, लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों की कमी होने लगे तो सोसाइटी में ट्रस्ट, कोऑपरेशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग की कमी होने लगती है।
0: हम अक्सर डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो नई रोड्स, नई टेक्नोलॉजी, नई इंस्टीट्यूशंस, नई फैसिलिटीज, और ये सब ज़रूरी भी है, लेकिन क्या केवल इन सब चीज़ों से समाज डेवलप्ड हो जाता है?
1: क्या केवल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही डेवलपमेंट की पहचान है, या फिर डेवलपमेंट का रिलेशन इस बात से भी है कि हम एक दूसरे के टूवर्ड्स कितने रिस्पॉन्सिबल, कोऑपरेटिव और सेंसिटिव हैं?
0: तो दोस्तों, आज युववाणी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक की जो किसी की समाज की असली स्ट्रेंथ माना जाता है, समाज के विकास में नागरिक संवेदनशीलता की भूमिका। बात करेंगे इस पे विस्तार से, मगर उसके पहले आइए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो हेलो हेलो, शाम हो चुकी है, चाय तैयार है और अगर रेडियो भी ऑन है तो समझ लीजिए टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि श्रीवास्तव
1: और मैं हूँ उन्नति। आप सुन रहे हैं आपका और हमारा कार्यक्रम युवाणी। वैसे अंजलि और दोस्तों, दिन भर हम ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं, है ना?

0: अब दोस्तों सवाल ये है कि आखिर नागरिक संवेदनशीलता या सिविक सेंसिटिविटी होती क्या है?
1: इजी वर्ड्स में अगर कहें तो नागरिक संवेदनशीलता का मतलब है अपने राइट्स के साथ साथ दूसरों की नीड्स, फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स के टूवर्ड्स भी अवेयर और रिस्पॉन्सिबल होना।
0: यानी सिर्फ मुझे क्या मिल रहा है ये सोचना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि मेरे बिहेवियर का दूसरों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है।
1: दोस्तों जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में जो रिफ्लेक्स में इमेजेस आती हैं वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, टेक्नोलॉजी की, इंडस्ट्रीज की और इकोनॉमिक ग्रोथ की।
0: और ये सभी किसी भी देश के विकास के लिए इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, लेकिन सोशल डेवलपमेंट केवल इमारतों, फ्लाईओवर्स और टेक्नोलॉजी से नहीं आता। इसकी असली फाउंडेशन लोगों के बिहेवियर और आपसी ट्रस्ट से टिकी होती है।
1: और यही रीज़न है कि यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी इंक्लूसिव सोसाइटीज़, सोशल पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी इंगेजमेंट जैसी वैल्यूज़ पर स्पेसिफिक एम्फेसिस दिया गया है।
0: क्योंकि जब नागरिक अपने समाज के प्रति संवेदनशील होते हैं, तब डेवलपमेंट का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और समाज ज़्यादा इंक्लूसिव बनता है।
1: अब दोस्तों यही सोचिए कि अगर किसी सड़क पर ट्रैफिक रूल्स का पालन केवल पुलिस की मौजूदगी में किया जाए, तो क्या वो व्यवस्था लंबे समय तक सुचारू रह पाएगी?
0: शायद नहीं, क्योंकि किसी भी समाज को केवल कानून नहीं चलाते, बल्कि नागरिकों की जागरूकता और जिम्मेदारी भी चलाती है।
1: ठीक इसी तरह पब्लिक स्पेसेस की सफाई, पानी का संरक्षण, बुजुर्गों का सम्मान या दिव्यांगजन और जरूरतमंद लोगों की मदद, ये सब केवल नियमों से नहीं बल्कि संवेदनशीलता से संभव होता है।
0: दोस्तों, संवेदनशीलता समाज में ट्रस्ट पैदा करती है, और जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ कोऑपरेशन बढ़ता है, जहाँ कोऑपरेशन बढ़ता है वहाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट भी तेज़ी से आगे बढ़ता है।
1: और यही कारण है कि किसी भी विकसित समाज की पहचान केवल उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के बिहेवियर से भी जानी जाती है।
0: दोस्तों, हमारा संविधान हमें कई राइट्स देता है, लेकिन साथ ही कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी सौंपता है।
1: संविधान के आर्टिकल 51A में नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करें, ब्रदरहुड यानी भाईचारे और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दें और राष्ट्रहित में रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट अपनाएं। और दोस्तों ये बात हमको ध्यान देनी चाहिए कि जब बात हो रही है रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट की, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब यूथ स्पेशली जब प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, किसी चीज़ की मांग करते हैं, तो हम लोग ये नहीं ध्यान देते हैं कि कब वो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रक्ट करने में चला जाता है। तो वो ध्यान देना है कि वो चीज़ ना हो। प्लस कई कई बार ऐसा होता है ना उन्नति, कि जब कहीं प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो जो रोड है वो ब्लॉक कर देते हैं, तो उस टाइम हो सकता है कि कोई एम्बुलेंस हो, इमरजेंसी हो किसी की, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो दैट्स बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
0: बिल्कुल, यानी एक अच्छा नागरिक केवल अपने अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि अपनी ड्यूटीज को भी उतनी ही सीरियसनेस से निभाता है।
1: और अगर युवाओं की बात करें तो उनका रोल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज का युवा केवल फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट भी है।
0: जब युवा किसी सामाजिक मुद्दे पर अवेयरनेस फैलाते हैं, जब वो वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पॉजिटिव कम्युनिकेशन को बढ़ावा देते हैं,
1: तो वो केवल अपनी पहचान नहीं बनाते दोस्तों, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाने में योगदान दे रहे होते हैं।

0: तो दोस्तों, नागरिक संवेदनशीलता कोई बहुत बड़ी या असाधारण चीज़ नहीं है, ये छोटी छोटी बातों से ही शुरू होती है।
1: किसी की बात को ध्यान से सुनने से, ज़रूरतमंद की मदद करने से, पब्लिक स्पेसेस को साफ रखने से और दूसरों के राइट्स का सम्मान करने से।
0: क्योंकि समाज का विकास केवल पॉलिसीज, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम से नहीं होता, वो लोगों के दिलों और बिहेवियर से भी होता है।
1: और जब एक संवेदनशील नागरिक आगे बढ़ता है तो उसके साथ पूरा समाज आगे बढ़ने लगता है।
0: सो हियर्स योर टेक अवे, एक बेहतर सोसाइटी की शुरुआत एक संवेदनशील सिटीजन से ही होती है।

0: दोस्तों, सुबह सुबह घर में चाय का कप हो, बच्चों के लिए दूध हो या फिर त्योहारों में बनने वाली मिठाइयाँ, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पशुपालन का योगदान छुपा होता है, लेकिन अक्सर हम इसके महत्व को उतना समझ नहीं पाते।
1: पशुपालन सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि लाखों परिवारों की लाइवलीहुड का आधार है, लेकिन जिस तरह इंसान को बीमारियां हो सकती हैं उसी तरह पशु भी कई तरह के डिजीजेस का शिकार हो सकता है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब बीमारी की सही इन्फॉर्मेशन या उसके शुरुआती सिम्टम्स को समय पर पहचाना ना जाए।
0: आज के दौर में युवाओं की भूमिका सिर्फ पशुपालन तक सीमित नहीं है बल्कि अवेयरनेस फैलाने और साइंटिफिक मेथड्स को अपनाने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले प्रमुख डिजीजेस, उनके सिम्पटम्स, प्रिवेंशन मेजर्स यानी बचाव के उपायों के और इस दिशा में युवाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, क्योंकि स्वस्थ पशु ही स्वस्थ परिवार और मजबूत रूरल इकोनॉमी की पहचान है।
1: तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन और जानते हैं इस विषय से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें इस वार्ता से जिसका शीर्षक है पशुपालन और युवा जागरूकता, हमारे साथी डॉक्टर नृपेंद्र सिंह के साथ।
2: भारत एक कृषि प्रधान देश है और पशुपालन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे पशु हमें खाद, दूध, आय और खेती से सहयोग प्रदान करते हैं, इसलिए पशुओं का स्वास्थ्य हमारे परिवार और हमारी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। बरसात का मौसम खेती के लिए वरदान है, खेतों में हरियाली आती है, चारा उपलब्ध होता है और फसलों को पानी मिलता है, लेकिन पशुपालकों के लिए यह मौसम विशेष सावधानी का समय होता है। बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जगह जगह पानी जमा हो जाता है और कीटाणु, विषाणु, फंगस, मच्छर, मक्खी तथा परजीव तेजी से बढ़ने लगते हैं। इन्हीं कारणों से पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि सही समय पर देखभाल न किया जाए तो पशुओं में बीमारी, दूध उत्पादन में कमी, वजन कम होना और आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि बरसात में पशुओं की देखभाल कैसे करें और किन प्रमुख बीमारियों से इनका बचाव करें। बरसात में पशुओं की देखभाल के महत्वपूर्ण उपाय, सबसे पहले हम उपाय की बात करेंगे तो पहला, पशुओं को बारिश से बचाएं। तेज बारिश में पशुओं को खुले स्थान पर ना बांधें। अधिक समय तक भीगने से पशु को ठंड लग सकती है, बुखार भी आ सकता है, निमोनिया हो सकती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। विशेष रूप से छोटे बच्चों जैसे बछड़े, बछड़ियाँ, मेमने और बकरी के बच्चों को बारिश से बचाना ज़रूरी है। सेकंड, पशुशाला की साफ सफाई। बरसात में पशुशाला में नमी, गंदगी बीमारी का मुख्य कारण बनती है। ध्यान रखें कि फर्श सूखा रहे, पानी जमा ना होने दें, गोबर रोज साफ करें, नालियों की सफाई करें, पशुशाला हवादार रखें। और तीसरी बात है कि चारे का उचित प्रबंधन होना चाहिए। बरसात में हरा चारा अधिक मिलता है, लेकिन गीला चारा ज़्यादा मात्रा में देने से पाचन खराब हो जाता है, इसलिए हरे चारे के साथ सूखा चारा जरूर दें। फूफंद लगा चारा ना दें, खराब या सड़ा हुआ चारा ना खिलाएं। अब हम बात करेंगे बरसात में होने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में। सबसे पहले हम गलाघोटू रोग, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। या गाय और भैंस में

वाले गंभीर रोग हैं। इसमें लक्षण हैं तेज बुखार होना, गले और गर्दन में सूजन होना, सांस लेने में कठिनाई होना, मुंह से लार गिरना और अचानक मृत्यु हो जाना। इसके बचाव में हम समय समय पर टीकाकरण करें, बीमार पशु को अलग रखें और साफ वातावरण में रखें। दूसरे हम बीमारी की बात करें तो खुरपका मुंहपका रोग, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फुट एंड माउथ डिसीजेस। यह बहुत तेज से फैलने वाली बीमारी है और इसके लक्षण की बात करें तो मुख से छाले दिखाई देना, जीभ में घाव होना, अधिक लार आना, खुरों में घाव होना और दूध उत्पादन अचानक से कम हो जाना। और खुरपका मुंहपका रोग के बचाव के बारे में हम बात करें तो FMD टीका इसमें लगवाना आवश्यक होता है। संक्रमित पशु अगर हमें मिलता है अपने पशुशाला में तो उसको हम अलग रखें और अपने पशुशाला को हमेशा साफ रखना चाहिए। और तीसरी बीमारी की बात करें तो लंगड़ा बुखार, जिसको हम अंग्रेजी में ब्लैक क्वार्टर डिसीज़ बोलते हैं, यह कम उम्र के पशुओं में अधिक पाया जाता है। और इसके लक्षण की बात करें तो पैर में सूजन होना, दर्द, लंगड़ापन, तेज बुखार और अचानक मृत्यु हो जाना। और इसके बचाव की बात करें तो ब्लैक क्वार्टर टीका इसका एक मुख्य टीकाकरण है और दलदली जगह से पशुओं को रखने से बचाएं। चौथी बीमारी के बारे में बात करें तो लंपी स्किन डिसीज़, या इसको हम LSD भी बोलते हैं, और बरसात में मक्खी मच्छरों के कारण यह बीमारी अक्सर बढ़ जाती है। और इसके लक्षण की बात करें तो शरीर पर गांठें बनना, बुखार, त्वचा में सूजन, दूध उत्पादन कम होना। और इसके बचाव की बात करें तो मक्खी मच्छर पर नियंत्रण करें, संक्रमित पशु को अलग रखें और टीकाकरण अवश्य लगवाएं। नेक्स्ट, पांचवी बीमारी की अगर हम बात करें, निमोनिया, यह भी बरसात में छोटे बच्चों में अधिक होता है और इसका कारण है ठंड, बारिश और नमी की वजह से। लक्षण में देखें तो खांसी, नाक से पानी आना, तेज सांस, कमजोरी, बुखार। और बचाव, निमोनिया की बचाव की बात करें तो छोटे पशुओं को सूखी जगह में रखें, ठंडी हवाओं से बचाएं और समय पर उपचार कराएं। बीमार पशुओं को अलग रखें और साफ सुथरा वातावरण में अपने पशुओं को रखें। अगली बीमारी की बात करें तो दस्त या डायरिया, बरसात में दूषित पानी और गीले चारे से दस्त होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। दस्त में लक्षण हमें कई बार देखने को मिलता है, बार बार पतला गोबर हमारा जानवर करने लगता है, कमज़ोर दिखने लगता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और इसके बचाव में बात करें तो हमें हमेशा साफ पानी देना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए और गंदा चारा नहीं खिलाना चाहिए। और अगला रोग अफरा रोग, या इसको हम इंग्लिश में ब्लॉट बोलते हैं, ब्लॉटिंग कंडीशन, ये बरसात में ज़्यादा हरा चारा और गीला चारा खिलाने से गैस बन जाती है। और लक्षण में देखें तो पेट फूलना, बेचैनी, सांस लेने में परेशानी। और बचाव की बात करें तो अचानक ज़्यादा हरा चारा ना दें, धीरे धीरे चारा बढ़ाएं, सूखा चारा साथ में दें। और अगली बीमारी की बात करें तो थनैला रोग, या इसको हम मैस्टाइटिस भी बोलते हैं, दुधारू पशुओं में यह आम समस्या है। इसके लक्षण में हम देखते हैं थन में सूजन, दूध में बदलाव, थन में दर्द होना, दूध कम होना। और इनके बचाव की बात करें तो दूध निकालने से पहले थनों की रेगुलर सफाई करें, पशुशाला सूखी रखें। नेक्स्ट, कृमि रोग या इंटरनल पैरासाइट्स, बरसात में पेट के कीड़े बढ़ जाते हैं, अक्सर देखा गया है। और इनके लक्षण में वजन कम होना, भूख कम लगना, दस्त, कमजोरी। और बचाव की बात करें तो कृमिनाशक दवा दें और साफ चारा दें। अगला, बकरियों में होने वाले प्रमुख रोग हैं PPR, इसको अंग्रेजी में बोला गया है पेस्टिडेस्पेटाइटिस रूमिनेंट, या इसको पशु प्लेग भी बोला जाता है। बरसात में बकरियों में इसका खतरा बहुत बढ़ जाता है। और इनके लक्षण की बात करें तो तेज़ बुखार, नाक बहना, दस्त, कमजोरी। और बचाव की बात करें तो PPR टीका अवश्य लगवाएं और बीमार पशु अलग रखें। नेक्स्ट, मिल्क फीवर बीमारी, या दूध देने वाले गाय भैंसों में बहुत अधिक देखी जाती है। और इसके लक्षण की बात करें तो कमजोरी,

0: खड़े होने में परेशानी, शरीर का तापमान कम होना, और इसके बचाव की बात करें तो संतुलित आहार और मिनरल मिक्सर का मिश्रण ज़्यादा दें। भारत एक युवा देश भी है और युवाओं की दृष्टि जितनी सटीक होती है शायद ही उतना किसी और की ओर। हमारे जो युवा हैं वो अपने घर में पशुओं को उचित देखभाल कर सकते हैं। कुछ जिन एक बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है उनमें से कुछ ये भी हैं, पशुओं का सही समय पर टीका लगवाएं, पशुशाला सूखी और साफ रखें, साफ पानी दें, संतुलित आहार दें, पशुओं को गंदे तालाब या कीचड़ में ना जाने दें, बीमार पशुओं को तुरंत अलग करें और पशु विशेषज्ञ की सलाह लें। पशु स्वास्थ्य सेवा के लिए 1962 पशु चिकित्सा हेल्पलाइन से सहायता ले सकते हैं। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के माध्यम से पशुओं को घर तक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाती है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान, खुशहाल परिवार। धन्यवाद।
1: दोस्तों, ये थी वार्ता जिसका शीर्षक था पशुपालन और युवा जागरूकता, और वार्ताकार थे डॉक्टर नृपेंद्र सिंह। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वार्ता आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि आज का युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं है बल्कि नए अवसर पैदा करने वाला युवा है। ऐसे में पशुपालन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक मॉडर्न लाइवलीहुड ऑप्शन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल बनकर उभरता है, और रूरल इकोनॉमी का भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो हमें उम्मीद है कि ये वार्ता आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी लगी हो। तो ये वार्ता कैसी लगी आप हमको अपने फ़ोन नंबर 8004926250 पर बता सकते हैं। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए सेगमेंट्स और भी हैं, मगर उसके पहले लेते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
8: दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में, जो कि है प्रेरणा पुंज। जब भी भारत के वीर सपूतों की बात आती है तो एक नाम हम सब की जुबान पर ज़रूर आता है, और आज भी हम ऐसे ही वीर सपूत के जीवन के बारे में जानने जा रहे हैं, जिनका नाम सुनते ही साहस, देशभक्त और वीरता की छवि हमारे मन में उभर आती है। हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी कैप्टन विक्रम बत्रा की। उनका जीवन केवल एक सैनिक की कहानी नहीं, बल्कि कर्तव्य, नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी भारतीय के हृदय में उत्साह और गर्व का संचार करता है।
9: कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत उत्साहित, अनुशासित और आत्मविश्वासी थे। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेलकूद और राष्ट्रीय सेवा का भी विशेष लगाव था। उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व के गुण बचपन से ही दिखाई देते थे। वो हमेशा कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे देश का नाम ऊंचा हो, और यही सपना उन्हें भारतीय सेना तक ले आया।
8: उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। वो भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करके 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हुए। उनके वरिष्ठ अधिकारी और साथी सैनिक उनके आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और नेतृत्व क्षमता से हमेशा प्रभावित रहते थे। वो अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने वाले और हर चुनौती का डटकर सामना करने वाले अधिकारी थे।
9: डियर लिसनर्स, साल 1999 का कारगिल युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य

0: अभियानों में से एक माना जाता है। इसी युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी वीरता का ऐसा परिचय दिया जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। उन्हें त्रास क्षेत्र में अत्यंत कठिन और ऊंची पहाड़ियों पर स्थित महत्वपूर्ण चौकियों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कठिन मौसम, दुर्गम पहाड़ और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी उनके हौसले को डिगा नहीं सकी।
1: सबसे पहले उन्होंने 0.5140 पर अपना अद्भुत साहस का परिचय देते हुए अपने साथियों के साथ विजय प्राप्त की। इस सफलता के बाद जब उनसे रेडियो पर संदेश मांगा गया तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये दिल मांगे मोर। ये केवल एक वाक्य नहीं था बल्कि उनके आत्मविश्वास, साहस और राष्ट्र सेवा के जज्बे का प्रतीक बन गया।
0: लेकिन उनका मिशन यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें 0.4876 पर अभियान का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदारी मिली। उन्होंने अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते हुए स्वयं सबसे आगे रहकर नेतृत्व किया। वो मानते थे कि एक सच्चा नेता वही होता है जो कठिन समय में सबसे पहले आगे बढ़े, और इसी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें अपने सैनिकों के बीच बहुत ज़्यादा प्रिय बना दिया।
1: कारगिल युद्ध के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके साहस, नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया। ये सम्मान केवल उनके लिए नहीं बल्कि हर उस सैनिक के साहस का प्रतीक है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है।
0: दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल अपने लिए उपलब्धियां प्राप्त करना नहीं है बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना भी है। आज अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी लगन से करता है, कोई खिलाड़ी पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करता है, कोई डॉक्टर अपने पेशेंट्स की सेवा करता है और कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को ईमानदारी से पढ़ाता है, तो वो भी अपने अपने क्षेत्र में उसी कर्तव्य निष्ठा का पालन कर रहे हैं और उसका परिचय दे रहे हैं जो विक्रम बत्रा ने प्रस्तुत की थी।
1: आज के युवाओं के लिए उनका जीवन विशेष रूप से प्रेरणादायक है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास, साहस और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। वो हमेशा कहते थे कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना है।
0: तो दोस्तों, ये था हमारा प्रेरणापुंज सेगमेंट, और इसी के साथ आपको पता है कि हम आपके लिए यूथ के लिए इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स भी लाते हैं और अन्य प्रकार के। तो आज हम सेगमेंट लेके आए हैं करियर की बात, जिसमें हम आपसे बात करेंगे जॉब वैकेंसीज के बारे में। तो हमारी पहली वैकेंसी है
1: इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक रिक्रूटमेंट 2026, जिसकी अप्लाई डेट थी 6 जुलाई 2026। इसकी लास्ट डेट है 26 जुलाई। एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो ये 22 से 23 सितंबर के बीच में हो सकती है, और एज की बात करें तो 17.5 साल से 22 वर्ष तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं।
0: नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट। इसकी अप्लाइंग डेट शुरू हो चुकी है 30 जून से और लास्ट डेट है 20 जुलाई, और एज लिमिट है 18 से 40 इयर्स, और पोस्ट हैं 708। आप इन दोनों की ही ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उन्नति, हम लोग नियरली अपने प्रोग्राम के एंड में हैं, तो तुम्हें ऐसा लगता है ना कि हम अपने श्रोताओं को चाहते जाते एक गाना और सुना दें?
1: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, और प्रोग्राम के एंड में हम Q&A सेशन लेके आते हैं। कल का हमारा प्रश्न था,
1: ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, और इसका सही जवाब है 16 सितंबर।
0: आज का प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। आप अपने आंसर हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com पर भेज सकते हैं, और हमारे फोन नंबर 8004926250 पर। मिलेंगे आपसे फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव
1: और मुझे यानी उन्नति
0: को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
2: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक और या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उस सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ है वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि

0: कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडबरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडबरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडबरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। रात 10:00 बजे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे खेल दर्पण। पंचायत घर में शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई विष्णु राजा केसवर में लोकगीतों के अलावा RR सिंह से दिनेश कुमार यादव की बातचीत सुनेंगे। विषय होगा वर्षा ऋतु में पशुओं की देखभाल। साथ ही सुनिएगा रमेश चंद्र मिश्रा के स्वर में रामायण पाठ। संस्कृत कार्यक्रम शाम 7:31 पर, इसमें आप सुनेंगे राम मुनि पांडे की संस्कृत वार्ता गीता या उपदेशामृतम। रात 8:00 बजे सेहत की बात के अंतर्गत आप डॉक्टर राकेश राज से सुंदरम तिवारी की बातचीत सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा बदलते मौसम में त्वचा रोग का होम्योपैथिक द्वारा उपचार। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां आप सुन सकते हैं रात 9:30 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 7:45 बजे अमृता मालवीय के स्वर में गीत और भजन प्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत रात्रि 10:30 पर, इसमें आप विदुषी मुनीर खातून बेगम से ठुमरी और दादरा सुनेंगे। सबरस रात्रि 8:30 पर। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

और अब कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल रात 9:30 बजे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। चर्चा का विषय है कृषि जगत में 6:35 पर ग्रामीण भाई डॉक्टर कोमल यादव से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा बागवानी फसलों की व्यावसायिक खेती। स्वास्थ्य चर्चा रोज की तरह प्रातः 6:45 पर, इसमें आप डॉक्टर यशवंत कुमार की वार्ता सुनेंगे, पैरालिसिस में फिजियोथेरेपी से उपचार। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुनवाएंगे 7:00 बजे। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत 7:30 बजे आप सुनेंगे पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन। दिन में 12:15 पर उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन और रात्रि 10:30 पर पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। 10:05 पर सुनिएगा वॉइस ऑफ प्रयागराज के अंतर्गत नूपुर जोशी से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का दूसरा भाग। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। 10:30 बजे कलाकार होंगी आकांक्षा भारतीय, कमला प्रसाद पाल और शोभालाल एवं साथी। कमला प्रसाद पाल के स्वर में लोकगीत आप 6:30 बजे पंचायत घर में भी सुन सकते हैं। पंचायत घर में लोकगीतों के अलावा आप प्रभाकर त्रिपाठी से नीति वचन सुनेंगे। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। दिन में 15:15 गृहलक्ष्मी में बहने मेरा हुनर मेरा व्यवसाय के अंतर्गत अगरबत्ती मोमबत्ती या साबुन निर्माण के लघु उद्योग के बारे में जानकारी लेंगी। बोलते नगमे 7:31 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर अरुण गुलवाणी के स्वर में गीत और भजन सुनवाएंगे। अभी आप आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देश गान।

अभी आप समूह स्वर में देश गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्ज़ पर।

0: कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी

0: पंचो राम राम। कहो राधा बहनी, का हाल चाल बाटे?
1: हाल चाल तो ठीक है बा भैया, लागत है कि देव राजा आपके हम लोगन से नाराज आए लागत है।
0: हाँ, जितना अनुमानित वर्षा होवे कि चाहे अभिन तक तो ना ही भाई बेटे, लेकिन हम तो कहें कि भाई अबर जौन है करेजा है हम किसानन के, कि भैया अब बहुत देखा जाते है दऊ राजा की ओर, है ना?
1: आज तो लागत रहा थे
0: हाँ,
1: भैया।
0: धरती माई का अरदास करके जाना कि कुछ खाए पिए बदे पैदा कीन जाते है। बोला ये समय जौन है खरीफ के टाइम है ना,
1: हाँ
0: तो
1: भैया,
0: धान का फसल का बहुत महत्वपूर्ण टाइम बाटे, और इमें जाना कि सबसे महत्वपूर्ण होता है जल प्रबंधन, सिंचाई। धान
1: बिल्कुल
0: का फसल ज़्यादा पानी चाहत है, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सिंचाई का
1: भैया।
0: वैकल्पिक विधियन से हमारे सभी जल संरक्षण अगर भी कर लिया जाए तो बहुत
1: हाँ,
0: अच्छी बात बाटे।
1: देखा भैया, जौन अपन सबे के काम है खेती किसानी के, ओमे सबसे जरूरी है पानी।
0: जी
1: अगर हम सबे समय समय पर पानी के संरक्षण ना करब, जल संरक्षण ना करब, तो चाहे आज की स्थिति हो चाहे आने वाले अपन भविष्य हो, हम सबे के ओका सुरक्षित करे के जरूरत बाटे। तो अगर जौन भी किसान भैया लोग खेती किसानी करत हैं, अगर ओमा जौन है नई विधि से

0: वैकल्पिक विधि से सिंचाई करी है तो जौन पानी की मात्रा है कम पानी में अधिक उत्पादन हो सकत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा वही। और देखा न इनमें जाना जाना जाते ना, जैसे पुरानी परंपरागत जो सिंचाई की व्यवस्था है कि नहर है काट दिन गए
0: हाँ।
1: पूरा भर रहा बाटा एक तरह से, या
0: हाँ
1: ट्यूबवेल है सभी चला दिया गया तो कच्ची नाली में कहीं इधर फूटत है पानी कहीं उधर जात है और अंधाधुंध उकर दोहन होता है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: भैया
1: ये सब के रोके के खातिर और पानी के जोन बचत करे के खातिर फसल का पैदावार बढ़ावे के खातिर सूखा के स्थिति में अपने फसल के सुरक्षित रखे के खातिर भी जो सिंचाई का जो नई नवीन तकनीक है जैसे स्प्रिंकलर विधि है वो आधुनिक विधि है जाना की है ना। तो
0: बिल्कुल भैया
1: ये हिसाब से अगर किन जाए जौन से कि जल बचत हो जाए और ओकरे साथे साथे बहनी जो ड्रॉप इरिगेशन जौन की कहा जाता है कि इससे पानी की बचत की उत्तम विधि है, इसमें उर्वरक के साथ बूंद बूंद करके सीधे पौधा तक पानी पहुँचा था
0: पानी के जड़ तक
1: तो
0: पहुंच जाते
1: हाँ
0: हैं।
1: तो
0: हाँ
1: उर्वरक भी पहुँचा था और जल भी पहुँचा था तो पौधा के जड़
0: और
1: में नमी
0: भैया
1: रहते
0: ड्रिप
1: हैं। हाँ
0: सिंचाई की जो बात कहे ना ओमे एक फायदा और होते हैं, ओमे जो खर पतवार होते हैं वो कम उगत है। काहे से कि ना जैसे खर पतवार के उजल मिलत नहीं और
1: हाँ
0: सीधे सीधे पौधन के जड़ तक पौधन के पत्ती तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा राधा बहनी। एक बात और है ना कि
0: हाँ
1: अगर जमीन उबड़ खाबड़ है कहे का मतलब अगर समतल है तब तो कच्ची नाली से हमारे सभी सिंचाई प्रबंधन किया जा सकता है, लेकिन जहाँ जमीन उबड़ खाबड़ है
0: हाँ
1: रेतीली है कटाव ना हो सकत है समतलीकरण ना हो सकत है वहाँ पानी के बचावे के खातिर स्प्रिंकलर या फव्वारा सिंचाई जोने के कहा जाते हैं वो बहुत कारगर है, उसे हमारे सभी जल भी बचावा जाता है और पूरे खेत
0: और
1: के
0: भैया
1: सिंचाई
0: जो
1: भी।
0: फव्वारा विधि है तो बताएं तो हमका याद आएगा कि फव्वारा विधि तो अपन वर्षा के जल के तरह होते हैं,
1: बिल्कुल
0: जैसे
1: बिल्कुल
0: फव्वारा से जैसे वर्षा के जल पूरे खेतन में बराबर से पड़ा था वही तरह स्प्रिंकल विधि से भी हम अच्छे से सिंचाई कर सकी थी।
1: सही बात है। और तुम बहनी सही कहो कि जो ड्रिप सिंचाई है ना जो बूंद बूंद करे वाले तो मैं
0: हाँ
1: उकर फायदा ये है कि खरपतवार नहीं पड़े। एक
0: बिल्कुल
1: तीसर
0: बिल्कुल
1: बात आता है कि रेन पाइपलाइन जो ने की कहा जाता है ये एक छिड़काव प्रणाली है, मैं छोटे छिद्रन के पाइप में के माध्यम से पाइप का उपयोग किया जाता है और खेत में जैसन भी है भैया कि कृत्रिम बारिश भी एक ही कहा जाता
0: हाँ।
1: है ना, जैसन प्रभाव एक उत्पादन कर होता है छोटे छिद्र के माध्यम से विशेष पाइप का उपयोग करके हमारे सभी रेन पाइप सिंचाई भी अपने खेत में किया जा
0: एक
1: सकता है।
0: भैया रेन गन प्रणाली भी कहा जाता है और
1: हाँ
0: जो अपन फल सब्जी या है बागवानी में इस प्रणाली के ज्यादा उपयोग की जाता है।
1: हाँ ऐसे कह के हमारे सभी जोन जल के संरक्षित किया जाता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल भैया
1: दूसरा आवत है एक और बहुत महत्वपूर्ण है व्यवस्था विधि खेत तालाब योजना।
0: अच्छा
1: योजना ये है कि जोन ढलान वाली जगह है उनमें थोड़ा गड्ढा करके तालाब बनाए के पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर ये पानी का उपयोग सिंचाई के समय हम किसान भाई किन जाते हैं तो इससे पानी कम से कम उपयोग में आवत है, खराब नहीं होता है, व्यय अनावश्यक ना होता और साथे साथे पूरे सिंचाई पूरे फसल का सिंचाई भी ऐसे हो जाता
0: कितनी बढ़िया बात बताए दी कि पूरे खेत के सिंचाई हो सकते हैं। अब जब भैया जल संरक्षण के हम सब बात करी थी हैं कि सिंचाई के काम भी हो जाए और जल संरक्षण भी हो जाए,
1: है।
0: ओकरे लिए दो तीन बातें और खास है उमा
1: एक
0: ध्यान दे के
1: बात हम
0: जरूरत
1: राधा
0: है।
1: बहनी बीच में बात काटत थे माफी के साथ
0: नहीं
1: कि
0: भैया
1: देखा एक जो बहुत नवीन तकनीक है मल्चिंग विधि, इसमें पौधे के आसपास के मिट्टी के सूखी पत्ती पुआल या फिर प्लास्टिक के सीट से ढक दिन जाता है, इसमें मिट्टी की नमी बनी रहत है पानी जल्दी ना सूखत है। तो कहे का मतलब कि नमी के लगातार बनावा जाता है तो सिंचाई प्रबंधन की जरूरतें नहीं पड़त है।
0: काहे से कि सिंचाई की आवश्यकता जब कम हो जाए तो पानी ज्यादा से ज्यादा बची और उत्पादन तो अच्छा हो
1: हाँ
0: जाए।
1: अब का कहत रहे हो बहनी तू बतावा।
0: हम ई कहत रहे भैया अपन पंच भैयारन से कि जैसे ई सब तो विधि आए
1: जी
0: एकरे अलावा छोटी छोटी बातन पे अगर हम सभी ध्यान दे तो अपन जो खेती किसानी अच्छी हो जाए और जल संरक्षण हुई।
1: बिल्कुल
0: जैसे
1: बिल्कुल
0: कि जब हम खेत की मेड़बंदी करके देखा वर्षा के समय आए तो वर्षा के जो जल आए वो
1: हाँ
0: खेत के अंदर रोक दें
1: बिल्कुल
0: मेड़बंदी
1: बिल्कुल
0: करके तो उसे भी
1: हाँ
0: जल संरक्षण हो सकत है।
1: बिल्कुल
0: और खेतन का समतलीकरण करके पानी का समान वितरण करें। देखा
1: हाँ
0: भैया पंच भैया हरे छोट छोट बात है अगर हम सभी ध्यान दे ले तो

0: तो जैसे कहा जाता है कि देव राजा नहीं बरसत है, और
1: हाँ
0: जब बरसत है तो ऊपर ध्यान दे के मेड़ बनाए के समतलीकरण करके, और एक बात के ध्यान दे कि जो हम सुबह और शाम के सिंचाई होते ना वाष्पीकरण कम होते हैं,
1: बिल्कुल सही
0: तो ऊपर
1: बात।
0: ध्यान दे दें। तो इस तरह से छोटी छोटी बातन पे भी ध्यान दे के हम सब सिंचाई की जो विधि है उसमें जल संरक्षण कर सके थे।
1: बिल्कुल सही कहा बहनी। एक बात और है
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: देखा, ये जागरूकता बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल भैया।
1: जल का अपव्यय निश्चित रूप से हमारे सभी के और बल्कि आने वाली पीढ़ी के भी नुकसानकारी है।
0: बिल्कुल।
1: जौन भूमिगत जल है ओकर भी अंधाधुंध दोहन नहीं करे के चाहे। व्यवस्था ये रहे कि कम से कम भूमिगत जल का उपयोग उपभोग हो, आवे वाली पीढ़ी भी जौन से कि एकदम आश्वस्त रहे कि ओके पिए के भी पानी, ओकरे खेती किसानी के पानी, ओकरे पशुधन के पानी भी मिली। कहाँ से कि अगर पानी इस दुनिया में नहीं है तो जिंदगानी भी नहीं।
0: बिल्कुल भैया।
1: राधा बहनी बात बात कही होत रही, बोला हम जानब कि आज पंचायती में कौन कौन कार्यक्रम का पिटारा लिया बाटू तुम।
0: देखा बेटा भैया, जैसे अपन सभी के जौन भी कार्यक्रम है बिना लोकगीत के तो पूरा नहीं होते हैं। तो
1: हाँ।
0: आज विष्णु राजा जी के विकास गीत है, और ओकरे साथे साथे भैया आज मंगलवार के दिन बाटे, तो रमेश चंद्र मिश्रा से हम सभी रामायण पाठ सुना जाए। और जैसा कि भैया हम सभी वर्षा ऋतु की बात करी थी, तो वर्षा ऋतु में अपन सभे के ख्याल होते हैं, खेत खलिहान के ख्याल होते हैं, हाँ अपन लैकन गदेलन के, लेकिन ओकरे साथे साथे जो अपने साथ रहे वाले पशुअन हैं उनकर के देखभाल की जरूरत होते। तो वर्षा ऋतु में पशुअन की देखभाल पर एक विशेष बातचीत बाटे डॉक्टर आरआर सिंह से दिनेश कुमार यादव के बातचीत वो सुना जाए। लेकिन भैया जब तक पंचायती में ढोल नगाड़ा ना बाजे
1: तोहार बात हम तो आज लोग गीत है विष्णु राजा का विकास गीत है, आवा किसान भाइयों के साथ सुन लीजिए,
0: सुनवाए दें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: गौना ही हो गई और सनेसा भी हो गई।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और आज के दिन देखा रामायण पाठ के दिन है ना, तो रमेश चंद मिश्रा का रामायण पाठ बटे आवा किसान भाइयों के साथ हम रहू सभी सुन लीजिए।
4: बिल्कुल सुनवाए दे भैया।

महाराज, समादरणीय समस्त पंच महानुभाव, श्री रामचरितमानस में कई पात्रों को बड़भागी बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लेकिन श्री हनुमान जी जैसा बड़भागी कोई नहीं हुआ। जब हम श्री रामचरितमानस का गहराई से अध्ययन करते हैं,

तो तीनों पात्रों की महान छवि उभर करके सामने आती है। सबसे पहले भक्त शिरोमणि भक्ताग्रगण्य श्री भरतलाल जी, जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी एवं अंजनी नंदन प्रभंजनतने श्री हनुमंत लाल जी महाराज। पंचों श्री भरतलाल जी साक्षात प्रेम के मूर्ति हैं। कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज डिम डिम घोष करते हुए कहते हैं,

और जीवाचार्य लक्ष्मण जी त्याग के प्रतिमूर्ति माने गए हैं, परंतु श्री हनुमान जी महाराज तो मानो सेवा के प्रत्यक्ष अवतार ही हैं, क्योंकि सेवा यदि स्वार्थ से प्रेरित होकर की जाती है तो सेवा का सही स्वरूप कभी भी नहीं बन पाएगा, और जो सेवा निस्वार्थ रूप से की जाती है उसका धरातल बहुत ही विलक्षण होता है। तभी तो गोस्वामी जी ने बड़े ही प्रेम से बताते हुए कहा है कि जब बड़भागियों की चर्चा करने लगे तो श्री हनुमान जी महाराज का नाम सर्वोपरि रखा। एक समय आशुतोष भगवान शशिमौली भूत बावन विश्वनाथ जी महाराज कैलाश पर्वत के सुरम्य शिखर पर आसीन होकर श्री पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते भाव विभोर होकर चुप हो गए। श्री पार्वती जी ने अपने सुकोमल कर कमलों से भगवान शंकर जी महाराज के चरण कमल का स्पर्श किया। भगवान श्री शंकर जी महाराज का ध्यान टूटा और उन्होंने जैसे ही नेत्र खोला तो श्री पार्वती जी ने हाथ जोड़कर पूछा, स्वामी आप कथा कहते कहते अचानक चुप क्यों हो गए? भगवान भूत भावन श्री शंकर जी महाराज ने कहा कि देवी, मैं इन विचारों में खो गया था कि संसार में बड़भागी कौन है और अभागी कौन है। महारानी श्री पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, हे प्रभु, भोले बाबा, आपने बड़भागी और अभागी के विषय में क्या विचार किया? तो उस समय भगवान श्री शंकर जी महाराज ने कहा कि देवी, मैं तुम्हारे सामने दोनों की ही चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले अभागी के विषय में बतला रहा हूं। शिव जी कहते हैं,

जो लोग भगवान के नाम का आश्रय छोड़कर, साधु संतों की संगत छोड़कर, परमार्थ पथ त्याग कर विषय वासना में लिप्त रहते हैं, उन्हें ही अभागी कहा गया है। और अब देवी बड़भागी की चर्चा कर रहा हूँ। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं,

गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी में इतने लोगों को बड़भागी बताया है। ये भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं, देवी इतने लोग बड़भागी हैं। परंतु श्री हनुमान जी महाराज के विषय में कहते हैं,

ऋषिमुख पर्वत के समीप जब श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम से मिले, तो उस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने श्री हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा करके कहा, हनुमान सम

इस पर श्री हनुमान जी महाराज ने विनीत भाव से अनन्यता के विषय में प्रश्न किया, तो भगवान श्री राम जी ने कहा, सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अर्थात मैं सेवक हूँ और सचराचर हमारे स्वामी के रूप में दिखलाई दे रहा है, यही तो सच्ची अनन्यता की परिभाषा। और ये बात उस समय स्पष्ट हो जाती है जिस समय सुबेल शैल पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम विराजमान हैं और उस स्थान पर चार भक्त उपस्थित हैं और चारों की अलग अलग श्रेणी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते

अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन चार भक्तों में सुग्रीव, विभीषण, अंगद और हनुमान जी का नाम आता है। सुबेल शहर पर प्रभु श्री राम विश्राम की मुद्रा में हैं। सुग्रीव की गोद में भगवान का सर है। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, प्रभु

चरण कमल की सेवा में श्री अंगद जी और श्री हनुमान जी महाराज संलग्न हैं। तभी आकाश में चंद्रमा की शीतल किरणों से संसार जगमगा उठा और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने इन चारों भक्तों के सामने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और कहा कि चंद्रमा में अपरिमित सुंदरता है, ये आकाश रूपी गुफा से निकलता हुआ चंद्रमा रूपी सिंह तेज प्रताप बल का राशि है। आकाश में निर्भय विचरण करते हुए अंधकार रूपी हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर रात्रि रूपी सुंदरी के श्रृंगार के लिए तारा रूपी मुक्ताहल को बिखेर दिया है, परंतु

चंद्रमा की बीच में ये काले रंग का धब्बा कैसा है? तत्काल श्री सुग्रीव जी ने इसे पृथ्वी की परछाई बतलाया। तब विभीषण जी ने कहा कि चंद्रमा में राहु द्वारा प्रहार का दाग दिखाई दे रहा है। और अब अंगद जी की बारी आई तो अंगद ने कहा, को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हर लीन्हा, छिद्र

किंतु जब श्री हनुमान जी महाराज की बारी आई तो वे अत्यंत सहज भाव से बोले, कह हनुमंत सुनहु प्रभु।

नाथम। ये था श्री हनुमान जी महाराज का अपने स्वामी के प्रति पूर्ण अनन्य भाव। और जब हम उनकी सेवा पर दृष्टि डालते हैं तो अभिमान से रहित उनकी महान सेवा का दिग्दर्शन होता है। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज लंका से वापस लौट कर आए और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरे, तो उस समय भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को हृदय से लगाते हुए बड़ी बारीकी से पूछा, हनुमान कहूँ

भगवान ने पूछा, हनुमान तुमने लंका को कैसे जलाया, ये सारे कार्य तुमने कैसे किए? हनुमान जी महाराज मुस्कुराते हैं और बड़े भाव से कहते हैं, हाथ जोड़ करके अभिमान रहित वचन हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु

0: पर। अस्तु पंचों, श्री हनुमान जी महाराज के अद्भुत चरित्र से हम सबको ये महान प्रेरणा मिलती है कि यदि अभिमान और स्वार्थ से रहित सेवा के सूत्र को स्वीकार करें तो हम समाज सेवा का दायित्व भली भांति निभा सकते हैं और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी कर सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
1: हाँ देखा बहनी, रामायण पाठ रहा रमेश चंद्र मिश्रा का। हम कहें कि जौन भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे सभी के सच जीवन अच्छे आदर्श वाले रास्ता पर चले के बात बतावत हैं, एकता का बात बतावत हैं, आपसी सहकार का बात बतावत हैं। एक भैया सुने भी और गुना भी जाए।
2: बिल्कुल भैया, देखा हमारे ग्रंथ तो बतावते हैं सब बढ़िया बढ़िया बातें, और हम सब लागत है कि जितने भी पंच भैया सुनत हुई हैं

0: कहूँ ना कहीं अपन जीवन में एक उतारत हुई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और उतारे के चाहिए भी।
0: बिल्कुल भैया, और देखा हम सब बात करत रहे वर्षा ऋतु के, बरसात आई गई है तो अपन जैसे हम सब सिंचाई के साधन के काम कर रहे थे, अब सब घरे के हर काम हमार मौसम के अनुसार होते हैं, तो काहे नहीं अपन पशुअन के भी जौन रक्षा है सुरक्षा है मौसम के अनुसार।
1: हाँ हाँ, उनका देखभाल भी बरखा में ज़्यादा आवश्यक होता है, काहे से कि गर्मी रहत है तो शरीर पर परजीवी ज़्यादा आक्रमण करत है। अगर साफ सफाई ना है, पशुशाला आपके साफ ना है, पशुओं का नाद साफ ना है, तो संक्रामक रोग के बढ़े का संभावना भी हो जाते हैं।
0: बिल्कुल भैया, तो आज जो एक बातचीत बतावत रहे हम,
1: हाँ,
0: तो आज यही पर बातचीत है वर्षा ऋतु में पशुओं की देखभाल, डॉक्टर आरआर सिंह से दिनेश कुमार यादव भैया के बातचीत बाटे, तो हूँ सुना पंच भैया भी सुने।
1: सुनवा दा बहनी।
2: किसान भाईरे, आप सब खेती किसानी के साथे साथे पशुपालन भी कहे बाटन, और पशुअन से अच्छा उत्पादन लेवे बदे, उनसे अच्छा लाभ लेवे बदे, उनका मौसम के हिसाब से विशेष देखभाल की जरूरत पड़त है, ताकि वो स्वस्थ रहें, वो बढ़िया उत्पादन दें। खास तौर पे जवन अपन दुधारू पशु हैं उनके तो भाई विशेष रूप से देखभाल की जरूरत होत है। तो जवन ई वर्षा ऋतु में पशुओं की देखभाल, यही विषय पे आज विस्तार से जानकारी देवे बदे आज अपने कार्यक्रम में डॉक्टर आर आर सिंह जी हैं। आप पशु पालन विभाग से बाटें, आप जौन है के पशु के जानकार मनी हैं। डॉक्टर साहब, आपके कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहब कि जौन वर्षा ऋतु बाटे में पशुओं के देखभाल के कौन तरह से जरूरत पड़त है।
3: किसान भाइयों, कृषि के साथ साथ पशुपालन बहुत ही अहम भूमिका रखता है और ये आमदनी का जरिया है। इसमें पशु हमारे जो हैं स्वस्थ रहेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, उनकी प्रजनन क्षमता भी अच्छी रहेगी और उसके साथ साथ उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी आपको।
2: बिल्कुल।
3: तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि पहला बिंदु तो ये है कि जब पहला बरसात होता है तो अपने पशुओं को कि खुला में मत छोड़ें। पहली बरसात से ऐसा होता है कि जब ऊपर धूल होती है वो शरीर पर आती है और बहुत से जीवाणु आते हैं और इससे जो रोगों की रोकने की क्षमता होती है वो पशुओं में कम होती है। तो इसमें बहुत ध्यान रखें कि पहला पानी किसान भाई अपने पशुओं को मत पड़ने दें, यानी भीगने मत दें।
2: मतलब जो ना पहली बारिश होता है तो पशु के जो उनके खुले में ना बांधे, हाँ। नहीं तो जो उन वर्षा होता है उसके माध्यम से जो उन ऊपर भाई धूल के कण है या अन्य कौनो जो है के प्रदूषित गैस है, तो वो जो है के पानी के साथ आए, अगर पशु शरीर पर पड़ जाए तो उनका रोग बेरामी होने की संभावना बढ़ जाती है। और देखें एक बात और, जो पशु पालक भाई बाटे जो है के उनका जो उनके खान पान के भी वर्षा में ध्यान देख पड़त है, तो खान पान के स्तर पर का ध्यान दें।
3: तो अभी इसके साथ में अभी खान पान तो बहुत ही जरूरी है और हमारे जो पशुपालक हैं जो गर्मी के मौसम में हरा चारा नहीं मिलता है, जब बरसात शुरू होती है तो उसमें हरा चारा का प्रबंध करते हैं
2: जी,
3: क्योंकि प्रबंध करने से उनको अच्छी जो खुराक मिलती है तो अच्छा उत्पादन मिलेगा उसको।
2: बिल्कुल।
3: जो चरी बोते हैं, कड़वी बोते हैं और लोबिया बोते हैं, ये चीजें उनको देते हैं। लेकिन इसके जरूरी साथ में ये है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो वो घातक होती हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए।
2: बिल्कुल, हम कहे डॉक्टर साहब, जैसे बहुत से पशु बीमारी हैं, कुछ जीवाणु जनित बीमारी होते हैं, कुछ विषाणु जनित बीमारी होती हैं, तो एक बारे में थोड़ा सा बतावें कि कौन कौन से वर्षा ऋतु में बीमारी होती हैं और एक कैसे इसे बचा जा सके।
3: हमारे किसान भाई ये ध्यान दें कि बहुत ही घातक बीमारियां पशुओं में फैल जाती हैं जो कुछ जीवाणु से होती हैं, जैसे एक देखा होगा गला घोंटू। गला घोंटू बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये गाय बैल भैंस बकरी भेड़ सब में फैल जाती है और ये बरसात का जब मौसम आता है, जब पहली बरसात होती है उसके बाद ही ये बीमारी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि अपने पशुओं को ये बीमारी बचाने के लिए बहुत ही ध्यान रखें। इसमें बीमारी हो जाती है तो बहुत ही खतरनाक होता है,
2: एकल लक्षण का
3: उसमें जो बीमारी में बुखार पशुओं में जाता है, 105-107 डिग्री फारेनहाइट बोलते हैं उसको, ठीक है, आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी गर्दन के पास सूजन आ जाती है, उस सूजन से पशु सांस लेने में दिक्कत करता है और घुरघुराहट की आवाज आती है, तो ये पशु इससे मृत्यु आती है, पशुओं की मृत्यु आती है। तो इसे बचाने के लिए हमको जरूरी है कि पशु जो है उसका टीकाकरण करवा लें और टीकाकरण करने के लिए कम से कम 21 दिन का समय लगता है, जो उसके अंदर रोग रोकने क्षमता बनती है 21 दिन बनती है। तो बरसात आने के पहले, जैसे 28 जून बरसात आती है उसके पहले करवा लें, जून से अपना टीकाकरण करवा लें जिससे कि बीमारी न फैलने पावे, और नहीं तो ये बीमारी फैल गई तो पशु मर जाते हैं ज्यादातर। तो इसके लिए

0: बीमारी फैलती है तो निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं
1: बिल्कुल
0: और वहां से दवा भी संभावना करने की बढ़ जाती है और पशु बच सकता है।
1: एक बीमारी और बहुतायत में देखा जाता है पशुओं में कि लंगड़ी बीमारी,
0: हाँ
1: ये कैसे होता है, ऐसे कैसे किसान भाई पशुओं को बचावें?
0: किसान भाई, लंगड़ी बीमारी जो होते है उसको लंगड़िया बोलते हैं, इसमें पशु लंगड़ाता है, इसमें भी इसी समय फैलती है बीमारी, जबकि ये गला घोंटू वाली फैलती है, इसी के आसपास फैलती है। तो इसमें ये बीमारी आता पशुओं, वैसे पशु फैलती है जो पशु स्वस्थ होते हैं और जवान होते हैं, जैसे बछड़ों में, बछड़ियों में, परिया परियों में ज्यादा फैलती है, क्योंकि मांसल होते हैं, ये जीवाणु मांस में जाकर के प्रभावित करता है और वहां पहुंच करके अपना जो है वहां पर पहुंच करके वहां उसको नुकसान करता है और वहां पर कुछ ऐसे पदार्थ डालता है जो कि मांस के नुकसानदायक होते हैं, पशु की बीमारी हो जाती है और लंगड़ता है। इसके साथ साथ पशुओं में इसमें भी तापमान शरीर का बढ़ जाता है, अधिकतर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है और जो सूजन आती है पिछले पैर में ज्यादा आती है और वहां जब पैर हाथ रखेंगे तो कड़कड़ाहट की आवाज आती है, उसके अंदर हवा भर जाती है, तो इसका मतलब पशु के अंदर बीमारी ये हो गई है। तो ऐसे बीमारी ना आने पावे, चूंकि इसमें पशु मर जाते हैं, ज्यादातर मरते हैं, यानी 90% तक, तो इसके लिए बचाव के लिए पशु को टीका लगवाएं समय अनुसार, जिससे कि उसको बीमारी ये न होने पावे। और ये जो गला घोंटू का टीका लगता है उसी समय इसका भी टीका लगता है।
1: बिल्कुल
0: है?
1: जैसे बरसात के मौसम में समय चला बरसात शुरू हुई बाटे, तो हम कहे जौन है के किसान भाई हरेन के जौन पशु बाटे न हमें बीमारी हो जाते खुरपका मुंहपका, जौन खुरपका मुंहपका बीमारी होत है, ऐसे का सावधानी बरते कि न हो और इसे कैसे बचे?
0: किसान भाई, जो खुरपका मुंहपका की बीमारी है ये दो मौसम फैलती है, एक तो गर्मी का मौसम होता है, एक ठंडी का मौसम होता है, उधर दिसंबर जनवरी में फैलती है, इधर मई जून में फैलती है। तो किसान भाई इसके लिए बहुत ही होशियार रहें, क्योंकि इसमें ये बीमारी विषाणु से होती है और इसमें पशु के बीमारी होने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैर में छाले पड़ते हैं, पशु लंगड़ाता है और चारा नहीं खा पाता है, इसके साथ साथ प्रजनन क्षमता और दूध देने क्षमता भी कम हो जाती है। तो जो किसान भाई हैं इसको ध्यान दें कि बीमारी होने ही न पावे, क्योंकि पशु मरता तो नहीं है लेकिन मरे के समान होता है, उसका उत्पादन भी नहीं होगा, ये बैल है वो चल भी नहीं पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो किसान हैं वो ध्यान रखें कि ये बीमारी न होने पावे, उसका भी टीका आता है, वो टीके अवश्य लगवा लें जिससे कि बीमारी न होने पावे। साल में 2 बार टीका लगता है और कुछ टीके ऐसे आते हैं साल में 1 बार लगते हैं, तो ये मौसम लगवा लेंगे तो बीमारी ये नहीं होने पाएगी।
1: देखा जाता है कि कमो कमो जो है कि पशु के शरीर पर चकत्ता टाइप पर जाता है, जेका भाई मनुष्य में कमो देखा जाता है चेचक कहते हैं, तो ये काहे होते हैं, इसे कैसे बचे?
0: ये बीमारी जो है ये पशुओं में ज्यादातर वहां फैलती है जहां पर बाल नहीं होते हैं, जैसे थन है, थन की जगह में ज्यादा फैलती है।
1: जी जी।
0: तो ये बीमारी भी चेचक बीमारी होती है, ये बीमारी जब फैलती है तो वहां पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और दाने पड़ने से उसकी दुहान करने में दिक्कत होता है, जैसे पशु होते हैं।
1: जी जी।
0: तो उसके लिए हमें ध्यान रखें, बीमारी स्वतः कंट्रोल होगी, उसका भी टीका आता है, लेकिन एक बीमारी हो गई है तो उसके लिए हम कुछ एंटीसेप्टिक दवाएं जो है वो अपना लगाते हैं, जिससे कि वो आगे फैलने न पावे, और जो पशु को हो जाता है उस पशु को अलग रखें, दुहान में मिलाएं मत पशुओं को, एक को मिलाएंगे तो दूसरे को भी ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल। दुधारू पशु में एक सबसे प्रमुख बीमारी देखा जाता है कि थनैला रोग हो जाता है, तो ये कैसे होता है, इससे कैसे किसान भाई अपने पशुओं को बचावें?
0: हमारे किसान भाई गाय भैंस पालते हैं इसलिए कि उनको आमदनी हो, आमदनी कैसे होगी जब उनको दूध मिलेगा और पशु स्वस्थ होगा, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में जब पशु बैठता है तो देखते होंगे कि उसके जो थन जो होते हैं उसमें से दूध निकला करता है, जहां सफाई नहीं होती है, जहां कीचड़ होता है, पशु वहां बैठ जाता है और उसके थन के माध्यम से वहां पर गंदगी जो है वो अंदर पहुंच जाती है और धीरे धीरे जो जीवाणु हैं वहां पर वृद्धि करते हैं और ऐसे में धीरे धीरे थन जो है वो कड़ा जाता है, कभी गर्म हो जाएगा, बाद में कड़ा हो जाएगा, वहां से दूध आना बंद हो जाएगा, एक थन खराब हो गया तो 1/4 उसका नुकसान हो गया, 2 थन चले गए आधा नुकसान हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई अपने गौशाला को स्वस्थ रखें, साफ रखें, स्वच्छता रखें, पशु का थन धो दें और दुहने के बाद भी उसके लिए पानी से धो करके और कोई एंटीसेप्टिक दवाएं हैं उस पर लगा दें, जिससे कि पशु को ये रोग

0: न होने पावे।
1: बिल्कुल।
0: यदि होता है तो उसके लिए इलाज ही संभव है, और भी वो कठिन होता है। यदि थन खराब हो गया तो बीमारी दोबारा जो है वो ठीक होने में बहुत ही दिक्कत करती है।
1: बिल्कुल कहे मतलब भाई, अगर पशु उनका साफ सुथरा रखें, सावधानी बरतें कि थनार संबंधी जो बीमारी भी न होए। एक जो सबसे प्रमुख बीमारी पशु में और दिखाई देते है कि अंत परजीवी बाह परजीवी, तो ये
0: हाँ,
1: काहे होता है, ऐसे किसान भरे पशु कैसे बचाओ?
0: ये गर्मियों के मौसम से शुरू होता है और बरसात के मौसम में ज़्यादा पशु के लिए बीमारियां फैलती हैं। जैसे किलनी देखा होगा आपने, किलनियां क्या होती हैं, ये बहुत ही नुकसानदायक हैं। ये मैं उदाहरण लेते हैं, देखा होगा कि पशु पेशाब करता तो लाल पेशाब करता है,
1: जी
0: ये किलनी की वजह से होता है। किलनियां पशुओं के शरीर पर होती हैं और अंडे रखने के लिए दीवार पर जाती हैं।
1: जी
0: जो दीवार पर जाती हैं वहां से लार्वा निकलते हैं और फिर पशु पर आते हैं, तो दीवार से पशु के ऊपर जो है वो चक्र चलता रहता है।
1: जी
0: ठीक है, तो किसान भाई ध्यान रखें अपनी गौशाला को ऐसे, जैसे उनका लिए यहाँ पर एंटीसेप्टिक दवाएं तो होती हैं, कीटाणुनाशक दवाएं वहां पर उपयोग करें। जैसे
1: बिल्कुल।
0: चूने का छिड़काव है, ठीक है, वहां कर देंगे दीवारों पर, क्रमशः हफ्ते में करते रहेंगे।

0: जाती हैं, वहां से लार्वा निकलते हैं और फिर पशु पर आते हैं। तो दीवार से पशु के ऊपर जो है वो चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो किसान भाई ध्यान रखें अपनी गौशाला को ऐसे, जैसे उनका लिए यहाँ पर एंटीसेप्टिक दवाएं तो होती हैं, कीटाणुनाशक दवाएं वहां पर उपयोग करें, जैसे चूने का छिड़काव है, ठीक है, वहां कर देंगे दीवारों पर, क्रमशः हफ्ते में करते रहेंगे तो उसके जो है वहां पर लार्वा मर जाएंगे और यहां पर नहीं आएंगे। और इसके साथ पशु के शरीर की सफाई भी रखें, धुलाई करें, ठीक है, और कुछ दवाएं आती हैं वो डॉक्टर से परामर्श ले लें, वो लगाते रहें समय समय पर तो दूर हो जाए।
1: बिल्कुल भाई, साफ सफाई के साथ साथ उनका संतुलित आहार और रोग से बचाव और टीकाकरण किसान भाई पशुओं को करें तो निश्चित रूप से उनके पशु स्वस्थ रहें। डॉक्टर आर आर सिंह जी आप आएन और वर्षा ऋतु में पशुओं की देखभाल पे बड़ी अच्छी जानकारी दें, हम कहीं सब जानकारी देवे बदे आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ देखा राधा बहनी, पशुपालक भैयन की खातिर बहुत बढ़िया बात रही कि ये समय में जो बरखा चल रही बात है, हमें अपने पशु का कैसे देखभाल की जाए, कैसे साफ सफाई रहे, ये सब बातन के ध्यान रखे अपने पशुधन के हमरे सभी स्वस्थ रखा जा सकत।
3: बिल्कुल भैया, देखा जानकारी जौन होते हैं वही सुझाव दे के ओके साथ सुरक्षा की जरूरत पड़े थे। तो अगर जानकारी और चाहत हुई है, अगर हमारे पंच भैया आ रहे कौनो तरह के, जैसे वर्षा ऋतु से धान के रोपाई गुड़ाई से ले कौनो विशेषज्ञ भैया से बातचीत चाहत हो तो अपन सुझाव अपन प्रतिक्रिया हमारे सभी के व्हाट्सएप नंबर आए और पे दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आए 800-49-2650। नंबर एक बार और नोट कर ले, 800-49-2650।
2: बनी देखा हो समय समय से सब ठीक लागत है, कल फिर पंचायती में किसान भाइयों से भेंट हुई, विदा लीन जाए तो पंचों
3: राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

आइए हम आपको जानकारी दे दें आज के कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में आप राम मुनि पांडे की वार्ता सुनेंगे, श्रीमद् भागवत गीता या उपदेशामृतम। रात 8 बजे हम प्रसारित करेंगे सेहत की बात के अंतर्गत डॉक्टर राकेश राज से सुंदरम तिवारी की बातचीत। बातचीत का विषय होगा बदलते मौसम में त्वचा का होम्योपैथिक द्वारा उपचार। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां आप सुन सकते हैं रात 9:30 बजे। तो ये थे आज के कुछ विशेष कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में 3 गुना हुई प्रदेश के आम नागरिक की आय, 9 लाख लोगों को मिला रोजगार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को गति देगा वन नेशन वन इलेक्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और आषाढ़ मास की अमावस्या पर चित्रकूट में उमड़ी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर की कामदगिरी की परिक्रमा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। आज लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2017 से अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के कारण देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। आज प्रदेश गन्ना, चीनी और एथेनॉल उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इन 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की।
1: हमने 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को प्रदेश के अंदर 3 गुना से अधिक उनकी उपस्थिति, देश के अंदर शासकीय सेवा हो या फिर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कार्रवाई हुई है उनमें उनकी उपस्थिति वहां हुई है। ये आंकड़े वह है जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान के उस संकट से उभारने में मदद की।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी व्यवस्था होगी जो समय, पैसों और संसाधनों की बचत करेगी। बैठक में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच और राष्ट्रहित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है जिसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी और विकसित भारत के संकल्प को गति मिलेगी। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराना देश हित में है, इससे बार बार चुनाव पर होने वाला पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम होगा।

0: और जनता को भी सुविधा होगी।
1: 1952 से लेकर के 1967 तक देश के सभी पार्लियामेंट्री चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। एक साथ चुनाव होने के नाते समय की बहुत बड़ी बचत हुई और आर्थिक रूप से भी जो आज भारी दबाव पड़ रहा है बार बार के चुनाव से, उससे उस समय राहत थी हमारे देश के भीतर। वन नेशन वन इलेक्शन का, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ हों तो देश की विकास की गति तेजी से बढ़ेगी और आर्थिक गति भी उससे बढ़ सकती है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 30वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस समारोह में 279 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। इस दौरान उत्कृष्ट शिक्षकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों और स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नारायण प्रसाद को गवर्नर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाएं चला रही है जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने R3 भाषा मूल्यांकन का फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसके तहत तीसरी भाषा यानी R3 का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर की आंतरिक परीक्षाओं के जरिए किया जाएगा। इस साल R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि जो छात्र R3 पास नहीं कर पाते हैं उन्हें भी 10वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन 10वीं कक्षा में रहते हुए उनके लिए इसे पास करना आवश्यक होगा। CBSE ने स्पष्ट किया कि 8वीं कक्षा वाला 3 भाषाओं का कॉम्बिनेशन 9वीं कक्षा में भी जारी रहेगा और इनमें से किसी एक को R3 के तौर पर चुना जाएगा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एंटी करप्शन कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। पुलिस की टीम कल सुबह इनकी कस्टडी लेकर पूछताछ करेगी। वहीं आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर आज अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस चिपका दिया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण में OSD महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 3 जुलाई को जारी नोटिस के बावजूद लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा की ओर से कोई पत्रावली या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अब ADA ने उन्हें 15 जुलाई तक मानचित्र और अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि निर्धारित समय तक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
2: इनकी पत्नी सुप्रिया जी हैं, उनके द्वारा एक निर्माण किया गया है और उस निर्माण का नक्शा हमारे यहाँ से स्वीकृत नहीं है, इसीलिए जब चालानी कार्रवाई प्रस्तुत की गई JEE के द्वारा तो उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई। पहली नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हुई, इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई जिसमें 15 तारीख नियत। अब ये प्रोसीडिंग है जो नगर नियोजन अधिनियम 1973 है उसकी प्रोसीडिंग अगली कार्रवाई की जाएगी।
0: सुप्रीम कोर्ट की पहल पर वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के उद्देश्य से आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दोनों पक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं के साथ संबंधित पक्षकार भी मौजूद रहे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद भी किसी प्रकार की सहमति नहीं बन सकी और वार्ता बेनतीजा रही। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी विवाद का अंतिम समाधान न्यायालय के निर्णय से ही संभव है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चित्रकूट में आज आषाढ़ मास के अमावस्या मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी की परिक्रमा की। पेश एक रिपोर्ट।
3: आषाढ़ मास की अमावस्या के अवसर पर आज सुबह से ही चित्रकूट में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और भगवान मदगजेंद्रनाथ और कामतानाथ मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों और मठों में जाकर देवी देवताओं के दर्शन किए। कामदगिर पर्वत की परिक्रमा का सिलसिला भी पूरे दिन जारी रहा। भक्तों की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र और आसपास के इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरों की मदद से की जा रही है। रामघाट, निर्मोही अखाड़ा, टेम्पो स्टैंड, UPT तिराहा, चित्रा गोकुलपुर परिक्रमा मार्ग तथा मेला क्षेत्र के अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 में हितधारकों को सुविधाएं देने के लिए इसके प्राविधानों में संशोधन किए हैं। पेश एक रिपोर्ट।
4: SOP संशोधन के अनुसार अब होमस्टे प्रतिष्ठान में कम से कम एक और अधिकतम 8 कमरे पंजीकृत कराए जा सकते हैं।

0: 9 कमरों से अधिक भवन वाली इकाइयां इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 16 बिस्तरों वाली डॉर्मेट्री भी इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र इकाई मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑटो रिन्यूअल पंजीकरण समाप्ति की तिथि से 3 माह पहले पोर्टल पर कराया जा सकेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी प्राधिकरण और विभागों को ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीनें चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। आज इस संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और सतत परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों के साझा प्रयासों से प्रदेश में आधुनिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जाए। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस दौरान उमस भरी गर्मी की स्थितियां बने रहने का भी अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में 3 गुना हुई प्रदेश के आम नागरिक की आय, 9 लाख लोगों को मिला रोजगार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को गति देगा वन नेशन वन इलेक्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और आषाढ़ मास की अमावस्या पर चित्रकूट में उमड़ी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर की कामतगिरी की परिक्रमा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं राम मुनि पांडे की वार्ता, श्रीमद् भागवत गीताया उपदेशामृतम। आइए सुनते हैं।
3: श्रीमद् भगवत गीताया उपदेशामृतम। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवतः दिव्या वाणी अस्ति। अस्याः महिमा अपरिमितः अपारस्यास्ति। गीता सर्वशास्त्रमयी अस्ति। महाभारतस्य भीष्म पर्वणि लिखितमस्ति सर्वशास्त्रमयी गीता। इयं भगवतः पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रितास्ति। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रिता। चराचरात्मकस्य च लोकस्य कर्ता भगवान् श्रीकृष्णो गीताया अपि रचयिता अस्ति। सर्वेषां जनानां कृते धर्माधर्म ज्ञानाज्ञान विवेक विचारः श्रीकृष्णेन गीतायां कृतोऽस्ति। भगवतः गुणमहिम्नः वर्णनं गीताशास्त्रे कृतमस्ति। गीताया उपदेशामृतेन प्राणिनां सकलकामना सिद्धिः संजायते। महाभारतस्य युद्धे अर्जुनं विषण्णहृदयं दृष्ट्वा तस्य बोधनार्थं यः उपदेशः भगवता कृष्णेन प्रदत्तः स एव भगवद्गीता इति नामना प्रसिद्धोऽस्ति। गीतायां भगवता कृष्णेन प्रायः सर्वस्य मनुष्यस्य च आवश्यकं कर्तव्यं प्रतिपादितमस्ति। सर्वासाम् उपनिषदां सारः अस्मिन् ग्रन्थे मनोरमया शैल्या साहुतरं विविच्यते। उपनिषत्सु ये भावाः केवलं दार्शनिकपद्धत्या निरशैल्या च वर्णिताः सन्ति ते एव भावाः भावप्रकाशनशैल्या विशदं संक्षेपतः प्रस्तूयन्ते। गीता न केवलम् उपनिषदाम् अपि तु सकलस्यापि पूर्ववर्तिनः वाङ्मयस्य सारम् उपस्थापयति। अतैव गीता लोकप्रिया विश्वप्रिया चाभवत्। उक्तञ्च सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। अस्याः भाषा तादृशी मनोरमा प्रसादगुणोपेता माधुर्यपूर्णा चास्ति यत् स्वल्पशिक्षितोऽपि मानवः

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं अमृता मालवीय। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में मीराबाई का भजन।

अभी आप अमृता मालवीय के स्वर में ये भक्ति रचना सुन रहे थे। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं अमृता मालवीय। आइए सुनते हैं अंत में इनके स्वर में मीराबाई की ये रचना।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अमृता मालवी के स्वर में गीत और भजन। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सेहत की बात। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर राकेश राज से सुंदरम तिवारी की बातचीत। विषय है बदलते मौसम में त्वचा रोग का होम्योपैथिक द्वारा उपचार।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सुंदरम तिवारी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात। श्रोताओं, बदलते मौसम में हमारे शरीर का जो अंग सर्वाधिक और सबसे पहले प्रभावित होता है वह है त्वचा। तो बदलते मौसम में त्वचा में होने वाले रोग और उसका होम्योपैथिक उपचार, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश राज। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। जब कभी भी मौसम बदलता है, खासकर बरसात के मौसम में, तो हमारी त्वचा पहला पार्ट होती है जो बदलते मौसम की मार को झेलती है या उससे अफेक्ट होती है।
2: जी,
1: ऐसे में इस मौसम में जो सूक्ष्माणु हैं, जो जीवाणु हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और त्वचा पर नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। तो ऐसे में एक आम आदमी ये बात कैसे पहचाने कि वो त्वचा रोग से ग्रसित हो गया है? लक्षण क्या हैं त्वचा रोग के?
2: देखिए सर, ऐसा है कि जब बरसात का मौसम आता है तो उसके साथ आती है नमी, जो कि पैदा करती है बहुत सारे कीटाणु, मोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, और फंगस इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से पेशेंट्स को परेशानियां होती हैं कि अगर बहुत नमी वाले एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे स्किन में इचिंग शुरू हो जाती है, इरप्शंस आ जाते हैं, कह सकते हैं कि लाली पड़ जाती है, कुछ दाने पड़ जाते हैं, इस प्रकार से पेशेंट परेशान होते हैं। लेकिन इसका कारण है बेसिक कि वो नमी के एरिया में रह रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि पहले हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो वातावरण है, अगर हमारे घर में नमी है तो उसको हम कैसे दूर करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि अगर हम जैसे ही धूप निकले तो अपने खिड़की दरवाज़ों को खोल दें, थोड़ी सी एरेशन हो वहाँ पे, क्रॉस वेंटिलेशन हो, और धूप से नमी का जो असर है वो घट सके। फिर उसके अलावा अगर हम जिस कमरे में कारपेट वगैरह लगे हुए हैं उसमें कि बहुत सारे कीटाणु घर कर लेते हैं नमी के टाइम में, उनको हटाएँ ताकि जो है वो वातावरण जो है नमी में ना रहे, सूख जाए। और उसके साथ साथ फिर आगे उपचार भी हैं बहुत सारे।
1: डॉक्टर साहब, इस तरह का जब मौसम होता है, खासकर उमस बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और वातावरण में जो मॉइस्चर है वो भी ज़्यादा होता है, ऐसे में शरीर के जो ज़्यादा हिस्से प्रभावित होते हैं, जैसे ग्रोइन एरिया है या अंडर आर्म एरिया है, तो इन हिस्सों को सूखा रखने के लिए या इन हिस्सों में जो इन्फेक्शन हुआ है उसको दूर करने के लिए किस तरह के उपाय एक आम आदमी को करने चाहिए?
2: देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि व्यक्ति ऐसे कपड़े पहने जिसमें कि कॉटन हो और उसमें से हवा पास हो सके, और बहुत टाइट क्लोथ्स ना पहने। खासकर बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होता है, अगर बिल्कुल उनको हवादार कपड़े पहनाए जाएं और टाइट ना हो तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि स्वेटिंग कम होती है और जो फोल्ड्स ऑफ स्किन है दैट इज नेचुरल कि वहाँ स्वेटिंग ज़्यादा होगी। जैसे अंडर आर्म्स हैं, ग्रोइंस हैं, जहाँ पे कि त्वचा एक दूसरे के नज़दीक आ रही है बहुत, तो वहाँ पे इचिंग होना एक नॉर्मल सी बात है अगर स्वेटिंग होगी तो उसके लिए हमारे पास दवाएं भी हैं, और उसके लिए एक हमारे पास पाउडर है जिसको नाम बोलते हैं कैलेंड्यू।

0: अमला पाउडर, ये होम्योपैथिक पाउडर है और इसको इस्तेमाल खूब अच्छे से किया जा सकता है ताकि उस एरिया को ड्राई रखा जाए, और ख़ासकर सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले अगर इसको करेंगे तो वो एरिया कम मॉइस्ट होगा।
1: ये तो एक बात हुई सावधानी की। अगर एक आदमी अफेक्ट हो ही जाता है त्वचा रोग से,
0: जी,
1: तो जैसा कि आपने कहा कि फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है,
0: जी
1: तो होम्योपैथी में पहली बात तो इनका उपचार आप कैसे करते हैं,
0: जी
1: और दूसरा प्रश्न इसी के साथ ही ये कि इन्फेक्शन के लिए अलग और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अलग दवाएं होम्योपैथी में भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं?
0: जी देखिए, जो फंगल इन्फेक्शन है, इसमें जो फंगस इन्वेड कर रहा है बॉडी को, हमें ये भी देखना होता है कि कौन व्यक्ति है जिसको कि ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर उस व्यक्ति को थोड़ा सा समझेंगे तो उसकी फंगल इन्फेक्शन को ज़्यादा आसानी से ठीक किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन जो है वो खुजली पैदा करता है, और ऐसे समय पैदा करता है जब वो जो है कपड़े उतारता है, रात को आके शाम को आके जब वो कपड़े बदलता है तब वो बहुत इचिंग पैदा होती है। तो उसके लिए दूसरी दवाई है र्यूमेक्स क्रिस्पस। ये एक ऐसी दवा है जो कि खास उस समय इस्तेमाल की जाती है जब व्यक्ति को ये सिम्टम हो, वो अनड्रेसिंग करता है और इचिंग शुरू हो जाती है। ये बहुत कॉमन है फंगल इन्फेक्शन। लेकिन इसी जगह पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका मतलब कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन वहाँ पर आ गया है जिसकी वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया जब है तो वहाँ पर इचिंग हो रही है और वहाँ पर पस भी आ गया है, तो ऐसे केस में बैसिलिनम नाम की एक दवा है जिसको कि इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस काम के लिए बहुत अच्छी होती है।
1: इचिंग अगर हो रही है और वहाँ पे कहते हैं नमी टाइप की है, वेटनेस है वहाँ पे,
0: जी
1: तो इसके लिए अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन होते हैं?
0: बिल्कुल, अगर वो जो इचिंग हो रही है वहाँ से कोई डिस्चार्ज ऐसा है जो बहुत स्टिकी है, ग्रेफाइटिस नाम की दवा आ जाएगी। अगर बिल्कुल ड्राई है, कोई डिस्चार्ज नहीं है और पूरी बॉडी में हो रहा है, तो जुगलन्स रीजिया नाम की दवा आ जाएगी। एक बेसिक चीज़ जो प्रिंसिपल है होम्योपैथी का कि दे ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़, तो पेशेंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसकी डिजीज़ का उपचार आसानी से हो जाएगा।
1: मतलब व्यक्ति का उपचार होता है, शरीर को हम उस रोग से लड़ने के काबिल बना देते हैं कि शरीर क्योर कर लेता है, खुद को ठीक कर लेता है, न कि हम उस डिजीज के लिए कोई स्पेशल दवा देते हैं।
0: स्पेसिफिक मेडिसिन कम हैं, पेशेंट का उपचार ज्यादा है। अगर आप ये देखें कि चार लोग एक परिवार में रहते हैं, एक ही माहौल में रहते हैं, एक ही वातावरण में हैं, लेकिन दो को तकलीफ होती है, दो को नहीं होती है, तो इसका मतलब ये कि जो दो को तकलीफ हो रही है उनका इम्यून लेवल कम है, तभी वो उनको फंगस बैक्टीरिया इन्वेड कर सका और दो को नहीं कर पाया। तो हमें उनको दवा ऐसी देनी चाहिए, न्यूट्रिशन ऐसा देना चाहिए, खाने पीने पर प्रबंध करना चाहिए कि अच्छी चीज़ें खाएँ, एक्सरसाइज करें, खुली वातावरण में रहें, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके, और दवाओं के साथ तो मदद करी जा सकती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो क्या अंडर आर्म या जो हमारी आपने कहा कि जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या उन स्थानों के लिए अलग दवाएं हैं? अगर ओपन बॉडी इन्फेक्शन हो रहा है कि जैसे ओपन एरिया में दाद हो, जैसे हमारा गर्दन है,
0: जी
1: गर्दन के पीछे अक्सर ये बड़ी आम समस्या है कि वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन, दाद, रिंग वर्म हो जाता है, तो क्या उनकी दवाएँ अलग होती हैं?
0: जी, रिंग वर्म के लिए एक बहुत अचूक दवा है सोराइनम, ये दी जा सकती है अगर रिंगवर्म है। रिंगवर्म लेकिन पहचानना होगा कि रिंगवर्म है कि नहीं है। रिंगवर्म की सबसे पहली पहचान तो ये होती है कि वो गोल में होता है, राउंड सर्कल्स में होता है, और उसके एजेस पे वो बढ़ता है और उठा हुआ होता है। जो उस रिंगवर्म का रिंग है वहाँ से ये तकलीफ आगे बढ़ती है, तो ऐसे केस में हम लोग सोराइनम नाम की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जैसे एक ही परिवार में कई व्यक्ति हैं और कुछ लोगों की इम्यूनिटी कम है और कुछ की ठीक है, तो इम्यूनिटी जो है वो होम्योपैथी में किस तरह से डिफाइंड हो रही है?
0: जी,
1: दूसरा, वो एक आम आदमी उस इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधन क्षमता जो है उसको बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में किस तरह के बदलाव करे?
0: देखिए, इम्यूनिटी जो होती है अच्छा रखने के लिए खाली दवा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाइफ पैटर्न को सही दिशा में ले जाना होगा। जैसे कि हमें एक्सरसाइज चाहिए, एक्सरसाइज से हमारे स्वेटिंग होगी तो टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे बॉडी से। सेकेंडली, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, नट्स खाइए, सारी चीज़ों में आपको अच्छी इम्यूनिटी के तौर तरीके मिल जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप स्मोक ना करें, ये आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, ड्रिंक ना करें, ये आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, इस प्रकार के भोजन ना खाएं जिससे कि आपकी पेट की तबीयत ठीक नहीं रहती है, अक्सर आपको जो है इंडाइजेशन हो जाता है, इससे इम्यूनिटी कम हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुश रहें।
1: अच्छा, बिल्कुल,
0: अगर आप मेंटली हैप्पी हैं बॉडी भी हैप्पी है, अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हैं, किसी वजह से परेशान हैं, तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि आपका जो

0: डाइजेशन है वो ठीक है तो आप काफी हद तक आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। एक आम आदमी सामान्य तौर से अगर किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाता है और किसी भी रोग के उपचार के लिए जाता है, तो वो उनका एक सवाल ये बड़ा आम होता है, आपका डाइजेशन ठीक है कि नहीं, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है और आप कैसे इसको खासकर त्वचा रोग में कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं?
1: देखिए,
0: जी
1: किसी भी रोग से कोई व्यक्ति आए, चाहे वो त्वचा रोग हो या कोई और हो, हमारी बॉडी के तीन सिस्टम होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी के टॉक्सिन यानी विष जो है बाहर जाते हैं। उसका नाम है स्वेट, यूरिन एंड स्टूल। तो अगर हमारा स्टूल क्लियर नहीं हो रहा तो हमारे टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर रिटेन हो रहे हैं, रुक रहे हैं। यूरिन क्लियर नहीं हो रहा तो वही चीज़, और स्वेटिंग नहीं हो रही तब भी यही चीज़। तो ये तीन नेचर ने ऐसे रूट बनाए हैं जिससे कि हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर जा सकें। तो ये सवाल अगर कोई डॉक्टर पूछता है कि आपको पेट साफ होता है कि नहीं होता है, तो उसका बड़ा क्लियर कट यही सोच है कि बॉडी में टॉक्सिन रिटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर वो उसको ट्रीट किया जाएगा, देखिए वही बात आ गई ना, बेसिक कारण मैंने बताया ना, व्यक्ति,
0: जी
1: अगर उस व्यक्ति की कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी तो उसको स्किन पे भी लाभ मिलेगा।
0: डिटॉक्स हो जाएगा
1: करेक्ट।
0: डॉक्टर साहब। होम्योपैथी में अगर ये त्वचा रोग हो रहा है तो कुछ लोगों को बाल झड़ने की भी एक बड़ी सामान्य समस्याएं होती हैं कि बरसात में अक्सर उनको फंगल इन्फेक्शन हुआ और उनके बाल अचानक से गिरने लगते हैं। क्या उपचार उपलब्ध है होम्योपैथी में?
1: देखिए, स्किन तो पूरी बॉडी में हर जगह है,
0: जी
1: बाल भी स्किन में से ही निकले हैं।
0: जी
1: तो अगर हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन अच्छा है तो स्किन का न्यूट्रिशन ठीक रहेगा तो बाल कम झड़ेंगे, नमी कम होगी वहाँ पे, जो है परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन आ जाती है तो उस फंगल इन्फेक्शन की वजह से, इचिंग की वजह से बाल भी झड़ सकते हैं, लेकिन जैसे फंगल इन्फेक्शन ठीक होगा तो वो दोबारा से वापस भी आ जाएंगे।
0: ये बड़ी आम समस्या है कि जो वर्किंग क्लास है हमारा, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो सुबह 10 बजे से लेकर और शाम 6 से 7 बजे तक ड्रेसअप रहते हैं और आमतौर पे ज़्यादातर वक्त अपना बैठ के ही बिताते हैं। तो ऐसे में अगर ग्रोइन एरिया में इन्फेक्शन हो रहा है तो किस तरह की दवाएं ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं और किस तरह की सावधानियां उनको रखनी चाहिए?
1: देखिए, एक तो मैंने आपसे बताया
0: जी
1: कि पाउडर का इस्तेमाल कर
0: जी
1: सकते हैं, बड़ी सिंपल चीज़ है,
0: ठीक है
1: और रस्टॉक्स नाम की एक दवा है,
0: जी
1: 30 पावर में, उसको सुबह दोपहर शाम लें तो उससे उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे फोल्ड्स में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उनको इचिंग और इन्फेक्शन हो सकता है। एक बात यहाँ और कहना चाहूँगा
0: जी
1: जो कि हम लोग मिस कर गए, देखिए इंसेक्ट बाइट्स बहुत होते हैं रेनी सीजन में, मच्छरों का काटना और बाकी इंसेक्ट्स भी बहुत होते हैं, तो इसमें भी हमारे पास बहुत कारगर दवाएं हैं, जो कि किसी बच्चा कोई खेल रहा है बाहर, उसको इंसेक्ट ने काट लिया, तो लीडम पाल नाम की एक दवा है, उसको
0: अच्छा
1: देंगे तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। और दूसरा, अगर खासकर मॉस्कीटोज की बाइट्स हैं तो कैलेडियम नाम की एक दवा है विच इज़ स्पेसिफिक फॉर मॉस्कीटो बाइट्स, तो उसमें भी हेल्प हो जाती है। तो बरसात के मौसम के साथ साथ ये चीज़ें भी जुड़ी होती हैं।
0: डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में जैसे कि आपने बताया इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े हैं वो काट लेते हैं, दाने निकल आते हैं
1: जी
0: अक्सर अक्सर
1: जी
0: इस मौसम में, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं सामान्य तौर पे, तो ये तो फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अलग माने जाएंगे, इनका किस तरह से उपचार होम्योपैथी में उपलब्ध है?
1: सर, ये देखना पड़ेगा किस कारण से वो दाने आ रहे हैं,
0: अच्छा
1: तभी उसका उपचार हो पाएगा। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बात बता दूं कि हाँ, ये दवाई देंगे तो दाने ठीक हो जाएंगे, ये गलत होगा।
0: अच्छा
1: जिस प्रकार के दाने हैं, जिस कारण से दाने हैं, उसको देखना पड़ेगा, तभी उसके लिए हम लोग हेल्प कर सकते हैं।
0: अच्छा आम आदमी जो अपनी लाइफस्टाइल है उस रेगुलर फॉलो कर रहा है और उसके बावजूद भी उसको इन्फेक्शन हो रहा है, या आप यूं कहें कि इन्फेक्शन न कहें, कुछ लोगों को बदलते मौसम में एलर्जी की समस्याएं होती हैं,
1: जी
0: स्किन एलर्जीज होती हैं,
1: जी
0: तो उस वो कैसे उनके लक्षणों को पहचाने, कैसे वो इस बात में अंतर करे कि वो इन्फेक्शन है या एलर्जी है, और कैसे वो फिर होम्योपैथी में कैसे उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है?
1: देखिए,
0: जी
1: यदि किसी व्यक्ति को हर वक्त जब बरसात होती है तभी प्रॉब्लम आती है तो दैट इज एन एलर्जी, और अगर वो ये देखता है कि कभी भी साल भर में आ रही है तो इट कैन बी एन इन्फेक्शन ड्यू टू मेनी अदर रीजंस। लेकिन अगर एलर्जी की बात करें तो वो पीरियोडिकली है कि भाई ये इस चीज़ से एक्सपोजर हुआ और मुझे तकलीफ आ गई। एलर्जी मीन्स इचिंग भी हो सकती है, एलर्जिक स्नीजिंग भी हो सकती है, एलर्जिक
0: जी
1: राइनाइटिस हो सकता है, नाक बहता है, आंखें लाल होती हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मौसम पे डिपेंड करते हैं। अगर बरसात है, एक्सपोजर हुआ, एलर्जी आई, तो यस, वी हैव गॉट ट्रीटमेंट फॉर दैट। आर्सेनिक एल्बम एक दवाई है, नेट्रम सल्फ एक दवाई है, जो दोनों दवाइयाँ इस बरसात के मौसम की वजह से जो परेशानियाँ आती हैं उसको डील करने के लिए हैं, जो एलर्जी संबंधित हो।
0: डॉक्टर साहब, ये मौसम जब जाता है खासकर सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो चिकन पॉक्स के खत्म

0: संतरे बढ़ते हैं
1: जी,
0: वो एक बड़ी आम समस्या है। किस तरह के लक्षण आते हैं लोगों में कि वो पहचान पाए, किस तरह का प्रिकॉशन रखें और किस तरह के उपचार उसके लिए उपलब्ध है होम्योपैथी में?
1: देखिए, चिकन पॉक्स एक इन्फेक्शन है जो कि अक्सर लोगों को तब होता है जब एकदम से सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, कि पता लगा कि एकदम गर्मी से बरसात से ठंडक में चले गए और उनको उनको इन्फेक्शन आ गया और चिकन पॉक्स के दाने निकल आए। चिकन पॉक्स के दाने जो निकलते हैं वो बहुत छोटे से दाने निकलते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर थोड़ा उसमें पानी आता है, फिर और पानी आता है, फिर उसके ऊपर स्कैब भी

0: और चिकन पॉक्स के दाने निकल आए। चिकन पॉक्स के दाने जो निकलते हैं वो बहुत छोटे से दाने निकलते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर थोड़ा उसमें पानी आता है, फिर और पानी आता है, फिर उसके ऊपर स्कैब यानी कि पपड़ी आती है। जब ये पपड़ी आती है और झड़ती है तो दैट इज़ द मोस्ट इन्फेक्टिव पीरियड, उसी से फैलता है। तो अच्छा तो ये होगा कि अगर पपड़ी किसी को आती है चिकन पॉक्स की, तो उसको कलेक्ट करके किसी जगह किसी प्लांट के नीचे सॉइल में दबा दे, ताकि वो उड़े नहीं इधर उधर, इधर उधर जाएगी ड्राई होके तो और लोगों को स्प्रेड होगा, और उतने पीरियड के लिए वो अपने घर में रहे, अपने कमरे में रहे, आइसोलेटेड रहे। और एक दवा है जिसका नाम है थूजा। ये एक दवा ऐसी है जिससे कि अगर आपको ससेप्टिबल हैं आप उसके कि चिकन पॉक्स हो रहा है तो इसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक उससे राहत मिल जाती है। लेकिन एक प्रिकॉशन भी है इसके साथ, इस दवा के साथ कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान रखना होगा।
1: डॉक्टर साहब, मोटापा एक आम समस्या है इस समय, और अक्सर ये सामान्यता ये देखा भी गया है कि जो लोग थोड़े हेल्दी हैं उनको स्किन डिजीज थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। क्या मोटापा सीधे तौर पे त्वचा रोगों से जुड़ा हुआ है?
0: देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो कह सकते हैं कि मोटापा है तो फोल्ड्स ऑफ स्किन पे उनकी जो है फ्रिक्शन ज़्यादा है,
1: जी
0: तो इस वजह से वो जो फ्रिक्शन वाली तकलीफ है यानी कि फोल्ड्स ऑफ द स्किन में तकलीफ है, वो बढ़ सकती है।
1: जी
0: बाकी मोटापा डायरेक्टली स्किन से रिलेटेड है डिजीज़ से, ऐसा नहीं है। लेकिन मोटापा कम करने के लिए भी एक दो दवाएं होम्योपैथी में बड़ी प्रचलित हैं। एक उसमें से है फ्यूकस वेसिक्यूलोसिस। इसकी 10 बूंद सुबह शाम ली जाए एक आध महीने के लिए आधे कप पानी के साथ, तो मदद हो जाती है। दूसरी है फाइटोलैका बेरी टैबलेट्स,
1: जी
0: 3 टैबलेट्स 3 टाइम्स a day for 1 month, उससे भी मदद हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, मेरे इन सवालों के अतिरिक्त अगर रह गए हों कुछ पूछना हमसे तो आप सुझाव दे सकते हैं।
0: देखिए, मेरी एक सजेशन ये है
1: जी
0: कि हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, दैट इज द की फैक्टर। और उसके साथ साथ अगर नमी रहित जगह रहेगी बहुत अच्छा है, और कपड़े ऐसे पहने जाएं जो ब्रीदेबल हों, कॉटन हो, अपना हाइजीन अच्छा रखा जाए, और होम्योपैथिक मेडिसिंस जैसे मैंने सजेस्ट करी उसका इस्तेमाल करें, और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपकी बरसात का मौसम खुशी से बीतेगा।
1: डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में जैसा अभी इस समय चल रहा है, अक्सर होता है कि बड़े बच्चे अक्सर बाहर निकले और किसी काम के लिए और भीग गए, तो ऐसे में बच्चे जब आते हैं वापस तो किस तरह का प्रिकॉशन रखा जाए?
0: देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर भीग गया है कोई
1: जी
0: बच्चा या बड़ा,
1: जी
0: तो तुरंत ही घर पहुंचते ही
1: जी
0: ही शुड ड्राई हिमसेल्फ अप, कपड़े चेंज करने चाहिए। अगर वो गीले कपड़े में रह जाएगा तो फंगस को पनपने का एक मौका मिल जाएगा, तो ये काम थोड़ा सा ध्यान कर लें।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल अंतिम में मैं और जोड़ना चाहूँगा कि घर में अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, त्वचा रोग हो रहा है, तो इसके फैलने की आशंका ज़्यादा होती है जो घर के और सदस्य हैं, तो ऐसे में उनको बचाने के लिए किस तरह के प्रिकॉशन रखे जाएं, और क्या कोई प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है होम्योपैथी में?
0: देखिए, अगर किसी व्यक्ति को, जैसे आपने रिंगवर्म की बात की थी
1: जी
0: अभी, ये कांटेक्ट से बढ़ता है,
1: अच्छा
0: तो अगर किसी व्यक्ति को ये है तो डेफिनेटली दूसरे व्यक्ति को उसके कपड़े नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, उसका
1: जी
0: टॉवल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए,
1: जी
0: उसका बेड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसको बिल्कुल आइसोलेटेड इस तरीके से रखना चाहिए कि कंफर्टेबल रहे और दूसरा व्यक्ति थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे।
1: अच्छा
0: तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इस प्रॉब्लम को स्प्रेड करने से बचा सकते हैं। बाकी रही मेडिसिन की बात,
1: जी
0: तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, उसके हिसाब से अगर कोई प्रिकॉशनरी मेडिसिन ज़रूरत पड़े तो दी जा सकती है।
1: डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस विषय पर हमें दी, हमारे श्रोताओं को दी, और निश्चित रूप से हमारे जो श्रोता हैं वो हमारी इस बातचीत से लाभान्वित होंगे, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, अच्छा खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, सूखे रहेंगे बरसात के मौसम में जो सर्वाधिक आवश्यक है, और हमारे इस प्रोग्राम को सुनेंगे, अपनी प्रतिक्रियाएँ हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन पर भेजेंगे। आपने हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातें की, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
0: आपका भी।
2: सेहत की बात के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राकेश राज से सुंदरम तिवारी की बातचीत। विषय था बदलते मौसम में त्वचा रोग का होम्योपैथी द्वारा उपचार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। यह है कार्यक्रम का पहला गीत, अलका याग्निक की आवाज में फिल्म जख्म से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार MM करीम।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अभी आपने सुना यासिर देसाई और जीत गांगुली को। फिल्म का नाम था परमाणु द लव स्टोरी ऑफ पोखरण। गीत रचना रश्मि बिराग की थी, संगीत जीत गांगुली का। कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खां का संगीतबद्ध, मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, आवाज़ जुबिन नौटियाल की, फिल्म का नाम रेड 2।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए ये सोनू निगम के स्वर में भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे जफर हुसैन खां बदायूनी की कव्वाली। सबरस कार्यक्रम में अंत में आइए सुनते हैं ये रचना हरिहरन के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सबरस कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री

0: जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार यह कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली

0: यंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
1: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले

0: Standard Time. In cricket, England have set a target of 259 runs for India in the first of the three-match ODI series at Edgbaston, Birmingham. In reply, India were 97 for 2 in 19 overs when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India reiterated its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. And in men's cricket, India chased target of 259 runs set by host England in first ODI at Birmingham. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। भारत ने आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और आजादाना नकलो हमल की बात दोहराई है। उसने महाजराई के देरीना हल की खातिर ईरान और अमरीका से एक बार फिर बातचीत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहिदा कल से नाफिज हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई फराहम होगी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी की मुद्दत में मजीद 10 दिन की तौसी कर दी है। फीफा आलमी कप में आज रात टेक्सस में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में बर्मिंगम में पहले एक रोजा बैन अलावामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत की जीत के लिए 259 रन का निशाना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों और अमरीका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफे के पेश नज़र वो मगरबी एशिया के वाकयात पर करीबी नज़र रख रही है। वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात दोहराई कि भारत आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज बिला रुकावट नकलो हमल और तजारती सरगर्मियों की हिमायत करता है।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: भारत ने आज आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान दो बहरी जहाजों एमटी अलबहिया और एमटी मोम्बासा पर हमलों पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। इन दोनों बहरी जहाजों में मजमूई तौर पर 46 अफराद सवार थे जिनमें 30 भारतीय मल्लाह भी शामिल हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली में ईरान के सिफारतखाने के मिशन के नायब सरबराह को आज सुबह वजारत की जानिब से तलब किया गया था।
2: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है आज सवेरे हमला हुआ तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से दो काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसमें सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ है वो सबसे ज्यादा नाविकों की हमारे देश की लोगों की जान गई है।
1: पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में एहतजाजों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में जारी एहतजाज उन इलाकों में पाकिस्तान के दहाइयों से चले आ रहे सिलसिलेवार इस्तेसाल बुनियादी हकूक फराहम न किए जाने और इंतजामिया के जुल्म और जबर का बराह रास्त नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस

0: क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तिजारती मुआहदा CETA कल से नाफिज हो जाएगा। इस तारीखी मुआहदे के तहत बरतानवी बाजार में 99% महसूल तक भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई हासिल होगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए कॉमर्स के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इकतसादी तिजारती मुआहदे को ये कहते हुए भारत के तिजारती सफर में एक फैसला कुन संग मील करार दिया कि ये दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल पर मबनी इकतसादी शराकत दारी कायम करेगा। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि भारत बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तिजारती मुआहदे का नफाज भारत के आलमी सतह पर मरबूत लचकदार और मुसाबकती मईशत बनने के सफर में एक अहम कदम है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस मुआहदे को अवाम पर मरकूज मुआहदे के तौर पर तैयार किया गया है जिसके फवायद पूरे मुआशरे को हासिल होंगे। CETA और DCC के एक साथ निफाज से भारतीय बरामदात के लिए अहम इम्कानात पैदा होंगे। भारतीय बरामदकारों को मुख्तलिफ शोबों में बरतानिया के महसूल मुकम्मल तौर पर खत्म होने से फायदा होगा। डिब्बाबंद खुराक पर 70% तक, समंदरी अशिया पर 21% से ज्यादा, इंजीनियरिंग साजो सामान और मोटर गाड़ियों के कलपुर्जों पर तकरीबन 18%, चमड़े और फुटवेयर अशिया पर 16% तक, टेक्सटाइल और कपड़ों पर तकरीबन 12% तक जो महसूल था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इससे बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदकारों की मुसाबिकती सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। किसानों, माहीगीरों, MSMEs और मैन्युफैक्चरर्स के लिए नए इम्कानात पैदा होंगे और आलमी वैल्यू चेन में भारत की पोजीशन मुस्तहकम होगी। दिल्ली से अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बड़ी पॉलिसी इसलाह का ऐलान करते हुए कहा है कि अब जरई खाद रिवायती बंद डब्बों की बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट की जाएगी। भारतीय रेलवेज की जदीदकारी से मुतालिक इसलाहात पर आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने उड़ने वाली राख यानी फ्लाई एश के ट्रांसपोर्ट में भी बड़ी इसलाह का ऐलान किया जिसके तहत इसे खुले रेलवे वैगन्स के बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। रेलवे के वजीर ने मजीद कहा कि कंटेनर पर मबनी नए निजाम से लोडिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान होने वाली धूल की आलूदगी में कमी आएगी। जनाब वैष्णव ने कंटेनर पॉलिसी के तहत मरबूत लाइसेंस निजाम का भी ऐलान किया।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई एश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई एश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई एश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला तनाजे की रोजाना की बुनियाद पर समाप्त करने पर राजी हो गया है। ताहम भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त गुजारों की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें तनाजे से पहले की सूरत हाल बहाल करने के लिए उबूरी हुक्म जारी करने की दरखास्त की गई थी। पहले की सूरत हाल के मुताबिक मुसलमानों को मुकर्रर करदा दिनों में हिंदुओं की पूजा के साथ साथ जुमे के रोज नमाज अदा करने की इजाजत हासिल थी। बेंच ने रियासत को हुक्म दिया है कि वो मजकूरा आराजी से मुतसर एक खुली जगह फराहम करे ताकि मुस्लिम फरीक जुमे के रोज दोपहर 1 बजे से सपहर 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा कर सके। बेंच ने वाजे किया कि ये इंतजाम आर्जी बुनियादों पर है जब तक के मामले का हतमी फैसला नहीं हो जाता। बेंच ने दोनों फरीकों से तहमुल बरतने की अपील की और इस मामले को इंतहाई हसास करार दिया। भारत कल से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वुजरा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस दो रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वुजरा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत जिसका उनवान है लचक, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारियत की तामीर, इसके तहत ये इज्तिमा होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान वुजरा समाजी तहफ्फुज को फरोग देने, मेहनत की मंडियों को बाजाब्ता शक्ल देने, खवातीन की शमूलियत को बढ़ाने और अफरादी कुव्वत में उन्हें शामिल करने समेत 4 तरजीही मौजूदात पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट एलामिये को गौर वखोज के बाद अपनाया जाएगा। इस एलामिये का मकसद ब्रिक्स ममालिक में

मेहनत के बाजार की पॉलिसियों, मेहनतकशों की बहबूद, हुनरमंदी के फरोग और शमूलियाती रोजगार पर तआवुन को तकवीयत देना है। इसके अलावा एलामिये का मकसद काम की बदलती दुनिया में लचक और पायदार तरक्की को फरोग देना भी है। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मस्नूई जहानत नौजवानों के हुनर को मौसर तरीके से निखार सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट से मेहमान खसूसी के तौर पर खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने स्किल इंडिया मिशन के तहत समाजी तहफ्फुज पहल के मुख्तलिफ हुकूमती इकदाम और प्रोग्रामों को नुमाया किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी SIR की मुद्दत में 10 दिन का इजाफा कर दिया है। कमीशन के नए शेड्यूल के मुताबिक हरियाणा और आंध्र प्रदेश में बूथ लेवल अफसरान BLO इस महीने की 24 तारीख तक घर घर जाएंगे। इससे पहले यह मुद्दत आज 14 जुलाई को खत्म हो रही थी। कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों का मुसविदा 31 जुलाई को शाया किया जाएगा, जबकि हतमी वोटर फहरिस्त की इशात 3 अक्टूबर को होगी। इंतखाबी कमीशन ने यह भी इत्तला दी है कि दोनों रियासतों में 31 जुलाई से 30 अगस्त के दरमियान दावे और एतराजात दाखिल किए जा सकते हैं। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि ढुलेरा बैनल अक्वामी हवाई अड्डे पर 3 माह में कामकाज शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम मुकम्मल हो चुका है और हुकूमत का मकसद आइंदा 3 माह में टर्मिनल की तामीर के बकिया काम को मुकम्मल करना और लाजमी लाइसेंस हासिल करना है ताकि परवाजों का आगाज किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने BJP के सीनियर लीडर रामचंद्र गौड़ा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने जनाब गौड़ा को कर्नाटक में BJP का एक अहम सुतून करार दिया, जिन्होंने जमीनी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने और पार्टी वर्करों की नस्लों को तैयार करने में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। जनाब मोदी ने सोगवार कुनबे और उनके हामियों से भी दिली ताज़ियत का इजहार किया। बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को वसत देने की जानिब एक अहम कदम के तहत भारत मालदीव आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए बातचीत का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। ये बातचीत गुज़श्ता हफ्ते वर्चुअल तौर पर हुई थी। कॉमर्स और तिजारत की वजारत ने कहा है कि तरफ़ैन ने बातचीत के सभी पहलुओं पर खातिरख्वाह पेशरफ्त की और मुख्तलिफ मामलात पर वसी तर इत्तेफाक हुआ है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल तक ओडिशा में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद और कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उसने मजीद कहा है कि कल तक बिहार में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम ने रात भर चले सिलसिलेवार हमलों की लहर के दौरान 5 रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया और उन्हें नाकाम किया। हालांकि दीगर कई मिसाइल और ड्रोन्स दिफाई निजाम में सरायत करने में कामयाब रहे और उन्होंने राजधानी कीव को निशाना बनाया। यूक्रेन की फिजाइया के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल और 25 ड्रोन्स ने मुल्क भर में 17 मकामात को निशाना बनाया, जिनसे मलबे के गिरने की भी रिपोर्ट है। कीव में हमलों की वजह से 2 गोदामों में आग लग गई और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि फ्रांस की सालाना वेस्टेल दे तकरीबात में शिरकत के बाद से पेरिस में हैं, ने कहा कि यूक्रेन और उसके बैनुल अक्वामी साझेदार अगले 1 साल के अंदर मुश्तका तौर पर कम लागत वाले और बड़े पैमाने पर तैयार किए जा सकने वाले दिफाई निजाम तैयार कर सकते हैं। फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के टेक्सास के डेलास स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। ये मैच जीतकर फ्रांस लगातार तीसरी मरतबा फीफा आलमी कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब स्पेन साल 2010 में ट्रॉफी जीतने के बाद पहली मरतबा फाइनल में पहुंचने की भरपूर कोशिश करेगा। क्रिकेट में बर्मिंघम के एजबिस्टन में खेले जा रहे 3 एक रोजा बैनुल अक्वामी सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 259 रन का निशाना रखा है। जवाब में आखिरी खबरें मिलने तक भारत ने 22 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 47 ओवर्स और 5 गेंदों में 258 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जो रूट ने सबसे ज्यादा 76 रन, जबकि लियाम डोसन ने
68 रन बनाए। भारत की जानिब से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए। शुभमन गिल की क्यादत वाली भारतीय टीम को आजमूदाकार खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली

कभी कभी मोहब्बत का रिश्ता साथ रहने का नहीं, बल्कि दिल में हमेशा जिंदा रहने का नाम होता है। वक्त, फासले और हालात हाथों की गिरफ्त तो ढीली कर सकते हैं, लेकिन सच्चे जज्बातों की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मुलाकातों के भी मोहताज नहीं होते। वे यादों, एहसासों और दुआओं में हमेशा सांस लेते हैं। इन्हीं नाजुक और खूबसूरत एहसासों को बड़ी सादगी से और गहराई से बयां करती है हमारे कार्यक्रम की अगली गज़ल, राहत इंदौरी के असरदार अल्फाज, आदेश श्रीवास्तव का मधुर संगीत और जगजीत सिंह की मखमली आवाज़ ने इसे दिलों के बेहद करीब ला दिया है। तो आइए सुनते हैं कहकशां कार्यक्रम की अगली गज़ल।

यादें इंसान की ज़िंदगी का वह ख़जाना है जिन्हें ना वक्त मिटा पाता है और ना ही दूरियां। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बीत जाने के बाद भी दिल की धड़कनों में बसे रहते हैं। कभी किसी खामोश रात में, कभी किसी भीगी हवा की झोंके के साथ, तो कभी किसी पुराने गीत की धुन पर भी फिर से दस्तक दे जाते हैं। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद यही है कि उसका असर सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं रहता, बिछड़ने के बाद भी उसकी खुशबू यादों में महकती रहती है। कुछ चेहरे आंखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन दिल की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। जब तन्हाई अपने आगोश में लेती है तो बीते हुए पल एक एक कर सामने आने लगते हैं और दिल खुद से ही बातें करने लगता है।

और अब वक्त है आज की महफिल की आखिरी पेशकश का। कहते हैं कुछ गज़लें केवल सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। वे दिल के उन कोनों तक पहुंचती हैं जहां अल्फाज अक्सर नहीं पहुंच पाते। और जब कोई अपना दूर हो, कुछ बातें अधूरी रह गई हों और यादें खामोशी में भी साथ निभा रही हूँ, तब गज़ल दिल की आवाज़ बन जाती है। आज की भी यह अंतिम गज़ल कुछ ऐसी ही है, अनकहे जज्बातों की तर्जुमान है ये गज़ल। इसमें कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक खामोश सी पुकार है जो सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुँचती है। निदा फाजली की संवेदनशील शायरी, संगीतकार अनु मलिक का मधुर संगीत, जगजीत सिंह की रूह छू देने वाली आवाज़ इस गज़ल को एक कालजयी मुकाम देती है। हर मिसरा ऐसे लगता है मानो किसी की याद धीरे धीरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनिए आज की महफिल की ये आखिरी पेशकश।

इन्हीं खूबसूरत अल्फाज और दिल को छू लेने वाले एहसासों के साथ आज की ये कहकशां यहीं सिमटती है। उम्मीद है आज की ये गज़लें आपकी यादों को महका गई होंगी और आपके दिल के किसी कोने को ज़रूर छू गई होंगी। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। हमारा नंबर है 800-49-26-250। फ़ोन नंबर पुनः सुन लीजिए 800-49-26-250। और इसी के साथ एकता शुक्ला को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए जज्बातों, कुछ नई गज़लों और संगीत की ऐसी ही दिलनशी महफिल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और मुस्कराते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। अगले प्रसारण के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेल दर्पण का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं मिथिलेश श्रीवास्तव। आज के अंक की प्रस्तुति है आकाशवाणी बरेली की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो विशेष खिलाड़ियों से और जानेंगे इन खिलाड़ियों का खेल, कैसे इन्होंने मैदान पर अपना परचम लहराया और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित शर्मा है
0: जी,
1: और मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से बिलोंग करता हूं और मैं बरेली सेंटर में हॉकी कोच के रूप में प्रशिक्षित हूं।
0: बचपन में जो है यही पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से नवाब बनोगे और खेलने से खराब हो गए। तो आपकी लाइफ में क्या था?
1: मेरे लाइफ में भी ऐसा ही था। तो जो मेरे पिताजी थे वो मध्य प्रदेश पुलिस से अभी रिटायर हुए हैं
0: जी, जी।
1: वो भी कबड्डी खेला करते थे और स्विमिंग खेला करते थे।
0: अच्छा,
1: तो उस तरीके से तो जैसे कि आजकल माहौल होता है, जो पहले क्रिकेट हम लोग, मैंने पहले सबसे पहले क्रिकेट ज्वाइन किया, फिर उसके बाद जो हमारे जो कॉलोनी था और कॉलोनी में एक दर्पण हॉकी स्टेडियम था।
0: अच्छा,
1: तो वहां पे हॉकी का काफी पुराना चलता था, फिर वहां जाके मेरे पिताजी वहां लेके गए, फिर वहां से मैं धीरे धीरे करके हॉकी खेलना स्टार्ट किया,
0: हॉकी खेलना शुरू किया। लेकिन क्रिकेट नहीं जमा आपको?
1: नहीं, क्रिकेट नहीं जमा। क्रिकेट थोड़ा सा अच्छा गेम है।
0: हाँ,
1: पर यह है कि बस क्रिकेट के लिए थोड़ा सा एक खिलाड़ी है, वही बैटिंग आने के लिए काफी देर तक वेट करना पड़ रहा है और थोड़ा सा
0: कई बार नहीं भी आती है।
1: नहीं भी आती है।
0: हाँ, तो इसलिए आपको ये लगा कि हाँ हॉकी में भाई हाँ, हमेशा आपको एक्टिव रहना है।
1: एक्टिव रहना है।
0: अच्छा, लेकिन फुटबॉल में भी तो ऐसा होता है?
1: हाँ, फुटबॉल भी खेला है हमने। अच्छा। फुटबॉल जो ऐसे कभी कभी जो बारिश होती थी उसका स्कूलों में और उसके बाद जो हमारे जो पास के पार्क वगैरह होते थे उसमें हम हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेला करते थे।
0: अच्छा, लेकिन हॉकी को फिर आपने क्यों चुना?
1: हॉकी को इसलिए चुना क्योंकि जब हम पहली बार वहां पे देखा, हमने वहां पे बाहर खड़े हुए कॉलोनी में खड़े हुए थे, पास में ही है कॉलोनी में हमारे, तो देखा वहां पे सर अगर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक अविनाश भटनागर जी थे सर, हमारे कोच, आज भी प्रैक्टिस करवाते हैं। एक रईस कुरैशी जी थे, वो दोनों वहां पे प्रैक्टिस करवा रहे थे। हमने उनको देखा तो ऐसे खड़े हुए थे, फिर हमारे जो सीनियर थे उन्होंने बोला हॉकी अगर खेलना है ना? हाँ खेलना है। बोला आ जाओ। फिर वहां पे जो हॉकी प्रोवाइड करवा दी जाती थी।
0: अच्छा।
1: तो वहां जाके एक दो दिन खेला, उसके बाद जो हॉकी अच्छा लगा और कॉलोनी से भी काफी बच्चे जाते थे तो खेलते खेलते वो हमारा मन लगने लगा,
0: मन लग गया एक तरह से कहा जाए तो। फिजिबिलिटी जो उपलब्धता आपके आसपास थी वो हॉकी,
1: हाँ, जो एनवायरमेंट वहां पे जो हॉकी का था, दर्पण में, दर्पण जो कॉलोनी है वो काफी सारा, मतलब हर तीसरे चौथे घर में से एक हॉकी खिलाड़ी है उधर।
0: अच्छा।
1: हाँ, काफी है
0: बिल्कुल। तो और हॉकी की जहां तक बात की जाए तो बचपन में आपने बताया कि पिताजी पुलिस में थे।
1: हाँ।
0: और स्विमिंग करते थे।
1: हाँ।
0: स्विमिंग नहीं ट्राई किया आपने?
1: नहीं, स्विमिंग नहीं किया।
0: अच्छा।
1: तो वो स्पोर्ट्स से थे तो उनका मतलब यही था कि बच्चे को खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल खेलना भी जरूरी होता
0: जरूरी है।
1: तो उनका ये कहना था कि आप पढ़ तो रहे ही हैं पर सुबह उठो कोई ना कोई एक गेम खेलो।
0: तो मतलब पिताजी का काफी
1: हाँ,
0: सहयोग भी मिला और उनका प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि वो उनका नेचर भी था और उनका रूटीन भी।

0: रूटीन भी था।
1: अच्छा, इसके बाद फिर पढ़ाई की बात की जाए, खेल के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज किया आपने?
0: जब ऐसे मैं अभी जो असाई में कोचिंग कर रहा हूँ, तो मैं जब नाइन्थ क्लास में था, एट्थ क्लास में था, तो एक साई का ही सेंटर टीकमगढ़ में था।
1: अच्छा,
0: तो टीकमगढ़ में मेरा चयन हुआ, जो ट्रायल देने गए, तो वहां हमने हॉकी खेला। हॉकी खेलने के बाद फिर मैंने भोपाल में भी एक साई का सेंटर है, वहां पे भी मैंने प्रयास किया, तो वहां पे भी मेरा चयन हुआ। फिर वहां मैं 3 से 4 साल, वहां चौहान सर थे, भाई एस चौहान सर, जो अभी रिटायरमेंट हो गए, हरियाणा के थे, तो उनके अंडर में मैंने 3 से 4 साल वहां पे भोपाल में 2014 तक हॉकी खेली। उसके बाद जब हम आ गए, उसका ओवर एज हुए, तो उसके बाद फिर देखा, उसके बाद फिर धीरे धीरे, जब एक खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी जब वो पढ़ाई में जाता है तो थोड़ा सा बहुत चेंज आता है, तो फिर धीरे धीरे थोड़ी सी मेहनत की और फिर थोड़ा और मेहनत की, फिर उसके बाद जो बैचलर होती है, बीपीएड वगैरह वह किया, उसके बाद एमपीएड किया, फिर थोड़ा सर्टिफिकेट, जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हाँ, आप खेल बंद हो गया है तो थोड़ा इस लाइन में भी आप जा सकते हो, क्योंकि आजकल जो है स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो मेडल होता है, मेडल वालों के ही जॉब है, तो उसके बाद अगर आपके पास काफी सारे ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं, वो जो एक मनोबल टूट जाता है उनका, जब खेल खेलने के बाद उनको जॉब नहीं मिलती है तो उनका मनोबल टूट जाता है, तो मैं तो उनको ये सबको यही बताना चाहूंगा, अगर मनोबल मत तोड़िए, उसके बाद आपके पास काफी लाइनें हैं, अगर आप उसमें आप घुस जाएंगे तो फिजिकल एजुकेशन में जब जाएंगे, हॉकी के साथ साथ और दूसरे गेम के साथ साथ, तो काफी लाइन है, आप उससे टीचर भी बन सकते हो, आप कोच भी बन सकते हो, आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, तो काफी चीजें हैं, तो मतलब वहीं आप अपना गेम को ड्रॉप मत करो। ऐसे ही मेरे साथ मेरे जो सीनियर्स थे काफी, उन्होंने बताया मुझे कि हाँ, अब तू बीपीएड कर, तो फिर मैंने बीपीएड किया जीवाजी यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद फिर मैंने बोला अब क्या है, अभी तो जॉब नहीं मिल रही है, फिर उन्होंने बोला कि तू और पढ़ाई किया, फिर मैंने एलएनआईपी से सर्टिफिकेट कोर्स किया, फिर मास्टर, फिर मैंने और पढ़ाई की, फिर एलएनआईपी में मास्टर डिग्री किया, फिर मास्टर डिग्री करने के बाद फिर सोचा कि हाँ,
1: एलएनआईपी क्या है?
0: एलएनआईपी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: जो कि ये 1956 में बना हुआ था।
1: अच्छा।
0: हाँ, और भारत का मक्का फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है।
1: अच्छा।
0: यहाँ से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, डायरेक्टर, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स प्रोफेसर होंगे अच्छे लेवल पे, वो इसी कॉलेज से पास आउट होंगे, और बेसिकली ये एशिया का नंबर वन कॉलेज माना जाता है फिजिकल एजुकेशन में, और कोचिंग में जैसे अपना एनआईएस पटियाला माना जाता है। तो फिर वहीं से मैंने मास्टर डिग्री किया, मास्टर डिग्री के करने का जो घर ग्वालियर में ही था, तो वहां से डिप्लोमा भी करवाते हैं वहां पे, तो डिप्लोमा नहीं, स्पोर्ट्स कोचिंग में, तो फिर मैंने वह डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग भी किया। जब वो डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर मैंने उसमें वैकेंसी आई हुई थी खेलो इंडिया सेंटर में, वहां मैंने अप्लाई किया, तो वहीं ग्वालियर में पास में जो वुमेन्स हॉकी एकेडमी है, वहीं मैंने खेलो इंडिया सेंटर में ज्वाइन किया। जब मैं 2 साल मैंने वहां पे वर्क किया, उसके बाद फिर जो अपने जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है साई, उसमें वैकेंसी आई, उसमें वैकेंसी के आने के बाद फिर मैंने वहां पे फिल किया, जो मैंने हॉकी इंडिया के लेवल वन लेवल, जो हॉकी इंडिया एक कोर्सेज करवाती है, जो उसमें मतलब कोचेस के लिए लेवल वन होता है, बेसिक होता है।
1: अच्छा।
0: वो मैंने पास किया, उसके बाद लेवल वन होता है वह मैंने पास किया, उसके बाद फिर हॉकी इंडिया के लेवल वन पास किया, हॉकी इंडिया का लेवल टू पास किया, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल वन जो कोचिंग होती है, उसे आप इंटरनेशनल लेवल तक भी आप कोचिंग कर सकते हो।
1: अच्छा।
0: तो वो है लेवल पास किया, और उसका दूसरा भी पास किया, और अभी तीसरा में करके आया हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, तो वह गया, तो उसका मुझे साई के वैकेंसी में फायदा भी मिला, और जो इंटरव्यू वगैरह है वहां पे इंटरव्यू भी हुआ, उसके बाद मुझे दिल्ली में इंटरव्यू के बाद मुझे भारत सरकार के सेंटर में बरेली में चयन हुआ।
1: जी जी। तो ये जो आप लेवल्स बता रहे हैं,
0: हाँ,
1: इनकी क्या वेटेज होती है, कैसे क्या?
0: ये वेटेज आज के जमाने में जो अपडेट है, जो फॉरेन कंट्री में क्या रहता है, जैसे फुटबॉल के पहले लेवल चलते थे, तो लेवल ए लेवल बी टाइप के, जैसे ही हमारे जो FIH है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का, तो उनके द्वारा ये हॉकी के बेसिक लेवल स्टार्ट किए हैं। बेसिक लेवल में क्या होता है कि जो अपडेट आ रही है, नई नई हॉकी जो स्टार्ट हो रही है, कि कैसे आपको ग्रिप पकड़नी है, कौन कौन सी ग्रिप है, बच्चे को किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे इजी तरीके से हम उनको सिखा सकते हैं, और कैसे प्लेयर को एनालाइज करना है, कैसे प्लेयर को आइडेंटिफाई करना है, कैसी हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या हम टैक्टिस होंगे जब अपोनेंट से हम हार रहे हों, जीत रहे हों, क्या हमारी साइकोलॉजी होंगी ड्यूरिंग मैच, बिटवीन द मैच और आफ्टर मैच, तो वह चीज जो फॉरेन कोचेस होते हैं, वह हमें आके इसमें 4 से 5 दिन का जो कोर्स होता है उसमें वो हमें अपडेट कराते हैं।
1: अच्छा।
0: फिर उसके बाद फिर वो हमारा रिजल्ट तैयार करते हैं और वो हमें टास्क देते हैं, फिर देन हम उसको पास करते करते आगे बढ़ते हैं।
1: अच्छा, मतलब एक कोर्स को पास किया, फिर
0: दूसरा है, फिर तीसरा।

0: रहे हैं ऐसे।
1: तो अभी आप जो तीसरा कोर्स पास करके आए हैं,
0: हाँ
1: ये इसमें क्या था, क्या मतलब इस लेवल का मतलब क्या था?
0: हाँ ये जो फेडरेशन इंटरनेशनल FIS लेवल 3 कोर्स था,
1: जी,
0: तो उसमें क्या था, ये इसमें जो हाई लेवल जो मैच चल रहा है अभी इंटरनेशनल, मतलब इसका जो कोर्सेज है वो सीधे भुवनेश्वर में होते हैं। भुवनेश्वर
1: अच्छा।
0: में जैसे FIS के जो मैचेस चल रहे होंगे इंटरनेशनल मैचेस, ड्यूरिंग द मैचेस उस समय हमें बुलाया जाता है, फिर हमें उस मैच के बारे में एनालाइज करवाया जाता है, फिर वो हमें बताया जाता है कि पहले हम खुद एनालाइज करेंगे उस मैच को, हम बताएंगे कि इस मैच में क्या क्या और कर सकता है। एक एक टीम दे दी जाती है, वैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है तो मुझे इंडिया दे दी जाएगी और सामने वाले को ऑस्ट्रेलिया दी जाएगी, फिर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, एक
1: अच्छा।
0: प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ तैयार बनाएंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस बनाने के बाद जब हम उनको प्रेजेंट करेंगे, देन हमारे जो उसमें जो गलतियां होंगी, फॉल्ट होंगी, जो फॉरेन कोचेस होंगे, जो इंडिया वाले कोचेस हैं, जो सीनियर कोचेस हैं जो FIS में हैं, वह उनको हमें बताएंगे कि हाँ ये आपकी थोड़ी सी गलतियां हैं, और फिर आपको कैसे उस मैच को एनालिसिस करना है, कैसे उसकी स्ट्रेंथ पकड़ना है, कैसे उसकी वीकनेस पकड़नी है।
1: अच्छा। और कौन कौन से लेवल होते हैं? 3 के बाद फिर अब क्या 10 तक
0: हाँ
1: लेवल
0: नहीं,
1: होते हैं?
0: लेवल 4 रहते हैं,
1: 4 तक
0: लेवल
1: रहते हैं।
0: 4 रहते हैं,
1: अच्छा।
0: फिर 3 के बाद जो एजुकेटर्स हो जाते हैं, उसके बाद जो बेसिक लेवल्स होते हैं ना, उनके लिए आप उस पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
1: तो क्या इसके जरिए क्या कुछ सैलरी अपग्रेडेशन भी होती है?
0: नहीं, सैलरी अपग्रेडेशन
1: अच्छा,
0: नहीं होती, इसके जगह कुछ अपडेट होता है
1: कोच अपडेट होता है,
0: कोच
1: मतलब एक
0: अपडेट
1: तरह
0: होता
1: से
0: है,
1: नॉलेज गेन फिर।
0: नॉलेज गेन है, ये हमारे लिए ही फायदा है।
1: अच्छा, आपने तो राष्ट्रीय स्तर पे भी खेला है,
0: जी
1: तो पहला मैच कौन सा था आपका?
0: जी हमारा था मध्य प्रदेश वर्सेस छत्तीसगढ़ का था,
1: अच्छा
0: सबसे पहले मैं वहां पे गाजियाबाद में खेला था।
1: अच्छा
0: हाँ 2006-07 की बात है जब हमने खेला था, पहली बार मैच खेला, उसका जीते भी थे, छत्तीसगढ़ से मैच जीते थे। तो ऐसे ही फिर उसके बाद फिर हम औरंगाबाद गए, फिर दिल्ली में भी हुआ, फिर ऐसे धीरे धीरे करके काफी सारे जो नेशनल टूर्नामेंट थे वो खेले।
1: कौन से पोजीशन पे खेलते थे?
0: मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलता था
1: सेंटर फॉरवर्ड।
0: जी,
1: तो कुछ अगर यादें अगर साझा करना चाहें,
0: सेंटर
1: कोई
0: फॉरवर्ड
1: ऐसी कोई ऐसा मैच
0: हाँ
1: जो काफी डिफिकल्ट था या आपके लिए डिफिकल्ट था, टीम के लिए भले ना हो?
0: हाँ काफी सारे मैच ऐसे होते हैं जब जब आप मेन मेन पोजिशन सेमीफाइनल्स होते हैं, तो ऐसे ही एक मैच था औरंगाबाद में सेमीफाइनल्स में, तो वह जो सेमीफाइनल मैच होते हैं उस समय आपके पास जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो उस समय आपकी पहले क्या होती थी, 11 पोजीशन होती थी इंक्लूडिंग गोलकीपर से लेके
1: अच्छा।
0: फॉरवर्ड तक, तो 5 फॉरवर्ड होते थे, 3 डिफेंडर होते थे, दो तीन हाफ, 2 डिफेंडर, 1 गोलकीपर होता था। अब जो नया आ रहा है उसमें उन्होंने कर दिया कि 3 लेवल में बांट दिया उन्होंने, डिफेंडर, स्ट्राइकर और मिडफील्डर। तो उस समय जो हॉकी थी वो थोड़ी सी स्लो थी, है ना, अब जो है हॉकी थोड़ी सी फास्ट और होती जा रही है। तो उस समय पहले क्या रहता था कि जो कोचेस भी होते थे और जो साथ में वो ये कहते थे कि आप सिर्फ अपना काम करिए, तो ऐसे जब बॉल हमारे सेंटर में आती थी तभी हमारा काम होता था स्ट्राइकरों का, फॉरवर्डों का, कि हाँ हम जाके गोल करें। अब जो हॉकी चेंजेस है उसमें क्या रहता है कि स्ट्राइकर भी पीछे आएगा और डिफेंडर भी आगे जाएगा, मतलब कि आपको टोटल हॉकी है,
1: टोटल है।
0: स्ट्राइकर भी गोल मारेगा और डिफेंडर भी गोल करवाएगा आपका। तो पहले ऐसे काफी सेमीफाइनल मैचेस होते थे, उस समय हम सिर्फ बॉल का वेट करते थे, अगर हम पीछे जाते थे तो वहां से कोचेस जो होते वो कहते थे पीछे मत आ, फिर आगे गोल कौन करेगा, तो इस चक्कर में काफी मैच हार भी जाते
1: तो
0: थे।
1: कुछ टेक्निक्स जो है अपडेट हुई हैं जिस अच्छा,
0: हाँ
1: इसकी वजह से क्या कुछ रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है?
0: हाँ ये जो टोटल हॉकी आया है
1: जी।
0: उसमें क्या रहता है, स्ट्राइकर भी जो है गोल मारेगा, स्ट्राइकर भी मिडफील्डर है और मिडफील्डर भी स्ट्राइकर है और डिफेंडर भी स्ट्राइकर है और डिफेंडर भी मिडफील्डर है। उसमें क्या रहता है कि ऐसे कि हमारी जो इंडियन टीम के काफी जो डिफेंडर हैं अब वह भी आगे जाके जो मतलब काफी जो कोचेस की जो स्ट्रेटजी होती है कि हाँ आप आगे जाएंगे, डिफेंडर आगे जाएगा तो मिडफील्डर जो है वो पीछे आ जाएगा, उससे वो आपके जो एक प्लेयर इंक्रीज हो जाएगा जिससे आपको गोल मारने में फायदा
1: अच्छा।
0: मिलेगा।
1: जी।
0: तो आज के जमाने में जो है टोटल हॉकी है, आपको पूरा मैच खेलना है, आपको गोल भी मारना है, आपको डिफेंड भी करना है।
1: अब जैसे कि आपने बताया आप ग्वालियर के हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, क्या अंतर पाते हैं?
0: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में काफी अंतर है, जैसे कि बताता है वह ये बताया जाता है कि यूपी उत्तर प्रदेश में काफी स्ट्राइकर्स माने जाते हैं अच्छे लेवल के, और मध्य प्रदेश में स्ट्राइकर प्लस मिडफील्डर भी होते हैं, पर जो यूपी है, यूपी की हॉकी मैंने देखा यहाँ पे आके, यूपी की हॉकी काफी अच्छी है,
1: अच्छा।
0: यूपी में जो इतना मध्य प्रदेश में है लेवल है,

0: का लेवल है काफी, हॉकी है, पर यूपी की जो स्ट्रेंथ है काफी बड़ी है उसमें, और हॉकी भी काफी है, मतलब कि आपको एक जगह एक सिटी में काफी आपको दो से तीन तीन ग्राउंड मिलने को मिलेंगे, तो बच्चों को यहाँ पे हॉकी का क्रेज काफी ज्यादा है, इसलिए आज के जो है इंडियन टीम में कम से कम 3 से 4 जो यूपी के हैं प्लेयर वो आपको मिलेंगे।
1: रोहित जी जो आप साई के कोच हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम शिष्य आपसे गुरु मंत्र लेकर और आपके निर्देशन में सफलता की नई ऊंचाइयां छुए, यही उम्मीद करते हैं, यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: हॉकी कोच रोहित शर्मा के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं दीपू कश्यप, इनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी अमृता ने।
2: कार्यक्रम में दीपू कश्यप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक।
2: सबसे पहले दीपू हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास इतने सारे मेडल्स हैं, तो कैसे आपको लगा कि इसी खेल को चुनना चाहिए?
3: स्टार्टिंग से ही मैंने ये स्ट्रगल करना मुझे

0: बाद दूसरे खिलाड़ी हैं दीपू कश्यप, इनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी अमृता ने।
1: कार्यक्रम में दीपू कश्यप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक।
1: सबसे पहले दीपू हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास इतने सारे मेडल्स हैं, तो कैसे आपको लगा कि इसी खेल को चुनना चाहिए?
2: स्टार्टिंग से ही मैंने ये स्ट्रगल करना मुझे बहुत अच्छा लगा था
1: जी।
2: और फिर मैं एक बार गई थी स्कूल में तो मेरी रेस हुई थी, तो फिर मैं फर्स्ट आई थी, तो मैम ने बोला था कि इसी लाइन में जाओ और तुम बहुत अच्छा करोगी आगे चल के। तो फिर मैंने आगे चल के गई थी स्टेडियम, गई थी पहले डोरीलाल स्टेडियम गई थी
1: जी,
2: तो उन्होंने मुझे कराया और फिर मैं यहाँ तक पहुंच पाई
1: जी। मतलब आपको इंस्पिरेशन मिली आपके स्कूल से जहाँ पर आप रेस में जीती। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक दिन अपनी मंजिल की ओर जाते हैं। तो दीपू आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर बाधा रेस है क्या? क्या ये एक आम रेस है या ये अलग है एक सिंपल सी रेस से?
2: ये एक रेस है जिसमें हर्डल्स होते हैं
1: जी,
2: 10 हर्डल्स होते हैं इसमें और इसे क्रॉस करना पड़ता है। तो अगर एक भी हर्डल छूट गया तो आपका फाउल हो जाएगा
1: जी,
2: तो उसको एक राउंड करके और फिर आपकी रेस फिनिश हो जाती है
1: जी। आपने कहा कि हर्डल्स होते हैं, क्या ये हर्डल्स सिर्फ 10 होते हैं या फिर रेस की जो दूरी होती है उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं?
2: ये हर्डल्स 10 होते हैं और बाकी 35-35 मीटर पे लगे होते हैं
1: जी। कितने मीटर की रेस होती है अगर बात की जाए, आप कितने मीटर की रेस को खेलती हैं या दौड़ती हैं?
2: मैं 400 मीटर रेस करती हूँ बाधा दौड़
1: जी। और के 400 मीटर के अलावा भी होती है ये रेस की?
2: हाँ, 400 मीटर होती है, 800 होती है, 1500 होती है, 3 किलोमीटर होती है
1: जी,
2: और 5 किलोमीटर होती है, 10 किलोमीटर होती है।
1: तो अभी आप 400 मीटर की रेस दौड़ती
2: हैं? अभी 400 मीटर
1: जी। तो कितना समय लग जाता है 400 मीटर की रेस को पूरा करने में?
2: अभी तो मेरे को 400 मीटर फ्लैट करने में तो एक डाउन हो जाता है और बाकी हर्डल्स पे 1-6 आ जाती है टाइमिंग
1: जी। तो जो हर्डल्स होते हैं उनकी अगर ऊंचाई की बात की जाए और दूरी की बात की जाए, कितना डिस्टेंस होता है लगभग उनमें?
2: ऊंचाई की तो वो तो लो हर्डल होता है, एकदम लो होता है और फिर दूरी 35-35 मीटर पे होता है और लास्ट जो हर्डल होता है वो 45 मिनट पे होता है।
1: मतलब हर्डल्स की एक सेम दूरी नहीं होती, अलग अलग होती जाती
2: है? हाँ, अलग अलग होती है, 35-35 मीटर पे होती है और बाकी लास्ट के होते हैं वो 45 मीटर पे होते हैं
1: जी। दीपू आप एक स्टेट लेवल प्लेयर हैं, तो जब आप ये गेम खेलती हैं तो कैसा लगता है, किस तरह की चुनौतियां आ जाती हैं कभी कभी गेम खेलने में?
2: शुरू से ही मैंने मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है और मुझे पसंद भी है स्ट्रगल करना। तो सुबह मैं उठती हूँ और फिर फ्रेश वगैरह होना और सुबह उठ के एकदम मन भी नहीं करता कभी कभी उठने का, तो फिर एक बार सोचती हूँ कि मेरा जो कंपटीटर है वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा
1: जी।
2: अगर मैं एक दिन की प्रैक्टिस छोड़ूंगी तो मेरे से बहुत आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मैं डेली रहता है मेरा जाना
1: जी। मतलब कई तरह की चुनौतियां आती हैं, चाहे मौसम हो चाहे हाँ। किसी भी तरह की शारीरिक थकान हो, लेकिन रुकना नहीं होता है तभी हम अपनी मंजिल को पाते हैं। दीपू अगर आपसे बात करें गेम की पूरी प्रक्रिया की, तो किस तरह से ये गेम शुरू होता है, कितने प्लेयर होते हैं और किस तरह से रेस की शुरुआत होती है, इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे?
2: इसमें 8 से ज्यादा लोग होते हैं तो उसमें हीट कर दी जाती है, तो हीट होती है और अगर 15 लोग हो या 20 लोग हो तो दो दो 8-8 करके हीट को कंप्लीट करा जाता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है, ऐसे करके
1: जी
2: होता है।
1: तो जो दूरी होती है और प्लेयर्स की संख्या होती है, क्या ये हर गेम में बराबर होती है, चाहे वो 400 मीटर की रेस हो, 100 मीटर की हो या फिर इससे ज्यादा की हो?
2: हाँ, हीट तो होती है 100-200 और 400 मीटर में हीट तो होती है और बाकी 800 मीटर में भी हीट होती है, लेकिन ऑल इंडिया वगैरह में जाओ, वर्ल्ड वगैरह में जाओ खेलने तो होती है हीट उसमें, वरना तो 800 मीटर में स्टेट नेशनल में तो फाइनल कर दिया जाता है।
1: दीपू आपने फाउल की बात की, फाउल किस तरह से होते हैं और कैसे वो गिना जाता है एक गेम में कि हाँ अब आपका फाउल हुआ है?
2: जब हम स्टार्ट करते हैं रेस तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठते हैं, तो फिर हम जब वो कोच बोलते हैं कि नियर मार्क बोलते हैं तो फिर सेट बोलते हैं, अगर उससे गन बजाने से पहले ही खिलाड़ी
1: अगर दौड़ने लगता है,
2: दौड़ने लगता है तो फाउल हो जाता है,
1: डिस्क्वालीफाइड
2: हो जाता है
1: जी। इसके अलावा जो हर्डल्स होते हैं उसमें अगर पैर टकरा जाए या फिर उसको क्रॉस नहीं कर पाए तो क्या वो भी फाउल में माना जाता
2: है? क्रॉस नहीं कर पाओ तो फाउल हो जाता है और बाकी हर्डल्स गिर जाते हैं तो फाउल हो जाता है
1: जी। दीपू एक खिलाड़ी के लिए उसकी दिनचर्या बहुत आवश्यक होती है क्योंकि उसे बहुत कुछ करना होता है, तो आपसे आपकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसी होती है, कब आप कितने बजे उठती हैं, उसके बाद में जो आपकी प्रक्रिया रहती है पूरे दिन की वो क्या होती है?
2: मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ और बाकी फ्रेश वगैरह होना और फिर एक केला वगैरह खाते हैं और फिर जाते हैं प्रैक्टिस करने, फिर वहां से आते हैं, उसके बाद डाइट वगैरह लेते हैं और फिर

0: एक घंटे रिकवरी वगैरह करते हैं, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करने लगते हैं
1: जी। और शाम की क्या आपकी जो अगर बात की जाए स्केड्यूल जो होता है वो क्या रहता है?
0: शाम को वही 4 बजे से प्रैक्टिस पे जाते हैं और फिर वही 3-4 घंटे की प्रैक्टिस, उसके बाद 8 बजे घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं
1: जी,
0: थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं।
1: प्रैक्टिस में क्या क्या होता है, एक्सरसाइज होती हैं या सिर्फ गेम की आप प्रैक्टिस करती हैं?
0: हाँ, प्रैक्टिस में एक्सरसाइज होती है और जिम, स्ट्रेंथ पावर वर्कआउट के लिए जिम भी जरूरी होती है और बाकी रोड वगैरह करना जरूरी होती है
1: जी। आपने अभी स्ट्रेंथ की बात की, तो एक खास तौर पर एक लड़की होने के नाते स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी जरूरी होती है एक लड़की के लिए, और खासतौर पर एक अगर लड़की प्लेयर हो वो भी बाधा रेस की? तो
0: अगर अगले क्षेत्र में जाती है लड़की तो स्ट्रेंथ, जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो आगे नहीं बढ़ सकती
1: जी।
0: और
1: आपने अभी स्ट्रेंथ के लिए भी बोला कि स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है और कॉन्फिडेंस की आपने बात की, तो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप में आत्मविश्वास नहीं है, तो वैसे भी आप आगे नहीं जा सकती। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है एक प्लेयर होने के नाते भी कि आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए। दीपू, परिवार में आपके कौन कौन है और एक खिलाड़ी होने के नाते परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपको?
0: परिवार में मेरी 4 सिस्टर हैं और एक भाई है, मैं सबसे छोटी हूँ सिस्टर में और मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा का तो और घर वालों का तो पूरा सपोर्ट रहा है। बहन भी सपोर्ट करती है, उसको जॉब करती है तो थोड़ा बहुत कर देती है सपोर्ट, और बाकी यही है। घर वालों से कभी ये नहीं रहा कि इतना सुबह क्यों जा रही है, इतनी रात में क्यों आ रही है, कभी ये नहीं रहा, पूरा सपोर्ट रहा है घर वालों की तरफ से
1: जी। आप शहर से बाहर भी खेलने जाती हैं, तो क्या उस टाइम पे कभी ऐसा हुआ है कि परिवार वालों ने कहा हो कि आप एक लड़की हैं और आप बाहर ना जाएं, यहीं पे रह के खेलें?
0: कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना कभी घर वालों ने बोला है कि बाहर इतनी दूर क्यों जा रही हो और क्यों लड़कों से बात कर रही हो, या बहुत सारी बातें होती हैं, मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं
1: जी,
0: तो कभी नहीं सोचा घर वालों ने, यही भरोसा करा है कि हाँ हमारी लड़की घर से बाहर निकली है तो कुछ अच्छा ही करके आई।
1: बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है और खासतौर पर माता पिता का। और आप तो लकी है कि आपकी बहनें भी हैं जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट भी करती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो दीपू, डाइट की अगर बात करें तो एक खिलाड़ी की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी उसमें सेहत आती है और स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। आपकी डाइट क्या है, क्या डाइट लेती हैं आप?
0: सुबह जब हम वर्कआउट करके आते हैं तो सुबह वही ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, काजू बादाम किशमिश छुआरे ये सब लेते हैं, और उसके बाद कभी कभी दूध मिल जाता है तो दूध भी पी लेते हैं, और बाकी फिर शाम में जब जाते हैं तो एक केला वेला खा के चले जाते हैं
1: जी। अच्छा दीपू, ये देखा जाता है कि जो आजकल के यूथ हैं, बच्चे हैं खास तौर पर, उन्हें फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, तो एक खिलाड़ी होने के नाते आप क्या कहती हैं, फास्ट फूड खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए?
0: फास्ट फूड खाना चाहिए बट इतना भी नहीं कि लिमिटेड
1: खाना चाहिए,
0: लिमिटेड खाना चाहिए
1: बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा फास्ट फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी टेस्ट के लिए आप चीट भी कर सकते हैं।
0: कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ, महीने में एक बार या दो बार।
1: जी जी, आप कहाँ कहाँ गई हैं अभी तक दीपू, क्योंकि आपने इतने सारे मेडल जीते हैं तो जरूर आप देश में या फिर स्टेट लेवल पे खेलती हैं, तो दूसरे शहरों में तो जरूर गई होंगी।
0: लखनऊ गए थे एक बार खेलने तो, और गाजियाबाद भी गए थे, गोरखपुर गए थे, और शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, वहां से जब भी गए हैं तो मेडल लेके आए हैं
1: जी। इतनी सारी जगहों पे आप गई हैं और आपने ढेर सारे मेडल्स भी जीते हैं, क्या कभी कोई ऐसी एक कहानी है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो आपके जहन पे एक असर छोड़ गया हो कि मैं वहां गई थी, वहां पे ऐसा ऐसा हुआ था?
0: ऐसा तो कुछ नहीं, वैसे तो एक बार गई थी तो मेडल नहीं पढ़ पाया, तो घर आई थी फिर घर वाले भी बोल रहे थे क्या हो गया, नर्वस क्यों हो रही है, फिर मैंने बताया कि मेडल नहीं आया, तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, अप डाउन तो होते रहते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है, हार जीत तो चलती रहती है।
1: बिल्कुल,
0: तो फिर वही रहा कि
1: जैसा कि जानते हैं और आप बाधा रेस खुद ही खेलती हैं तो आपको पता है कि बाधाएं तो आती रहती हैं, निराशा आती है और कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हार के बाद ही जीत है और वो दिख ही रहा है आपके इतने सारे मेडल से, और जरूर आगे भी भविष्य में आप ढेर सारे मेडल्स और जीतेंगी। तो दीपू, अगर आपसे बात की जाए कि प्रैक्टिस की जो बात होती है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा परेशानियां भी आती हैं प्रैक्टिस करने के टाइम पे, मान लीजिए कोई इंजरी हो गई, जो हर खिलाड़ी के जीवन में जरूर होती है कभी ना कभी, तो क्या आपको भी ऐसी कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस प्रभावित हुई हो या खेल प्रभावित हुआ हो?
0: हाँ, एक बार जब हम हडल कर रहे थे तो एक बार क्रॉस कर रहे थे तो स्ट्रेच हो गई मसल
1: जी,
0: तो फिर एक दो दिन रेस्ट किया, फिर सोचा कि ये तो इंजरी तो होती रहती है खिलाड़ी की लाइफ में, जब तक इंजरी नहीं आएगी तो खिलाड़ी कैसे बनेगा वो, तो फिर

0: दिन बैठी थी मैं रेस्ट पे, उसके बाद सोचा है कि अब कब तक रेस्ट करूंगी, एक ना एक दिन तो आना ही है प्रैक्टिस पे, तो फिर प्रैक्टिस तो लगातार रही मेरी।
1: जी, इतनी सारी परेशानी के बाद आप प्रैक्टिस करती रहती हैं कंटिन्यू, और एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भले ही इंजरी हो उससे रिकवर करने के बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, क्योंकि बॉडी को भी नीड होती है। अब आपसे दीपू ये जानना चाहेंगे कि जब आप खेलने कहीं जाती हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं उनका क्या आपके साथ बर्ताव रहता है, क्योंकि परिवार का तो सपोर्ट आपको है, लेकिन जो हमारे आसपास की सोसाइटी है, लोग हैं, वो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं?
0: आसपास के लोग भी खुश होते हैं कि हाँ लड़की जा रही है बाहर खेलने, अच्छा नाम करके आ रही है। पहले भी गए थे तो मेडल वगैरह लेके आए थे, खुश हुए थे आसपास के लोग। कभी ऐसा नहीं कि बातें बनाई हो मोहल्ले वाले ने, कभी ऐसा नहीं,
1: जी,
0: काफी अच्छा सपोर्ट रहा है मोहल्ले वालों का
1: मतलब
0: भी।
1: लोग भी अब आपको अप्रिशिएट करते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जरूर आपको देखकर आसपास की जो लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, स्पोर्ट खेलना चाहती हैं, वो जरूर आगे आएंगी। आप उनको प्रेरित करने का काम भी कर रही हैं। दीपू, आप अभी बहुत ही छोटी हैं, और कितनी आयु से आपने इस गेम को खेलना शुरू किया था?
0: मैंने 16 साल से स्टार्ट किया था खेलना, और 2022 से स्टार्ट किया था खेलना, और मुझे 3.5 साल हो गए रनिंग करते करते।
1: 3.5 साल से आप इस गेम में हैं, तो 3.5 साल में अगर आपके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है और शहरों के खिलाड़ियों के साथ में जब आप खेलने जाती हैं तो?
0: जब खेलने पहले जब जाती थी तो पहले तो मेडल नहीं आते थे क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी पहले, और पहले इतना एक्सपीरियंस भी नहीं
1: शुरू शुरू
0: था।
1: की बात होती है।
0: हाँ,
1: जी
0: तो एक्सपीरियंस भी नहीं था इतना। फिर थोड़ी थोड़ी आगे करके प्रैक्टिस हुई और मेहनत करी, तब जाके थोड़े मेडल वगैरह आने लगे, काफी अच्छा लगा, और फिर यही हुआ।
1: अच्छा, आपके कोच का कितना सपोर्ट रहा है, या फिर आपके जो टीचर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको सिखाते हैं, उनका कितना सपोर्ट रहा है आपके गेम में?
0: कोच का भी फुल सपोर्ट रहा है, कभी डाइट वगैरह का नहीं हो पाता तो कोच करते थे, शूज वगैरह का नहीं हो पाता तो कोच का तो पूरा सपोर्ट रहा है,
1: जी
0: और कोचिंग भी फ्री कराते हैं वो।
1: जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोच ऐसे हों तो जरूर उनके जो स्टूडेंट है वो आगे जरूर बढ़ेंगे। तो आपसे दीपू अब ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि शूज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या कोई अलग सा कोड होता है ड्रेस का इस गेम को खेलने के लिए?
0: हाँ, रनिंग किट होती है वो, टाइटी वगैरह पहन के करा जाता है, शॉर्ट्स वगैरह, उसमें काफी अच्छा मतलब फील होता है और रनिंग भी अच्छी होती है। शूज की बात है तो उस खिलाड़ी के अलग ही होते हैं, सोल वगैरह अलग होती है उसकी, और ग्रिप वगैरह अलग होती है, और शूज भी लाइट होता है,
1: जी
0: तो काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है शूज से भी।
1: जी
0: डाइट वगैरह भी अगर खिलाड़ी की अच्छी रही तो काफी अच्छा कर जाएगा।
1: दीपू, आप गेम तो खेलती ही हैं और काफी अच्छा कर रही हैं अपनी उम्र और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन अगर बात की जाए पढ़ाई की, तो अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में आप क्या कर रही हैं?
0: अभी तो इंटर हो गया मेरा, BA में एडमिशन लिया है, अब
1: जी,
0: BA करेंगे।
1: तो पढ़ाई करना भी आपको उतना ही पसंद है जितना गेम पसंद
0: हाँ,
1: है?
0: पढ़ाई रनिंग के साथ साथ भी पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, और बाकी जितना टाइम मिलता है वो पढ़ाई को ही देते हैं फिर।
1: जी, तो पढ़ाई में आपने बोला कि आप BA कर रही हैं, तो जब आप पढ़ रहे हो साथ ही साथ आप गेम भी खेल रहे हो, तो दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे?
0: जब वर्कआउट करके आते हैं तो रिकवरी वगैरह लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी होता है, तो 1-2 घंटे पढ़ाई को देते हैं,
1: जी
0: फिर शाम में प्रैक्टिस करने जाते हैं, आते हैं तो खाना वाना खाते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ाई को देते हैं।
1: तो मतलब आपकी पढ़ाई और आपका गेम दोनों अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, कहीं
0: हाँ
1: किसी
0: बढ़िया।
1: आपके
0: हाँ
1: स्कूल टीचर्स का सपोर्ट रहता है आपको?
0: हाँ स्कूल टीचर का भी सपोर्ट बहुत रहा है,
1: जी
0: पहले भी रहा है और अभी अभी भी अच्छे से सपोर्ट रहा है।
1: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि गेम की प्रैक्टिस भी करनी है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है। दीपू, बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि ना केवल आपके बल्कि जो भी बच्चे इस खेल को खेलना चाहते हैं, या देश के नाम कोई भी मेडल प्राप्त करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन सभी की जो भी इच्छाएं वो पूरी हों, अपनी मंजिल को वो पाएं। आपने अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस साझा किए, उसके लिए दीपू कश्यप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, ये था आज का खेल दर्पण। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको ये हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
3: खेल दर्पण।

मीडियम वेव 202.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 17.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी मुनीर खातून बेगम का पहले राग मिश्र खमाज में ठुमरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी मुनीर खातून बेगम की राग मिश्र खमाज में ठुमरी। तबले पर संगत कर रहे थे श्रीकांत पांडे और हारमोनियम पर अनिल कुमार। आइए अब सुनते हैं इनके स्वर में राग मिश्र खमाज में दादरा।

अभी आप सुन रहे थे सुश्री मुनीर खातून बेगम के स्वर में दादरा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज

0: World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में पूर्व उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।